बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: वासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: सुबह तक का टाइम है,
3: मेरे पैसे वापस कर। पैसे
4: तेरे को शर्म नहीं आई माँ के कंगन गिरवी रखते हुए?
3: मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो तेरे घर को आग लगा दूंगा।
5: अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।
6: रुको रुको बेटा।
5: अरे बाबा कहाँ से आ गया, जल्दी कूदना पड़ेगा।
6: क्या हुआ बेटा?
5: बाबा जी, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में मैंने कर्ज ले लिया और इस कर्ज ने मुझे बर्बाद कर दिया। बाबा जी मैं हार गया, बाबा जी मैं हार गया।
6: हार गया? अरे हारे का सहारा ही तो है श्री श्याम जी।
5: श्याम जी?
6: हाँ हाँ श्याम जी, ये हैं हमारे श्री खाटू श्याम जी।

0: पर बाबा। बाबा जी, बाबा जी, भैया ये खाटू श्याम जी कहाँ आएगा?
1: अच्छा खाटू श्याम जी जनाब को यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर है।
0: 500-600 किलोमीटर दूर?
1: हाँ
2: सीधे चले जाओ, सीधे।

0: कहाँ जा रहे हो?
1: खाटू श्याम जी जा रहे
0: हैं। चलो रास्ते में छोड़ देता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। आ जाओ भाई आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा रास्ते में, मैं भी जा रहा हूँ। आ जाओ

0: भाई जी, देखो दर्शन भी हो गए बाबा जी के, अब चलो घर छोड़ देता हूँ तुम्हें।
1: बाबा जी अब तो मेरा घर भी यही है, सब कुछ यही है।
0: चलो अब क्या बोल सकता हूँ तुम्हें, जैसे श्याम जी की मर्जी। ठीक है फिर मैं चलता हूँ।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
1: रास लफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नागरिकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
4: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को

0: शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है, मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपर फूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

वेलकम बैक है सुप्रभात नमस्कारम एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है। कैसे हालचाल है जी आप सभी के स्वागत अभिनंदन है। आपने ट्यूनिंग कर लिया है आपके शहर का अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ बहुत ही खूबसूरत सी सुबह। दोस्तों आपको बता दें आज बहुत ही प्यारा सा दिन है और आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। यस आज दिन है वेंसडे का यानी बुधवार का दिन। बुध करे सब शुद्ध एकदम सुख हो सब कुछ आपके जीवन में सुखी सुख हो हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जी। आज का दिन आपकी झोली में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आज का दिन आपको वो सब कुछ दे जो आप चाहते हैं। फिलहाल हम जो है आपका इस्तकबाल करते हैं स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:22। बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है। देखिए खूबसूरत सा मौसम है और इस खूबसूरत मौसम की शुरुआत अगर खूबसूरत विचार के साथ हो जाए तो आनंद ही आनंद आ जाए। दोस्तों कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सभी लोग हमें समझ पाएं क्योंकि तराजू सिर्फ वेट बता सकती है क्वालिटी नहीं है ना। तो इसीलिए अगर आपको कोई नहीं समझ पा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है या आपके अंदर वो स्पेशलिटी नहीं है। आप खुद पे यकीन रखिए आप खुद पे भरोसा रखिए यकीन मानिए आप जिंदगी में जो चाहते हैं ना वो डेफिनेटली कर पाएंगे। बट उससे पहले एक चीज़ को दिमाग में रख लीजिएगा कि खुद पर भरोसा करना सीखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा मजबूत सहारा सिर्फ अक्सर आपका खुद होते हैं। आपका हौसला ही आपका सबसे बड़ा सहारा होता है और आप खुद ही खुद के सबसे बड़े दोस्त होते हैं। जब आप ये चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो यकीन मानिए आप ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किलों को बड़ी इजीली पार कर पाएंगे। फिलहाल आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर जहां बातें होंगी दिल से दिल तक। ढेर सारे म्यूजिकल सॉन्ग्स हैं आपके लिए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी है और ढेर सारी पॉजिटिविटी भी है। सब कुछ आपको मिलेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आपको कहीं नहीं जाना है रेडियो की सुई को बिल्कुल नहीं घुमाना है। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आज की सुबह तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 9837896896 के जरिए। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सुंदर मैसेजेस का। फटाफट से व्हाट्सएप करना है आपको हमें 9837896896 पर व्हाट्सएप कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर जहां बातें होंगी दिल से दिल तक। एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आप सुनते हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग मैगजीन शो जहां पर बातें होती हैं आपकी वाली आपकी दिल वाली। लेडीज एंड जेंटलमैन फटाक से मुझे व्हाट्सएप कीजिए और जुड़िए और बताइए जरा अपने हालचाल। चलिए शुरू करते हैं आज का सफरनामा एक बेहतरीन ट्रैक के साथ। बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर निकाल दिया है मैंने अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी आवाज। इस गीत को लिखा है समीर साहब ने म्यूजिक डायरेक्टर हैं नदीम साहब।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
3: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।

वेलकम बैक है जी। मैंने बिल्कुल हद नहीं की है भाई साहब, ना ही आप हदें पार कर रहे हो, ना ही हम पार कर रहे हैं। ये तो भैया मॉर्निंग मैगजीन शो है जिसमें डोज लगता है अच्छी गानों का, जिसमें डोज लगता है अच्छी बातों का। ऑफकोर्स आप मेरे साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें साझा करते हैं, आई एम सो ग्लैड यार, थैंक यू सो मच। एक मैसेज आया है, जिंदगी में अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए आपको कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा आनंद। एग्जैक्टली मैम, मैं तो हमेशा ये बात को फॉलो करता हूँ एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अच्छा सोचना शुरू करते हैं तो आपका मुझे लगता है 50% काम जो है बहुत ईजी हो जाता है। सो इसीलिए जब भी आप कभी कुछ बड़ा और अच्छा प्लान करो तो उसके लिए पहले अपनी मेंटल पीस को थोड़ा पॉजिटिव मैसेज दो, क्योंकि जब आप अपनी सोच को एक पॉजिटिव सिग्नल देते हो ना तो यकीन मानिए वो पूरा दिन आपके ब्रेन पे काम करता रहता है। वो कहते हैं ना कि भैया हाथों की लकीरों पर ज्यादा भरोसा मत करना, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसीलिए जो है अपने कहते हैं ना अपनी मेहनत पे भरोसा करो, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर हार्ड वर्क। जब आप उस पर बिलीव करते हो तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। मैसेज पहुंचा है हमारे पास सुमन जी का, लिखती है गुड मॉर्निंग आनंद जी, सुप्रभात। जिंदगी में कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़िए क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो सुबह जरूर होती है। सुप्रभात, आपके गाने अच्छे लग रहे हैं एंड यू आर एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग होस्ट। अरे मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 8:37 हो गए लेडीज एंड जेंटलमैन, आप भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे स्टूडियो नंबर पे 9837896896 पर। कुछ वॉइस नोट आए हैं, अभी जरा सी देर में लौट कर आएंगे तो उनको सुनेंगे इसी स्टेशन पे। एंड इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ आज का दिन क्यों स्पेशल है, क्या कुछ खास है आज इतिहास के पन्नों पे, डेफिनेटली हम आपके साथ साझा करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे जहाँ जुड़ चुके हैं आप आरजी आनंद के साथ, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। एक बेहतरीन ट्रैक निकाल दिया है मैंने आपके रेडियो सेट पे, आप इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे आनंद के साथ। एंड अगर आप भी मेरे साथ ऐसी पॉजिटिव बातें शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं 9837896896, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर लेडीज एंड जेंटलमैन। राइट हियर आई एम गोना प्ले, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग ट्रैक एंड सीरियसली यार ये वो गाने हैं जिनके सुन के ना आपकी सुबह फैबुलस हो जाएगी, मतलब एकदम रिचार्ज वाली हो जाएगी। उदित नारायण साहब साथ में अलका याग्निक जी, बहुत ही प्यारा ट्रैक मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, आई डोंट नो।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
6: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
7: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम रामपुर रोड मुरादाबाद।
8: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
9: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
8: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

ये वो गाना है जो आपकी 90s की यादों का ना पिटारा बना हुआ है। यू नो, जब इसको हम सुनते हैं फाल्गुनी पाठक जैसे दिमाग में आती है, जहन में आती है, एकदम फ्लैश बैक में पहुंच जाते हैं जू करके। क्या बात है, दिश, दिश, दिश, दिश, दिश, दिश, दिश। बहुत ही बेहतरीन गाना है। आई रियली लव दिस ट्रैक। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है आपके शहर का फेवरेट रेडियो स्टेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। शो चल रहा है आपका मॉर्निंग मैगजीन, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। वॉल्यूम बढ़ा दी, चलिए एंजॉय करते हैं साथ में। आहा, क्या बात है, गुड मॉर्निंग।

0: tane son geldi. La la la. क्या सॉन्ग है यार, सच में एकदम फ्लैश बैक में ले जाता है। अभी तो मॉनसून आने में बहुत टाइम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस गाने पे क्या रील्स बनते हैं धमाकेदार यार। वेलकम बैक है, 8:50 हो गए आप आनंद के साथ। 24 जून 2026 स्पेशल मॉर्निंग है यार। देखो आज बुधवार का दिन है, वेंसडे की सुबह है। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ। आई नो दैट आप लोग अपने अपने काम से निकल रहे होंगे सुबह सुबह। एंड डेली हम लोग यहाँ पे रब्ता करते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं, अच्छे म्यूजिक होते हैं एंड फैंटास्टिक जानकारियाँ होती हैं। हर दिन कुछ ना कुछ बहुत ही यू नो आउटस्टैंडिंग सी चीज़ें होती हैं, बहुत ही एकदम ब्रिलियंट वाली चीज़ें होती हैं। वेल आज टुडे क्या स्पेशल है, चलिए चेक आउट करते हैं आज के दिन का कोटा। आज 24 को क्या स्पेशल हो रहा है, हमारे इतिहास के पन्नों में क्या कुछ स्पेशल है आज की तारीख में। सो मैं फटाफट से फिगर आउट करके आपको बताता हूँ। चलो जल्दी से चेक आउट करेंगे। सो दोस्तों आपको बता दें, सन 2005 में आज ही के दिन अमेरिका द्वारा भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का जो है दावेदारी को एक मान्यता दी गई थी आज ही के दिन। यानी कि आज का वो दिन था 24 जून 2005 में ये चीज़ हुई। और आपको बताते चलें, आज ही के दिन जो है यहाँ पर सन 2008 में नेपाल की जो प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने अपने पद से जो इस्तीफा दिया था श्रोताओं। आज ही का दिन था जब अंग्रेजी साहित्य की जो प्रख्यात लेखिका थी उनका जन्म हुआ था 1937 को। अनीता देसाई जी की मैं बात करूँ, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था श्रोताओं। तो ये आज के दिन से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां जो आज के दिन को बहुत ही खास बनाती हैं। और मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सुबह सुबह जो आप अच्छी एक्टिविटी करते हो, जो आप प्रोडक्टिविटी दिखाते हो सुबह सुबह की, यकीन मानिए दोस्तों ये पूरा दिन आपके साथ होती है। पूरा दिन ये आपको जो है ताज़ा तरीन कर देती है। अगर आप अपनी सुबह को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको रेडियो तो सुनना ही पड़ेगा। देखिए रेडियो सुनने से आपके बहुत सारे लाभ होते हैं। आपको एक तो आपके काम में कोई बाधा नहीं आती, कोई विघ्न नहीं डालता है रेडियो। आप रेडियो सुनते हुए अपना काम आराम से कर सकते हैं, जो कि अभी आप कर रहे हैं। तो रेडियो की तो खैर बात ही अलग है ना, ये तो है ही अल्टीमेट चीज़ अपने आप में। बाकी आप लोग भी बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आप हमारे साथ जुड़ते हैं और प्यारे प्यारे संदेश हमें पहुंचाते हैं। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत दिल से आभार हैं, आभार व्यक्त करते हैं आपका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि कितने लोग जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं। अब आप पूछेंगे यार आनंद ये कैसा सवाल पूछ रहे हो आप। आज की डेट में हर बंदा जो है उठते ही पहले फ़ोन चेक करता है कि भैया ज़रा देखें किसी का फ़ोन वोन तो नहीं आया, किसी का कोई स्पेशल मैसेज तो नहीं आया, किसी को स्पेशल मैसेज तो नहीं भेजना, तो मतलब ऐसा कुछ है। तो भैया मैं एक बात क्यों कह रहा हूँ बताऊँगा अभी थोड़ी देर में आपको, लेकिन उससे पहले चलिए अभी ज़रा हमारे पास कुछ संदेश पहुंचे हैं ये फटाफट से हम आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी बहुत अच्छे से हमें निभानी है आपके लिए।
1: सभी एफएम सुनने वालों को मेरा यानी कि बीपी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, जिसे बजाना पड़ता है, गुनगुनाना पड़ता है। प्रोग्राम है फिंदाश मॉर्निंग और आरजे हैं आरजे आनंद। यह ना सोचो कौन कहां कब और क्यों बदल गया, बस यह सोचो क्या दे गया और क्या सिखा गया। उम्र में ओहदे में कौन कितना बड़ा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यवहार में लहजे में कौन कितना झुकता है इसका बहुत फर्क पड़ता है। नमस्कार, राधे राधे, सुनते रहिए विंदाश मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, और मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा नगर पंचायत पागबड़ा से। भेजते रहिए अच्छे अच्छे वॉइस नोट, अच्छे अच्छे मैसेज, और सुनाते रहिए अपनी आवाज़ को सारे देश को, सारे संसार को। इसी तरह बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए आपका अपना प्यारा एफएम, एफएम मुरादाबाद, मुरादाबाद का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार, राधे राधे,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भेजो ना अच्छे अच्छे, सभी भेजेंगे, आवाज सुनेंगे एक दूसरे की, अच्छा लगेगा। नमस्कार,
0: थैंक यू सो मच भैया। देखिए आपने सच में बहुत अच्छी बात कही है और मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप करते हैं। ये एक रेडियो की सच्ची मोहब्बत होती है, जो ये रेडियो से प्यार करते हैं ना उनको कुछ बताना नहीं पड़ता, वो खुद ही सब कुछ बता डालते हैं। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा जुड़ते हैं हमारे साथ अपनी वॉइस के माध्यम से। तमाम लोग हैं जो अब आपको पहचानते हैं आपकी आवाज़ के माध्यम से, आपकी एक अलग ही इमेज बनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को भी ये चीज़ करनी चाहिए श्रोताओं। रेडियो दैट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहां से आप एक अलग ही पहचान बना सकते हैं। 8:54 हो गए स्टेशन क्लॉक में, अभी पहचान बनाई गई गाना चुनरी चुनरी अभिजीत भट्टाचार्य अनुराधा जी की आवाज साथ में ब्यूटीफुल ट्रैक है। अनु मलिक साहब का म्यूजिक है, समीर साहब ने लिखा है। हाय हाय चुनरी चुनरी ब्यूटीफुल नंबर एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। बीबी नंबर वन से गाना निकाल दिया है मैंने आज की सुबह, ये है वेंसडे मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आनंद को। चलो साथ में चुनरी चुनरी करते हैं।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
6: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
7: क्या मेरी कसम,
6: मिस कर दिया तो रीलोड।
8: चाय चाय चाय
6: बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

भाई साहब दिलबर माने ना माने लेकिन आरजे आनंद मान जाता है आपकी प्यारी प्यारी बातें। हेलो हाय गुड मॉर्निंग वेलकम बैक है आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज वेंसडे की सुबह और देखो यार कैसे मतलब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। मतलब देखो 9 बज गए यार आई कांट बिलीव दिस कैसे 9 बज गए भाई साहब पता नहीं चल रहा ना यार। यही तो होता है रेडियो पर आने के बाद ना सच बता रहा हूँ यार एक तो चीज है वो है समय। समय का कभी पता नहीं चलता यार। वेलकम बैक यू आर लिसनिंग टू बिंदास मॉर्निंग यार। हाँ जी 9:02 हो गए हैं लेडीज एंड जेंटलमैन 24 की तारीख है आज 24 जून हो गई है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बहुत सारे श्रोता हमारे श्रोता साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया।

चलिए यार, आज का एक छोटा सा सवाल मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मतलब आई मीन यू नो कि मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भैया आप मुझे ये बताओ, आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करते हो? आज अपनी बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ, मुझे आपके बारे में जानना है, तो आप बताओ मुझे, आप सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो? मतलब आप क्या स्पेशल करके अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करते हो? कैसे आपको लगता है कि आपकी सुबह की शुरुआत बहुत झकास हो जाती है, अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो मेरी सुबह बहुत अल्टीमेट हो जाती है और मैं चाहता हूँ कि सबको करनी चाहिए इस तरीके से सुबह की शुरुआत, तो आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे बेहतरीन बनाते हो जरा मुझे बताओ। 9837896896 पर 9:03 हो गए अभी, मैं कहना कि सुबह की शुरुआत तो हम अभी कर रहे हैं। नहीं जी नहीं, जो लोग सुबह सुबह करते हैं मेरी तरह, जो लोग 5 बजे उठ जाते हैं बिस्तर छोड़ देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो कैसे अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं मैं भी बताऊंगा। मैं अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करता हूँ यार, आप चिंता ना करें, मैं बहुत ही गजब तरीके से करता हूँ, आई एम श्योर आपको भी मजा आ जाएगा। यार देखो, अगर आप अपनी छोटी छोटी पॉइंट शेयर करोगे ना, तो हो सकता है वो किसी के लिए यू नो एक बढ़िया चीज़ हो जाए। मतलब होता है ना कि जब हम कुछ सुनते हैं तो हमारे लिए डेफिनेटली काम आती है ना, तो बस मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है आपका बताया हुआ फंडा किसी के काम आ जाए और कल से उसकी सुबह थोड़ी स्पेशल हो जाए, तो बस मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। आप मुझे डेफिनेटली मैसेज करके बताना आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे दोस्त, या आप भी बता सकती हैं मैम 9837896896 पे व्हाट्सएप करके। ये स्टूडियो का नंबर बहुत आसान है, इस नंबर के थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की मॉर्निंग, एंड आप मुझे बता सकते हैं आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। आप बताओ मुझे जरा, मैसेज करो, हमें इंतजार है आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का, ठीक है? 9837896896 पर। चलो एक अच्छे से गाने के साथ करेंगे इस घंटे की शुरुआत, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक मैंने आपके लिए निकाल दिया है आपके रेडियो पर। काफी ट्रेंड हुआ था ये गाना, मिलता है जाने मन, सोनू निगम एंड निकिता।

व्हाट्सएप करना मुझे, मैं अभी कुछ खास और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। फटाफट से लौट कर आता हूँ उसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, और एक नया सा गेम भी यहाँ पर हम खेलने वाले हैं आपके लिए। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम। उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस मुझे सुनते जाना होगा और कुछ नहीं करना है आपने। आपको ट्यून इन रखना है फिर मुरादाबाद 89.6, ठीक है। अभी लौट कर आते हैं जरा सी देर में। फिलहाल के लिए राइट हियर गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।

क्या बात है, बहुत ही मतलब बढ़िया वाला गाना भी आपने सुन लिया सुबह सुबह। और सच बताऊं, इतने बढ़िया गाने सुन के मजा आ जाता है। बंटी बबली और बंटी और बबली टू से ही गाना था, नेहा कक्कड़ साथ में साथ दे रही थी, बहुत ही अच्छा गाना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे गाने सुन के तो मजा ही आई जाता है यार। आगे बढ़ते हैं, वेलकम बैक वंस अगेन, आप आनंद के साथ हैं, ये है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। आजकल ये बंदरों का बड़ा सीन चल रहा है भाई, कभी गोल चुरा के भाग जाते हैं, कभी किसी का पैसा उड़ा के भाग जाते हैं, कभी किसी के पैसों का थैला लेके भाग जाते हैं। आई डोंट नो चल क्या रहा है, ये आजकल जो बंदर सोसाइटी में तहलका मचा रहे हैं ना भाई, ये बड़े अलग ही तरीके की न्यूज़ सुनने को मिल रही है आजकल। खैर क्या ही कर सकते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, ये तो इंसान ही कर लेते हैं, तो अब बंदर कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, लेकिन आजकल ये मंकी बड़ी शरारती हो रहे हैं यार। फिलहाल दिस वीकेंड रिलीज हो रही है अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल, जिसके प्रमोशन के लिए मुरादाबाद अभी रिसेंटली आए थे अक्षय अंतरिक्षा पाटनी साथ में अक्षरा, एंड इन लोगों ने क्या कमाल मचाया भाई यहाँ मुरादाबाद में आके, है ना। सो मैं बस जाने को था ही, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेट हो गई थी, बट वो कभी कभी होता है ना कि अनफॉर्चुनेटली फिर वो रैंडमली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब आपकी एंट्री नहीं लिखी होती ना, तो आप कितनी भी मशक्कत कर लो बॉस, आप जा ही नहीं पाओगे। मैं इस चीज़ को बड़ा मानता हूँ यार। खैर आगे बढ़ते हैं, वेंसडे का दिन है, ग्रीन पहन के अगर आप निकल रहे हैं तो आपकी हो सकती है बल्ले बल्ले। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बस इतना ही आपसे पूछ रहा हूँ, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि आप मुझे बताओ अपने दिन की शुरुआत आप कैसे करते हो, एक ग्लास नींबू पानी के साथ, या फिर एक ब्लैक कॉफी के साथ, या फिर एक मिल्क टी के साथ। यू कैन टेल मी 9837896896, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे पास कुछ मैसेज आ गए। हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, दिस इज मी मनप्रीत, व्हाट्सएप विरे, ओके विरा तो बढ़िया यार, तुसी बताओ की हलचाल है मनप्रीत जी। मनप्रीत लिखते हैं, आनंद जी देखो सुबह की शुरुआत बड़ी सिंपल होती है मेरी, तो यार मैं उठते ही सबसे पहले अपने गुनगुने पानी के साथ सुबह की शुरुआत करता हूँ, उसके बाद हल्की वॉल्यूम पे रेडियो आपका ट्यून करता हूँ, अच्छे अच्छे भजन सुनता हूँ, और सुबह की शुरुआत मेरी ऐसी होती है, फिर थोड़ा वही अपना जिम शिम के लिए निकल जाता हूँ, बट आपका रेडियो लगातार चलता रहता है, बहुत मज़ा आता है, और मेरी दिन की शुरुआत बस मैं सच बताऊँ तो एक्सरसाइज और रेडियो के साथ होती है। दैट्स वेरी ग्रेट यार, सो नाइस है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग, हेलो जी कैसे हालचाल है, माय नेम इज श्रीखा, आई एम फ्रॉम मानसरोवर। हेलो श्रीखा जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई होप आप अच्छे होंगे। श्रीखा मुझे लिखती है, आनंद जी देखिए मेरी दिन की शुरुआत होती है झाड़ू के साथ सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगानी पड़ती है मुझे, मेरे मॉर्निंग की शुरुआत ही इससे होती है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके बाद तो मुझे इतना मजा आता है, आपका रेडियो ट्यून इन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हल्की फुल्की मैं एक्सरसाइज के लिए निकल जाती हूँ, वॉक करती हूँ, एंड घर में लेडीज इतना सारा काम करती हैं तो उन्हें एक्सरसाइज की नीड होती नहीं है। वैसे आई थिंक आई एग्री विद यू, मुझे भी ऐसा लगता है कि यार सुबह से जो आप लोग की ड्यूटी और जिम्मेदारियां शुरू होती हैं उसके बाद तो भाई साहब क्या ही बताऊं, लेकिन प्लीज अपने लिए टाइम जरूर निकाला करो। शिखा मैम थैंक यू सो मच आप मेरे साथ जुड़ी। सोनालिका का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग, रामलीला ग्राउंड से बात कर रही हूँ आनंद, एंड आज आपने जो सवाल पूछा मैं बताना चाहती हूँ, मेरी दिन की शुरुआत होती है मेरे 5 दोस्तों को मैं गुड मॉर्निंग विश करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके बाद ही जो है मैं कुछ करती हूँ, और कई बार तो इनफैक्ट मुझे वेट होता है कि मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को क्या भेजा है, मतलब आपको उठते ही क्यूरियोसिटी होती है कि कहाँ है मेरा फोन, किधर है, तो आप मतलब फोन लवर है मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे को पता था बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठते ही अपना फोन चेक करते हैं, मैं भी चेक करता हूँ, बट मैं अपना अलार्म चेक करता हूँ यार भाई, मतलब ऐसे बंद करने के लिए अलार्म चेक कर, मतलब वो मोबाइल चेक करता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं, एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, जय श्री राम, आनंद जी कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग, आपको मैंने आज सुना रेडियो पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका 89.6 बहुत ही फैबुलस रेडियो स्टेशन है, थैंक यू वेरी मच। और ये मुझे मैसेज पहुंच रहा है रामपुर दौराहा से, इन्होंने मुझे अपना नाम नहीं लिख के बताया, बड़ी लिखते हैं कि सर मैं अपने दिन की शुरुआत ग्रीन टी के साथ करता हूं, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और सुबह सुबह सबसे अच्छा फंडा यही है कि आप जिम जरूर जाएं, आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और आप भी हेल्दी रहेंगे। वाह क्या बात है यार। हमारे पास मैसेज पहुंचा है यहाँ पर सहारनपुर से, जून रोजी पलविली से हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं आनंद ब्रो गुड मॉर्निंग, हैप्पी वेंसडे मॉर्निंग, स्टे ब्लस, एंड साथ में लिखते हैं ये कि किसी को बहुत ही प्यारा गुड मॉर्निंग विश करना चाह रहे हैं। ओहो क्या बात है, फिलहाल इनकी एक लाइन पढ़ लेता हूँ कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनके बारे में एक अजीब बात, वो ये है कि वो आपकी हर चीज पर नजर रखते हैं। बात तो वैसे सही है जरा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप भी मुझे बता सकते हैं आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू आस्क यू दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आज वेंसडे की सुबह आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं, क्या स्पेशल करते हैं आप अपनी मॉर्निंग को फैबुलस बनाने के लिए, आप ही मुझे मैसेज करके बता सकते हैं 9837896896 पर। जानने की कोशिश कर रहा हूं आज आपसे, हर किसी का तरीका बहुत अलग होता है, हर किसी के फंडे बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, है ना, हो सकता है आपका फंडा किसी और के काम आ जाए, इसलिए मैं आपसे जस्ट ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे डेफिनेटली मैसेज करेंगे
9 3 7 8 9 6 8 9 6 कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आप फोन कर सकते हैं कि ट्रैफिक जाम है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। आज 24 जून की सुबह है, अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं व्हाटएवर तो भी आप मुझे कॉल करो यार। कुछ स्पेशल है आज आपकी जिंदगी में, कुछ बढ़िया चल रहा है तो अगर आप चाहते हो कि यार खुशियां बांटना चाहता हूं आपके साथ तो भैया लगाओ फोन, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लौट कर आता हूं एक और अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ और खास चीज हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है उस पर भी हम एक नजर डालेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि आप हैं आनंद के साथ एंड मैसेज लगातार आपके मिलते जा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये प्यारे प्यारे व्हाट्सएप करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट अभी बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। एक बहुत ही अल्टीमेट ट्रैक निकाल दिया मैंने, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे आप सभी के साथ, बहुत ही प्यारा ट्रैक है, आप जो है आनंद को ऐसे ही सुनते रहें। एक मैसेज मेरे पास बड़ा अच्छा पहुंचा यार, गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हालचाल है, हम आपके बिल्कुल पड़ोस वाली गली में आपको सुन रहे हैं एंड जब आप स्टूडियो आते हैं तो हम आपको डेली देखते हैं एंड सुबह सुबह बहुत जल्दी में भागते हुए आते हैं। बिल्कुल जी, मुझे लग रहा है आपने कहीं कैमरा वैमरा तो सेट नहीं करके रखा। चलो इनका नाम भी बताता हूँ इस गाने के उस पार। आप सुन

0: Das Morning. Das Morning. Das
1: Morning. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।

0: क्या बात है, सैयारा का टाइटल ट्रैक एंजॉय कर रहे हैं आप आरजे आनंद के साथ। यह है बिंदास मॉर्निंग, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे बातें होती हैं दिल से दिल तक। यह है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: दुनिया में
0: इरशाद कामिल ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गीत को लिखा है।

9:25 स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है 24 ब्यूटीफुल जून की सुबह है ये 24 डेट है भैया 24 जून है आज मैं आपको ये बता रहा हूँ आप जो इतना कंफ्यूज मत होया करो पाची कभी कभी मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर देता हूँ तो आप सच में कंफ्यूज हो जाते हो यार वेलकम बैक यू वंस अगेन एक बार फिर से आपको मैं ये चीज बता रहा था कि देखो रोहित जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से लिखते हैं मैं अपने दिन की शुरुआत अलार्म बंद करके 5 मिनट सोने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से मेरी शुरुआत होती है लेकिन वो 5 मिनट कैसे 30 मिनट में बदल जाते हैं मुझे खुद को भी नहीं पता चलता और उसके बाद मैं भागता दौड़ता रहता हूँ पूरा दिन मतलब मेरे को ऐसा लगता है फिर ना मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करता हूँ भाई क्या ही हो रहा है पूजा जी मेरे साथ जुड़ी हैं लिखती हैं आनंद जी मैं सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को याद करती हूँ उनका शुक्राना करती हूँ फिर एक कप चाय बनाती हूँ आपका रेडियो चलाती हूँ उसके बाद अपनी सुबह की शुरुआत बिंदास बनाती हूँ बिंदास मॉर्निंग के साथ क्या बात है पूजा जी कमाल कर रहे हो आप हैं एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है अमित जी का ये खुशहालपुर से जुड़े हैं लिखते हैं मैं दिन की शुरुआत आरजे आनंद की आवाज़ के साथ करता हूं एंड जब तक मैं आपकी आवाज़ नहीं सुनता आनंद सच में मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता है मतलब आपकी वाइब ही इतनी पॉजिटिव होती है बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस वॉइस आपकी देती हैं अच्छा जी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं चलो जी थैंक यू सो मच माय प्लेजर थैंक यू नेहा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली रोड से लिखती हैं मैं सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखती हूँ पहले मैं मम्मी का चेहरा देखती हूँ वाओ लवली क्योंकि मेरी मम्मी ही मुझे उठाती है ये तो भाई अलग ही हो गया मतलब संदीप जी मेरे साथ जुड़े हैं लिखते हैं आनंद जी मैं सुबह की शुरुआत जो है गर्मा गर्म एक गिलास पानी के साथ करता हूँ गुनगुना गर्मा गर्म पानी लेता हूँ उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करने निकल जाता हूँ मेरी सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी होती है मैं दिन की शुरुआत एक स्माइल के साथ करती हूँ क्योंकि फ्री चीज़ों में मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है तो मैं खुद को एक फ्री स्माइल देकर अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ क्या बात है शिवानी जी कमाल है आप तो भैया देखिए मुझे बड़ा मजा आया कोई चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है कोई दुआ के साथ करता है कोई अलार्म के साथ लड़ाई करके करता है वेल आप भी मुझे बता सकते हैं कि आप अपने दिन की परफेक्ट शुरुआत कैसे करते हो कैसे होती है आपकी दिन की एक परफेक्ट शुरुआत आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप करिएगा 9837896896 पर 9:27 हो गए स्टेशन क्लॉक में एंड आपके संदेश लगातार मुझे मिल रहे हैं थैंक यू वेरी मच यही आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ आज की मॉर्निंग की आप कैसे अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं कैसे आप खुद की मॉर्निंग को फैब्यूलस बनाते हैं यही आपसे पूछ रहा हूँ मैं ढेर सारे संदेश आपके मुझे मिल रहे हैं थैंक यू वेरी मच इतने ब्यूटीफुल मैसेज के लिए आई एम सो ग्लैड यार इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप कर रहे हो ना थैंक यू सो मच यार सच अ ब्यूटीफुल लिसनर यार आप लोग इतने अच्छे मैसेज करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे पास मैसेज पहुंचा है हाय गुड मॉर्निंग आरजे आई होप आप अच्छे होंगे डेफिनेटली आई एम गुड ये लिखते हैं मेरी मॉर्निंग 3 कैरेक्टर से शुरू होती है मैं मेरी चादर और अलार्म अरे वाह क्या बात है चादर बोलती है रुक जा अलार्म बोलता है उठ जा और मैं बीच में कहती हूँ मूवी अभी बाकी है अचानक माँ की एंट्री होती है और सीन वहीं कट मूवी और दिन ऑल राइट समझ गया मैं इनकी दिन की शुरुआत तो कुछ ऐसी होती है वेल सो नाइस थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल मैसेज इंदौर से जुड़ी है प्रियंका शर्मा लिखती है गुड मॉर्निंग आनंद कैसे हैं आप गुड मॉर्निंग जी आई एम एब्सोल्युटली गुड बेबी राधिका जुड़ चुकी हैं गुड मॉर्निंग आनंद सर हेलो गुड मॉर्निंग आपका शो अच्छा लगता है थैंक यू एंड गीता कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं लिखते हैं बुधवार की सुबह गुड मॉर्निंग एंड मेरे पास मैसेज पहुंचा है राजा कश्यप जी का ये भी लिखते हैं हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है ये लिखते हैं आनंद सर मेरी छोटी बहन बड़ी खराब है मुझे सुबह सुबह सोते सोते को जगा देती है उठा देती है और साथ में FM मुरादाबाद शुरू कर देती है तो मेरे को अच्छा लगता है अरे वाह थैंक यू यार अस्सलाम ए इश्क यारा एक बड़ा ही बिंदास जबरदस्त गाना साथ में सुनेंगे इसको एक और संदेश पहुंचा है गुड मॉर्निंग हेलो सर कैसे हैं आप जिंदगी का दूसरा नाम है दोस्ती जी हाँ जिसे जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है वैसे ही खुश रहने के लिए FM मुरादाबाद सुनना जरूरी है रणवीर जी थैंक यू आप भी मुझे बता सकते हैं आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9837896896 पर

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: धोती कुर्ता पहन के रूम दुल्ली हो
1: या बस।
2: हाँ क्या बात है भैया, देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं, अरे ओ भैया सुनिए जरा, अगर आप बाहर की तली भुनी चीजें बहुत खाते हैं या सुबह आप चाय पीते ही आपको लगता है कि भैया सीने में बहुत भयंकर तेज वाली जलन हो रही है, तो आपको बता दें भाई साहब इससे बचने के लिए आपके पास सिर्फ ये तरीका है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप बहुत हद तक बच जाओगे। वेलकम बैक है। और दोस्तों बिल्कुल मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी कभी ना अचानक से एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है बहुत भयंकर वाली हो जाती है लोगों को अक्सर। एंड क्या इसका कारण सिर्फ चाय ही हो सकती है या फिर खाली तली भुनी चीज़ें हो सकती हैं? नहीं भैया, आजकल का खान पान इतना बदल गया है ना, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है, और ये जो हमारा गड़बड़ हो रहा है ना हमारे खाने पीने का तरीका, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे इसके नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं हमारी बॉडी पर। मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आजकल की लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा सुपर फास्ट हो गई है, हर इंसान को मतलब पानी भी पीना है तो खड़े खड़े, खाना भी खाना है तो खड़े खड़े, क्योंकि इमिडिएटली उनको भागना होता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना, इसकी वजह से हमारा पूरा रूटीन, पूरा शेड्यूल हमारा बिगड़ा हुआ है ना। तो भैया देखिए, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो रही है एसिडिटी की, अगर आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि भैया आपके मतलब जो है आपको सीने में जलन हो रही है, तो इसमें आपको नारियल पानी काफ़ी हेल्प कर सकता है। एग्जैक्टली, नारियल पानी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत हद तक इस प्रॉब्लम से राहत दे सकता है। जी हाँ, नारियल पानी को मैं आपको बता दूँ, अगर आप पीते हैं तो इससे आपको बहुत हद तक एसिडिटी से राहत मिल सकती है। वैसे तो और भी आपके पास दादी नानी के नुस्खे होंगे, लेकिन अगर आपको बार बार जो है एसिडिटी के कारण सीने में जलन हो रही है, तो आप ठंडा नारियल पानी बिल्कुल पिए, इससे आपके पेट को आराम मिलेगा और आपकी जो ये जलन है ये भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो नारियल पानी को डेफिनेटली अपनी डाइट में आप वैसे भी शामिल करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। तो अगर आप लेते हैं अपनी डाइट में नारियल पानी तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपको बता दें कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक जो है अलकरण समारोह में जो है भाई साहब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट में उनके जो है योगदान के लिए, उनके शानदार जो उन्होंने प्रदर्शन दिया है, जो उन्होंने एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है, उनकी यादगार उपलब्धियों के लिए उनको जो है कल सम्मान मिला है, और ये एक बहुत ही बड़ा अपने आप में गौरव का गर्व है। एक पद्मश्री से सम्मानित होना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। जी हाँ, तो उनको कल एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड कंग्रेचुलेशन। दोस्तों मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए आपको देता रहता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको जो है सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ना, बहुत ज़रूरी है सही सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है, तो आपको बैठे बिठाए वो सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, जो आपके आसपास गतिविधियाँ हो रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। अब देखिए भैया, एक चीज़ और है जो मुझे लग रहा है कि आपको डेफिनेटली इसके बारे में बता देना चाहिए फटाफट से, और ये मैंने कल ही इस पर रिसर्च किया था, तो मुझे लगा ये आज मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। किशमिश के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। ऑफकोर्स 99 लोग किशमिश खाते समय ये गलतियाँ कर देते हैं, तो भैया आप इन गलतियों को बिल्कुल मत कीजिए। किशमिश सेहत के फायदे के लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से खाते हैं तो नुकसान भी आपको दे सकती है। यस, हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार किशमिश को रात भर भिगोकर खाना ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। सुबह खाली पेट 8 से 10 भीगी हुई किशमिश अगर आप खाते हैं तो ये आपके पाचन को बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। शरीर को ऊर्जा मिलती है और आयरन की कमी भी ये दूर करने में आपको हेल्प करता है, और साथ ही साथ वही ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से वजन और ब्लड का जो मतलब मामला है वो दोनों ही बढ़ने के खतरे रहते हैं। तो इसीलिए आपको जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी है। अगर आप किशमिश खा रहे हैं तो रात को पानी में उसको भिगो के रखिए, सुबह आप 8 से 10 की क्वांटिटी में जो है किशमिश ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है। बट आप जब भी किशमिश खाएं उसको पानी में भिगो कर रखें रात को, उसके बाद ही अर्ली मॉर्निंग उसको लें। दिस वीकेंड रिलीज होने वाली है अक्षय कुमार की बहुत ही कमाल की फिल्म वेलकम टू द जंगल, इसके बारे में बात करेंगे। 25 जून को रिलीज हो रही है दिस फ्राइडे, सो डेफिनेटली हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं आज 24 है, कल 25 है, तो इस वीकेंड आ रही है वेलकम टू द जंगल, अक्षय कुमार एंड त्रिशा पाटनी साथ में, बहुत सारी अमेजिंग स्टार कास्ट है, इसके बारे में हम डेफिनेटली आपको बताते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अभी फिलहाल बहुत लंबी चौड़ी मैंने बातें कर ली, अब मैं सोच रहा हूँ ब्रेक पे चलते हैं, एक सॉलिड ब्रेक पे चलते हैं, और सॉलिड ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो आपसे एक म्यूजिकल वाला क्वेश्चन पूछेंगे, आपके दिमाग की बत्ती गुल मीटर चालू करेंगे, देखेंगे भैया कितने लोगों को जो है बॉलीवुड की तगड़ी नॉलेज है। मैं आपके लिए एक तगड़ा सा क्वेश्चन लेकर आता हूँ, एक चुटकी सॉन्ग, यस एक चुटकी सॉन्ग बजाऊंगा और आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा गाना बजाया है आरजे आनंद ने। बस वही तो चेक करूंगा मैं आपके दिमाग का आईक्यू लेवल, टेस्ट करते हैं। चलो भाई एक काम करते हैं, अभी गाना बजाते हैं।
3: हो जाता है।
2: हाँ यार चलो शुरू करते हैं। सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, यह आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। अभी जरा सीधे मैं लौट कर आता हूँ इस गाने के बाद।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।

0: कौन है तू?
1: डीजे गोविंद। यो
2: ए आईटी फेल से हो पाएगा क्या?
1: हाँ बस एक चांस।
2: चल

0: मैं जा रही हूँ।
1: क्या?
0: मैं जा रही हूँ।
1: इतनी जल्दी क्यों?
0: बाय।
2: बाय बाय।
1: कार्ड।

0: अगर घूरने से लड़की मिलती ना तो पूरी गर्ल्स हॉस्टल।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
2: मॉर्निंग। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
3: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

क्या बात है यार। रेस टू से भी एंजॉय कर रहे थे आप ही गाना। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 स्टेशन क्लॉक में, वक्त हुआ है 9:54। लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा लेट कुछ काम आ गया था मुझे। वेलकम बैक है वेंसडे की सुबह। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत ही अच्छा कड़क क्वेश्चन, एक चुटकी सॉन्ग आपके लिए लेकर आया हूँ। दिस इज अ न्यू गेम, एक चुटकी सॉन्ग कुछ नहीं करना है, सेम रहने वाला है, बस आपकी वो मेमोरी बॉलीवुड की चेक करने वाला हूँ। एक अच्छा सा गाने का इंट्रो म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ एंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड फैंटास्टिक क्वेश्चन। आपको बस इस गाने को आइडेंटिफाई करना है, सो कौन सा गाना यहाँ पर बज रहा है। एक चुटकी सॉन्ग बजेगा बाजी, बहुत लंबा सा नहीं बजेगा, सिर्फ एक चुटकी सॉन्ग अगर आप पकड़ लोगे तो आप बनोगे मेरे शो की सुपरस्टार। चुनना चुनना चुनना चाहती हुई गाना, तो ये लो चुन लो पाजी, कौन सा गाना है जरा पहचानो। अभी इतना पैसा में इतने मिलेगा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो अर्जुन बाबू, तो आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन अभी एक चुटकी सॉन्ग की कीमत तुम्हें पता है तो मुझे मैसेज करो यार जरा 9837896896 पे आपने मेरे को व्हाट्सएप करके बताना है कि अभी जो यहाँ पर म्यूजिक चल रहा है वो कौन से गाने का है। व्हाट्सएप करना है जी, फटाफट से उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड कर देना है मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896 पर। फटाफट से एक और बार सुन लो यार जरा आप। चलो जी, एक चुटकी सॉन्ग मैंने यहाँ पर प्ले कर दिया, फटाफट से मेरे को मैसेज करो 9837896896 पे अपने नाम के साथ अपना सही वाला जवाब, जल्दी से मेरे को व्हाट्सएप पे पहुँचा दो। इंतजार कर रहे हैं हम आपके सही सही मैसेजेस का। अब देखो कोई बहाने मत बनाना।

0: क्या बात है यार, एक फैंटास्टिक गाना। सच में इसको सुन के मजा आ गया है। एंड अभी फिलहाल स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है कितना कितना, 10:02 हो रहे हैं यार। देखो पता नहीं चलता ना कितनी तेजी से वक्त निकल जाता है, एकदम 10 बज गए यार।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
2: मॉर्निंग। आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: चलिए गाइस, फिलहाल इसी गाने के साथ मैं अब लूंगा आपसे जाने की इजाजत। धूम टू का गाना भी आप सुन रहे हैं, अलीशा चुनाए एंड केके ने गाया है, बहुत ही प्यारी आवाज। लेकिन अभी इसी गाने के बीच एक चुटकी सॉन्ग हमने आपके लिए बजाया था जो आपको आइडेंटिफाई करना था। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई मीन ये गाना आपको पहचानना था। बहुत सारे मैसेज आप लोगों ने किए हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यहाँ पर ढेर सारे मैसेज आ गए हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, मेरे जो रेगुलर वाले हैं शायद वो पहचान नहीं पाए हैं। देखो हमें मैसेज आ गया यहाँ पे, जुल्फी भाई का एकदम सही जवाब दिया है और साथ में ये राबटा भाई, ये नाम बड़ा अलग लग रहा है इनका, राबटा जी थैंक यू सो मच। अब आपका नाम पूरा आपको लिखना था, अब आपने राबटा लिखा है, आई डोंट नो आपका नाम है या आपका सर नाम है, आई हैव नो आइडिया कौन सा नेम है पाजी। इनके नंबर के 4 digit है 1395। थैंक यू राबटा जी एंड थैंक यू जुल्फी भाई, एब्सोल्युटली सही जवाब है चन्ना मेरिया, यही था वो गाना। अच्छा चल आपको यार इतना सा नहीं समझ आया, वो भाई क्या ही हो रहा है, ये दिल मुश्किल का ट्रैक था यार।
1: मेरे जिक्र का जुबा पे सवाल रखना दिल के संदूक।
0: थैंक यू सो मच, वेल थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, आपने एकदम सही जवाब दिया था। डॉक्टर सुरेश जी थैंक यू एंड समीर अब्बासी जी आपका शुक्रिया सही जवाब के साथ। मोहसिन साहब आप जुड़े हमारे साथ,
1: अंधेरा तेरा,
0: थैंक यू सो मच मोहसिन अंसारी, बनारस से जुड़ गए थे हमारे साथ प्रोग्राम में।
1: जिला सितारा तेरे,
0: मैं भी चलता हूँ यहाँ से,
1: चन्ना मेरे,
0: हाय हाय। सुप्रभात आनंद जी, जय श्री राम, कश्यप फैमिली की ओर से गुड मॉर्निंग। निसार भाई जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। नासिर हुसैन साहब शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, लिखते हैं जीवन की सबसे सुंदर पंक्ति, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है वही जीवन का असली जो है जीवन जीना सीख लेता है और जीवन की कला जान लेता है। आपका दिन खुशियों और सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा रहे, शुक्रिया सर। हमारे साथ ललिता कश्यप जी जुड़ चुकी हैं आज के सुबह, मंसूरी कॉलोनी से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली जी जुड़ चुके हैं। एंड मेरे पास मैसेज पहुंच गया है बबलू जी का, मुंबई महाराष्ट्र से चमन लाल साहब जुड़ चुके हैं मेरे साथ आज के सुबह। चलिए दोस्तों लेता हूँ अब आपसे जाने की इजाजत, होगी मेरी आपकी मुलाकात इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे कल सुबह सवेरे आपके साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, आपका वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों वेडनेसडे की सुबह है और तारीख है आज 24 जून, और एवरीवन आज का थॉट कुछ बहुत खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, रिश्ते और विश्वास। दोस्तों लाइफ में अगर रिश्तों की डोर लव से बंधी हो, अगर हाँ जी लाइफ में ना दोस्तों रिश्ते की अगर डोर लव से बंधी हो और उसकी फाउंडेशन ट्रस्ट पर टिकी हो तो हर रिश्ता मजबूत बन जाता है। रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए केयर, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। याद रखिए, जहाँ विश्वास होता है वहाँ शक की जगह नहीं होती, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूरियाँ भी मायने नहीं रखती हैं। और इस वेडनेसडे मॉर्निंग पर एक छोटी सी रेमेडी भी ज़रूर आप कीजिएगा। देखिए दोस्तों, गर्मी अपने पूरे शबाब में है, इसलिए अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखिएगा। खूब पानी पीजिए, सैलेड आप अपनी डाइट में लीजिएगा, और अपने माइंड को कूल रखिए, क्योंकि सिर्फ बॉडी नहीं थॉट भी फ्रेश रहने चाहिए। और जब आपकी थॉट फ्रेश होंगे तो आपका माइंड भी कूल होगा और आपकी बॉडी भी। तो आप प्यारी सी स्माइल कर दीजिएगा, क्योंकि खुशी भी यहाँ पर आ चुकी है, और जब खुशी आती है तो ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए लेकर आती है। दोस्तों शो का नाम है मॉर्निंग मसाला, जहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। जी हाँ, मैसेज के माध्यम से आप मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, और मैं कहती हूँ कि आप भी अपने ब्यूटीफुल थॉट्स, ब्यूटीफुल बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। और दोस्तों आज क्या स्पेशल होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी, अभी धीरे धीरे थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, बस मैं लौट कर आती हूँ। आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। गुड मॉर्निंग माय लवली पीपल।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
3: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
0: अरे तो परेशान क्यों होना, है ना धानिया नर्सिंग होम। यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने सिटी का फर्स्ट, हाँ जी, फर्स्ट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। और दोस्तों, अभी आपने ट्रैक सुना भी पराग जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में। और दोस्तों, आज जो 24 जून की तारीख है, जिसे मैं आपसे कहती हूँ कि हर दिन अपने आप में बहुत स्पेशल होता है, बहुत ही खास होता है। और दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस। जी हाँ दोस्तों, जब भी देशों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने की, शांति स्थापित करने और बड़े बड़े फैसले लेने की बात होती

अपने देश का गौरव बढ़ा रही हैं। श्रोताओं, महिलाएं केवल घर और परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं निभाती, बल्कि अपने धैर्य, संवेदनशीलता और बुद्धिमता से देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान निभा रही हैं। याद रखिए श्रोताओं, जब महिलाओं को निर्णय लेने का अवसर मिलता है तो समाज ही नहीं पूरी दुनिया अधिक संतुलन, शांतिपूर्ण और बेहतर बनाती हैं। श्रोताओं, नारी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि संवाद, समझदारी और शांति की सबसे सुंदर पहचान भी है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाइए, हमें जल्दी से मैसेज पहुँचाइएगा, हमें इंतजार है आपके प्यारे संदेशों का। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे संदेश आ गए हैं, तो चलिए उनको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुँचाती हैं पूजा जी, एंड विकास नगर से कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये बड़ा आज मुस्कुरा रही हैं, कह रही हैं कि मैम आज बहुत स्पेशल दिन है हमारा। जो मेरा भाई है छोटा, आज उसका जन्मदिन है, बर्थडे है, एंड रेगुलर मुझसे झगड़ा भी करता है, नोकझोंक होती है, लेकिन प्यार भी बहुत करता है। और आज मैंने उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी नहीं बताऊँगी, थोड़ा सा इंतज़ार करवाऊँगी। अरे वाह, क्या बात है, अच्छा लगता है जब कोई सरप्राइज़ हमें देता है। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है मधुबनी बिहार से मोहम्मद शाबिर परवाना जी का, और ये कहते हैं, आरजे खुशी जी को हमारा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, हमारे रेगुलर लिस्टनर हैं मोहम्मद यासीन अंजान जी, और ये हमें आदाब अपना पहुंचाते हैं एवरी डे, आपको भी हमारा आदाब सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, रामपुर से सना जी का मैसेज हमारे पास आया है, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये कहते हैं कि मैम आज हमें एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा, झलक दिखला जा। ओ हो, क्या बात है जी, इरम पाशा को ये डेडिकेट कर दिया ट्रैक, अच्छा ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा सा गाना, लौट कर आते हैं हम। दोस्तों, आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचाएगा, नंबर मैं अगेन रिपीट करती हूँ, 9837896896। ये है आपके अपने शहर का फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और अपने संदेश पहुंचाने में कोई भी कंजूसी मत दिखाइएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक की उस पर।

0: ਕਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला। दोस्तों आज की सुबह एक छोटा सा सवाल, आज की सुबह आप मुझे बताएं आपको अलार्म ने जगाया या फिर मम्मी की आवाज ने। सच सच बताइएगा दोस्तों, आज की सुबह आपको अलार्म ने जगाया है या फिर आपकी मम्मा की आवाज ने। फटाफट से बताइए आपको किसने सुबह सुबह जगाया या फिर आप खुद भी जाग गए। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9883789689। एंड हमारे पास यहाँ पर और भी संदेश आए हैं, मैं उनको क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड ये मैसेज हमारे पास आया है शाजिद का मुरादाबाद से। और इन्होंने कहा है कि खुशी जी हमें एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा। ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो, गमों का दौर आए भी तो मुस्कुरा कर जियो। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है और मीनिंगफुल गाना है, श्योर सो इसको हम जरूर प्ले करेंगे। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी का। और ये कहते हैं, नमस्कार मैम, हम आपका एफएम मुरादाबाद सुनते हैं, धन्यवाद आपका सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी का। और ये हमें नमस्कार पहुँचाते हैं, आपको भी नमस्कार। अगला मैसेज हमें मिला है यहाँ पर अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और कार्ट रोड लदावली से मैसेज हमें पहुंचाते हैं, जय श्री राम आपको भी सर। बताइए दोस्तों, मैंने आपसे पूछा है आज की सुबह सवाल कि आपको सबसे पहले किसने जगाया, अलार्म ने जगाया है या फिर आपकी मम्मा की स्वीट सी आवाज ने आपको उठाया है। हाँ बताइए, देखिए सच सच बताइएगा, झूठ नहीं बोलना है आपको, ओके। चलिए आप अपने संदेश पहुंचाइएगा, मैं यहाँ पर आपको सुनवाती हूँ एक इंटरेस्टिंग सा बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, आप एंजॉय कीजिएगा।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
1: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
6: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
1: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: कॉल 9045912348।

हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने सिटी का नंबर वन रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। और दोस्तों, 24 जून का दिन है एंड भारतीय इतिहास की उस वीरांगना को नमन करने का दिन है जिन्होंने साहस, शौर्य और स्वाभिमान की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। जी हाँ दोस्तों, आज है रानी दुर्गावती बलिदान दिवस। रानी दुर्गावती केवल एक रानी नहीं थी बल्कि वीरता, आत्मसम्मान और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रतीक थी। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। जब दुश्मनों ने उनके राज्य पर आक्रमण किया तब उन्होंने हार स्वीकार करने की बजाय वीरगति को चुना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, यदि मन में साहस और देश प्रेम हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आज के दिन आइए हम सब उन महान वीरांगना को सशत नमन करें जिनके बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। जिस धरती ने रानी दुर्गावती जैसी वीर बेटी को जन्म दिया उस धरती को हमारा बारंबार प्रणाम है। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप भी अपनी डॉटर को पढ़ाइए, आगे उनको सपोर्ट कीजिए जो वो करना चाहती है। उनके ड्रीम्स जो भी हैं उनके ड्रीम्स में आप अपना सहयोग दीजिए, अपनी भागीदारी निभाइए, क्योंकि बेटियाँ करना बहुत कुछ चाहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है और जब परिवार साथ खड़ा होता है तो बेटियाँ आसमान छूने की ताकत रखती हैं। कोई साथ दे या ना दे लेकिन परिवार हमेशा साथ खड़ा होना चाहिए। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपसे एक सवाल भी पूछा था आज की सुबह। मैंने कहा था कि आप मुझे बताइए दोस्तों, आपको सबसे पहले सुबह सुबह अलार्म ने उठाया या फिर आपकी मम्मा की स्वीट सी आवाज़ ने आपको उठाया? बताइए किसने आपको सुबह सुबह जगाया है आज। और हमारे पास यहाँ पर संदेश भी आए हैं तो मैं भी उनको पढ़ लेती हूँ, रीड कर लेती हूँ। इतने प्यार से आपने भेजा है। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है बबली अनजान जी का, साथ में गीता कश्यप जी हैं और ये कहती हैं खुशी मैडम जी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये कहते हैं कि हमें तो एफएम मुरादाबाद उठाता है। ओए होए होए, क्या बात है, सुबह सुबह भजन घर में चलते हैं तो फिर आँखें तो ऑटोमेटिकली खुल ही जाती है ना। थैंक यू सो मच अपना संदेश पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो जी गुड मॉर्निंग, कितना सोते हो आप, उठ जाओ सुबह हो गई है, ये लीजिए ठंडी ठंडी सुबह में आपके लिए गर्मा गर्म चाय। ओ हो, ये किन के लिए संदेश पहुंचाया है रणवीर सिंह जी आपने? नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का एंड ये हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज मुझे मिला है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमारे पास आया है राज टीचर विवेकानंद मुरादाबाद से, तो चलिए दोस्तों लौट कर आती हूँ मैं कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। और हमारे पास कुछ वॉइस नोट भी आए हैं, हम उनको भी प्ले करेंगे। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और अपना संदेश हमें पहुंचाइएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 98-378-96-96। ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन इस गर्मी में आप बस अपना ख्याल रखेंगे ना तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे एंड हेल्दी रहेंगे। और प्यारी सी स्माइल जो है ना चेहरे पर आपके, हाँ इसको हमेशा ऐसे ही बरकरार रखिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ इस ब्यूटीफुल ट्रैक के उस पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी अपने की जिंदगी बचाने के लिए आपको कोई बड़ा त्याग करना पड़े तो क्या आप तैयार होंगे? दोस्तों कहते हैं कि बेटियां घर की रौनक होती हैं, लेकिन कई बार बेटियां अपने माता पिता की सबसे बड़ी ताकत बनकर भी सामने आती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही दो बहनों की कहानियां सुनाने जा रही हूं, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। गाजियाबाद की दो बेटियों ने अपने पिता के लिए ऐसा त्याग किया जिसकी मिसाल हर कोई दे रहा है। पिता की दोनों किडनियां और लीवर गंभीर रूप से प्रभावित हो चुके थे। डॉक्टर ने जल्दी ट्रांसप्लांट की सलाह दी। पूरा परिवार डोनर की तलाश में था, लेकिन तभी उनकी दोनों बेटियां अपने पिता की ज़िंदगी बचाने के लिए आगे आईं। बड़ी बेटी रिक्शा ने अपनी एक किडनी दान कर दी और छोटी बेटी खुशी ने अपने लीवर का एक हिस्सा दान कर दिया। सोचिए दोस्तों, एक पिता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि उसकी बेटियां उसके ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तक देने को तैयार हो जाएं। सबसे भावुक बात तो ये है कि बड़ी बेटी की जल्द ही शादी होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ये फैसला लिया। इतना ही नहीं, उनके होने वाले ससुराल वालों ने भी इस फैसले पर पूरा साथ दिया। और दोस्तों आज की ये कहानी सिर्फ एक प्यार की नहीं, बल्कि परिवार, त्याग, समर्पण और रिश्तों की गहराई की कहानी है। सच ही कहा गया है, जहाँ प्यार सच्चा हो वहाँ त्याग बोझ नहीं बल्कि खुशी बन जाता है। इन दोनों बेटियों को साहस और प्रेम को दिल से हम सलाम करते हैं।

0: और दोस्तों यहाँ पर वक्त हुआ है 11:21 राइट नाउ। यूं ही नहीं कहते हैं घर को, बेटी को घर की लक्ष्मी। एक्चुअली जब बेटी आती है ना तो घर का हर कोना खुशी से झूम उठता है, खिल उठता है। और जब बेटियाँ कहीं घूमने या फिर कहीं कॉलेज भी घर से चली जाती है ना तो घर सूना सूना सा लगता है कि घर में जैसे कोई रहता ही नहीं है। और जब घर में सब बच्चे घर आ जाते हैं तो एकदम घर खूबसूरत लगने लगता है, घर घर लगता है। अभी देखिए कई पेरेंट्स अकेले रहते हैं, बच्चे बाहर स्टडी की वजह से रहते हैं, दूर रहते हैं फैमिली से। मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ जो फैमिली से दूर रहते हैं, आप अपनी फैमिली को टाइम निकाल कर ज़रूर बात किया करो, क्योंकि वो आपकी एक कॉल का इंतज़ार करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर पूरे दिन में आप थोड़ा सा भी 10-15 मिनट भी अगर आप अपनी फैमिली के लिए समय निकालेंगे तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो उनसे बात कर लीजिएगा। और हमारे पास यहाँ पर कुछ और खूबसूरत संदेश आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, और ये कहते हैं आरजी खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी का, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, जय श्री राम। और ये कहते हैं कि मुंबई में रात 2 बजे से बरसात हो रही है लगातार। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भी भेजी है, मुंबई की बारिश बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दुर्गी सैनी जी का, और ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर प्रिया का आया है, और ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं एकता कॉलोनी से। और एक वॉइस नोट हमारे पास यहाँ पर आया है, तो मैं चाहती हूँ कि उसको क्विकली प्ले करूँ, एंड सर भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होंगे, तो सुन लेते हैं क्या पहुँचाया है सर ने।
1: नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे ही होंगे। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, जिसे बजाना पड़ता है, गुनगुनाना पड़ता है और साथ ही मुस्कुराना पड़ता है। और प्रोग्राम मॉर्निंग मसाला, जिसकी प्रेजेंटर आरजे खुशी हैं, आरजे खुशी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन वहां अपने आप को बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। सुंदर आभूषण एवं वस्त्र हमें उतना ही खूबसूरत नहीं बनाते जितनी की प्यारी सी मुस्कुराहट बनाती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहें। अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती। नमस्कार, राधे राधे, मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा नगर पंचायत भागपड़ा से बोल रहा हूँ। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला आरजे खुशी के साथ। नमस्कार, राधे राधे, FM मुरादाबाद, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, क्योंकि यह है आपका पहला मुरादाबाद का सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो आपको देता है पल पल खुशी। नमस्कार, राधे राधे,
0: आपको भी राधे राधे।
1: सभी की आवाज सुनने में अच्छा लगेगा, जैसे आज मैं अपनी आवाज सभी को सुना रहा हूँ, आप भी सुना सकते हैं। नंबर 98-378-96-896 के माध्यम से। नमस्कार, राधे राधे,
0: आपको भी राधे राधे।
1: मुस्कुराने की वजह तुम हो।
0: अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल सुनवाएंगे ये गाना, मुस्कुराने की वजह तुम हो। और सच में दोस्तों, जब आप अपने वॉइस नोट यहाँ पर पहुँचाते हैं, अपने मैसेज पहुँचाते हैं, तो हमें भी मुस्कुराने की वजह मिल जाती है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच भूपी शर्मा जी, आपने इतना प्यारा वॉइस नोट पहुँचाया, इतना प्यारा थॉट आपने हमारे साथ शेयर किया। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अभी लौट कर आते हैं कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप कहीं मजाए, यूं ही मुस्कुराइए, और हाँ, अपने संदेश भी मुझे पहुंचाइएगा। नंबर मैं आपको अगेन बताती हूँ, 98-378-96-896। ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रेडियो बजाते रहिए, गुन गुनाते रहिए। और ये प्यारा सा गाना, हमारे शहर में बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, ये बारिश वाला गाना आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है बबलू सैनी जी ने मुंबई महाराष्ट्र से। वहाँ बारिश हो रही है।

0: नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
1: कॉल 8826213131।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी खुशी। और दोस्तों देखिए, यहां पर वक्त हुआ है 11:38 और मुस्कुराने की वजह आप सब हैं। इसलिए मैं कहती हूं दोस्तों कि अपनी मुस्कुराहट को कम मत होने दीजिए। इतना खूबसूरत जीवन आपको मिला है, इतने अच्छे आपके फैमिली मेंबर्स हैं एंड इतने अच्छे आपको फ्रेंड्स मिले हैं, लाइफ पार्टनर मिले हैं, तो और क्या चाहिए जिंदगी में। सब कुछ तो आपके पास है। तो उसको संभाल कर रखिए जो आपके पास रिश्ते हैं, एंड चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, फैमिली का रिश्ता हो, या फिर आपके जीवन साथी का रिश्ता हो, तो उन सबको आप समय दीजिए, संभाल कर रखिए और अपनों के साथ वक्त बिताइए। क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा महंगे तोहफों से इंसान की पहचान नहीं होती है, इंसान के रिश्ते स्ट्रांग नहीं होते हैं। अगर रिश्ते मजबूत होते हैं ना, तो वो होते हैं समय, रिस्पेक्ट, प्यार। इन तीनों चीज़ों से रिश्ते खूबसूरत बनते हैं और रिश्ते लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिश्ता लंबे समय तक चले एंड उस रिश्ते में प्यार बरकरार रहे, तो उसके लिए आपको समय देना होगा। जो आज के टाइम में हर इंसान कहता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, वो सोशल मीडिया पर घंटों बिता देते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा रियल लाइफ में भी आइए, अपनों को समय दीजिए। क्योंकि हमें नहीं पता होता है नेक्स्ट पल क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं मालूम होता है। तो मैं इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों, जो आपके पास समय है उसे अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए। एंड जो भी आप करियर में करना चाहते हैं वो सब कीजिएगा, लेकिन उन सब के बीच अपनी फैमिली को मत भूलिएगा, क्योंकि वो सबसे मोस्ट हैं आपके लिए, आपकी खुशी के लिए वो हर चीज़ करते हैं। एंड अपनी खुशियों को भी कई बार वो पीछे छोड़ देते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो दोस्तों आपकी रिस्पांसिबिलिटी है उनको खुशियाँ देना, उनके साथ समय बिताना। तो मैं आपसे बस बार बार यही कहती हूँ कि अपनों के साथ समय ज़रूर बिताइएगा। और बाकी कार्यक्रम को हम अभी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारे पास और भी खूबसूरत संदेश आए हैं, तो मैं उनको जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं सर? आपकी दुआएँ हैं, हम सब बहुत ही अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका दिल से धन्यवाद। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ललिता कश्यप जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से, और ये कहती हैं, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहती हैं, मैम आज हमारी शादी को 15 साल कंप्लीट हो गए हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह है और हम दोनों का सफ़र हंसते बोलते कट गया। मैम पता भी नहीं चला 15 साल कैसे कंप्लीट हो गए हैं, और आज हम अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। अरे वाह मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी शादी के 15 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। और ये कहते हैं, मैम आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना आज की सुबह, बहुत ही अच्छा था। कहते हैं कि मेरी भी सुबह की शुरुआत, अरे वाह। ये कहते हैं कि मैं भी सुबह सुबह जब फैमिली में उठती हूँ तो रेडियो सबसे पहले ऑन करती हूँ, और आई लव रेडियो। अरे वाह क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच। आप दोनों हमेशा यूं ही खुश रहें, साथ रहें, एंड आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। हम तो यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और इन्होंने कहा है कि दोस्ती से कीमत
कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। दोस्ती यूं तो कच्चा धागा है, मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। ओ हो हो, क्या बात है। आपने अपने दोस्तों के लिए खूबसूरत सी लाइनें बोली है ना, तो आपके दोस्त खुश हो गए होंगे। और चलिए दोस्तों, सुनवाती हूँ मैं एक और शानदार सा ट्रैक, और इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी है महराजुद्दीन जी ने कश्मीर से। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत, लौट कर आती हूँ मैं। आप नहीं मजाइए, बस यूं ही मुस्कुराइए एवरीवन।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है दोस्तों, ये अभी ब्यूटीफुल ट्रैक आपने सुना। और ये ट्रैक मैम ने, ललिता कश्यप जी ने डेडिकेट किया था अपने हम सफर को, अपने हस्बैंड को, संदीप जी को। और बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी सत्यमेव जयते 2 से। और इस ब्यूटीफुल ट्रैक को गाया था रोचक कोहली, साथ में जुबिन नौटियाल, नीति मोहन की खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक। और दोस्तों वक्त हुआ है 11:54 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में 11:54। दोस्तों गर्मी अपने पूरे पीक पर है और ऐसे मौसम में सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी कूल एंड हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। तो आइए कुछ आसान और यूजफुल समर हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले दोस्तों वाटर इंटेक बढ़ाइए। जी हाँ, प्यास लगे तभी पानी पिए, ऐसा जरूरी नहीं दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। एंड तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, आम और लीची जैसे फ्रूट्स ना स्वादिष्ट सिर्फ स्वादिष्ट ही होते हैं बल्कि शरीर को भी ठंडक देते हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कीजिएगा। और नेचुरल ड्रिंक्स को चुनिए, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, सत्तू का शरबत और बेल का शरबत गर्मी में किसी एनर्जी बूस्टर से कम नहीं होता है, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और जब घर से बाहर निकलें तो पहले पुदीने की 4-5 पत्तियां थोड़ा सा सौंफ चबा लीजिए, इससे शरीर को ताजगी महसूस होती है और गर्मी का असर थोड़ा कम लगता है। तो आप ये चीजें कर सकते हैं अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो। और दोस्तों प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है, कम नींद और

ज्यादा धूप शरीर को जल्दी थका देती है, इसलिए अपनी स्लीप का ध्यान भी रखिए। प्रॉपर 7 घंटे 7-8 घंटे की नींद आप जरूर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अम्ब्रेला, कैप या फिर कॉटन स्कार्फ जरूर कैरी कीजिए, ये आपको गर्मी से बचाएगा। बाकी दोस्तों याद रखिए, हेल्दी रहिए, तभी तो जब आप हेल्दी रहेंगे तभी तो आप हैप्पी रहेंगे ना। इस गर्मी में अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए, हेल्दी खाइए और हमेशा मुस्कुराइए। और अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको सी यू सून 3 से 5, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप सब हमारे साथ कनेक्ट हुए, आपने हमारा साथ दिया एंड और आपकी चॉइस के गाने भी बहुत शानदार थे। आप ऐसे ही सुनते रहिएगा एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए।

0: बाय बाय दोस्तों।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सेहत सही लाभ कई और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, किशोरियों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं, ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सेहतिया भैया जी हैं।
1: नमस्कार खुशी जी। जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह न मिले तो बच्चा उलट सकता है, इसलिए सही बातें जानना और समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। वैसे पूर्वावस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
1: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर भी पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा, ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
0: भैया जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
1: देखो जी, कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर न लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझकर होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार भी है, ये समझना ही असली समझदारी है।
0: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे कैसे क्या करना चाहिए?
1: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए, अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
0: सेहतिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती है, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन, ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधाएं कितनी जरूरी हैं।
1: बिल्कुल आरजे खुशी, चाहे गांव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई है, लड़कों से कहा जाता है कि अब घलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे, इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ देना है।
0: सेहतिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, ऐसी करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
1: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का खतरा भी हो सकता है, फिर लड़के की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं, जिंदगी बस घर गृहस्थी तक ही सिमट जाती है।
0: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो डर की वजह से चोरी छुपके गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक है?
1: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह गर्भपात करवा लेती है, ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है।
0: ठीक कहा आपने। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है।
1: किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं, वे बहुत ही नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कॉन्डम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वह कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, तो वह अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
0: सेहतिया जी, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बात की है, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कत क्यों बढ़ रही है?
1: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है, और ऊपर से समाज की उम्मीद कि तू लड़का है रो नहीं सकता, तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं है, तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती है। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरते रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रह, ऐसी बातें मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो वो कमजोर नहीं है, एक समझदारी वाला काम है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले, तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
0: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सके?
1: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते होंगे इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसी समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई न कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या गर्भ से बचने के लिए उपाय यानी गर्भ निरोधक की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
1: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगे तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो तो वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो जाए तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है, उस लड़की की सेहत पर भी खतरा पड़ सकता है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कॉन्डम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली क्या होती है, कैसे काम करती है, या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होता है।
0: लेकिन एक बात बताइए सिहतिया जी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया वे गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं होता है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना होता है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
0: सिहतिया जी, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा ही पहल हुई है?
1: बिल्कुल जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
0: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं?
1: RKSK बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक। ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं जहां किशोर अपनी समस्याएं खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूरण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी ना हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों को सेहत के बारे में बता सके।
0: अच्छा सेहतिया जी, ऐसा क्या है?
1: हाँ, अब जैसे मेरे गाँव की सीमा है, वो कक्षा 2 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड संभाल सकें। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिससे इन्फेक्शन हो जाते थे, अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोर के लिए ही नहीं बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह सभी की मदद बिना भेदभाव के कर सके।
0: सिहतिया जी, अगर RKSK जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंच जाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे।

0: देखिए जी, एक और बढ़िया योजना है अर्श। इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
1: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है सिहतिया जी।
0: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुराने शुरू कर देती थीं, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में आरकेएस की योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन एएनएम दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी है। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गईं। अब सरिता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
1: बिल्कुल सहेतिया जी, जब कोई इतनी गंभीर बात हो, खासकर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं दूसरों का भी नुकसान होता है।
0: सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था, चक्कर आ जाते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र गई और वहाँ मौजूद एएनएम रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
1: मतलब ये योजना सच में जमीन पर असर कर रही है।
0: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये है कि पास के गाँव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी। 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे उसने, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। बोली अब ज्यादा पढ़ाई का फायदा नहीं है, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल के पहले शादी करना ना सिर्फ कानूनी गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने यह भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग दे रही है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद भी करती है।
1: अरे वाह सिहतिया जी, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिल जाए तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
0: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और न ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा सिहतिया जी। दोस्तों, ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुलेगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई में। तब तक के लिए सुनते रहिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजना का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी सेहत के लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। धन्यवाद।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 और आज का प्रोग्राम बहुत ज्यादा खास है, सेहत सही लाभ कई। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रीना। आज की कड़ी बहुत खास है क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और दूसरा है विश्व पोषण दिवस यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नजर में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दे सके तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
1: धन्यवाद आरजे रीना, और मेरे सभी प्यारी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण ये दोनों ही एक ऐसे विषय हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफा जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उसकी प्रक्रिया को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलत फहमियाँ झिझक मौजूद है।
0: सच कहूँ सियतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड्स शब्द बोलना भी आसान नहीं होता, लड़कियाँ चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों है?
1: देखो आर्जेरीना, ये एक सामाजिक सोच का मामला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जिससे ये कोई गंदगी या शर्म की बात नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि हर लड़की और हर महिला के जीवन में एक सामान्य जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तो लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
0: मतलब ये सिर्फ एक महिलाओं का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
1: हाँ, माँ पिता भाई पति शिक्षक सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
0: ये तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
1: देखिए आर्जेरीना, मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड्स को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड, कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधनों का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की साफ सफाई रखना और इस्तेमाल की गई सामग्री को सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
0: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम संसाधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती हैं क्या?
1: बिल्कुल आर्जेरीना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाती, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिलते हैं। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार वे समुदाय मिलकर सुविधाएं सुनिश्चित करें।
0: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्योंकि अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
1: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल सही समझाया आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी जैसे चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: तो एक और संतुलित आहार कैसा होना चाहिए और हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
1: देखिए आर्जेरीना, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विधिवद्धता, आधी थाली में सब्जी हो, साथ में दाल या प्रोटीन जैसे अनाज, रोटी, चावल और अगर संभव हो तो दूध, दही या हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए, पानी भी पर्याप्त मात्रा में ही पीना चाहिए।
0: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है वही सबसे अच्छा है, बस हम उसे सही तरीके से अपनाते हैं तो।
0: सेहतिया भैया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझ पाते जब तक वे किसी असली कहानी से ना जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
1: बिल्कुल आरसी रीना जी, मेरे पास एक कहानी है और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ श्रोताओं। हमारे ही एक गांव में एक लड़की रीना की कहानी। रीना करीब 14 साल की थी, पढ़ने में तेज लेकिन बहुत ही चुपचाप रहने वाली लड़की। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुए तो वो घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी खुलकर बात ही नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया और कहा, किसी को बताओ मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए और ना ही उसे ये पता था कि कितनी बार बदलना है। वो भी बस उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रहती थी। धीरे धीरे उसे खुजली और जलन होने लगी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद ये भी नॉर्मल है। इसी के साथ एक और समस्या थी, रीना का खान पान। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियाँ, फल, ये सब तो बहुत ही कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था, इवन उसे चक्कर भी आते थे। कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आई। उन्होंने लड़कियों से इस विषय में खुल के पीरियड्स के बारे में बात की। पीरियड्स क्या होता है, उसे कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतना खुलकर सब कुछ बता पा रही थी और सारी बातों को सुन पा रही थी। शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानी बताई। स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने उसे समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। उसे सैनिटरी पैड दिए गए और ये भी बताया गया कि आयरन की कमी उसे क्या क्या प्रॉब्लम दे सकती है। और उसके बाद आशा दीदी द्वारा उसे

0: आयरन की गोली दी गई और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह भी दी गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू किया, समय समय पर पैड बदलना सीखा और अपने खाने में सुधार किया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। आज रीना अपने गाँव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण हमें इसे आसानी से संभाल सकने में हमारी हेल्प कर सकता है।
1: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
0: बिल्कुल आरजी रीना, और हमारा मकसद भी यही है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
1: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आरजे रीना। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुषों में भी पोषण की कमी एक गंभीर समस्या है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं, दहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता है। कई बार वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं। इसका असर उनकी ताकत कम करना, उनकी क्षमता कम करना और उन्हें लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसका
1: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझते हैं, उसके पीछे भी पोषण की ही कमी हो सकती है।
0: बिल्कुल आरजी रीना, यही बात हम विश्व पोषण दिवस के माध्यम से समझाते हैं और विश्व पोषण दिवस की संदेश से हमें ये बात जोड़ देती है। इसी दिन का मकसद है सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए जरूरी है। और जब हम आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, तो इसका मकसद भी यही है कि सही पोषण पुरुष हो या महिला, हर किसी को मिलना चाहिए। और जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर अ पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड, तो इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसे समाज की योजना बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और बिना झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। और इसमें पोषण भी एक बहुत बड़ी कड़ी है श्रोताओं, और बहुत ही मजबूत कड़ी है, यानी कि ये दोनों ही विषय एक दूसरे को जोड़ते हैं।
1: सेहतिया भैया, आपने अनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
0: देखिए आर्जेरीना, अनीमिया भारत में एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य समस्या है, खासकर किशोरी लड़कियां और महिलाओं में इसकी दरें काफी ज्यादा हैं, लेकिन पुरुष भी इसमें अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होती है। महिलाओं में यह समस्या ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उन्हें हर मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो ये कमी और भी बढ़ जाती है।
1: तो इसका सीधा मतलब है, अगर हम पोषण पर ध्यान देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही कहा अर्जेरीना, और बिल्कुल सही समझा आपने। इसीलिए तो जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, दाल और चना, गुड़, मूंगफली, तिल, और अगर संभव हो तो दूध, दही या अंडा या अन्य प्रोटीन के जो सूत्र हैं, उनको भी आप आहार में जरूर शामिल करें। फल जैसे केला, अमरूद, संतरा, ये भी बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चीज को रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
1: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी, सेहत उतनी मजबूत होगी।
0: बिल्कुल सही कहा आरजी रीना आपने, और यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक और बात, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो भी खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वो भी हमें बीमारी का कारण बना सकता है।
1: साथियों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है बल्कि बल्कि यह हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती हैं। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
0: याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज की यही शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा इसी शो में, यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, नमस्कार।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: प्रगति पथ पर बढ़ता देश,
7: जन जन तक पहुंचा संदेश।
8: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, PM किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
9: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
0: आपने ट्यूनिंग किया है FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और वैसे तो इस प्रोग्राम में सच बता रहा हूँ, मेरी एंट्री होना बिल्कुल पूरी तरह बैन है, निषेध है मेरा आना, लेकिन मैं जबरदस्ती घुस गया हूँ। आज प्रोग्राम का नाम है महिला मंच, इसमें खुशी और रीना आपको मिलती है। लेकिन आज मुझे बहुत सारी महिलाओं ने कहा बेटा आप चलो हमारे साथ, आज तुम्हें नई नई जानकारियां देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जितने भी पुरुष लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है महिला मंच है तो यहाँ पुरुषों का काम नहीं है भाई, पुरुष और महिला से ही एक समाज बनता है। तो जितनी इंपॉर्टेंट पुरुष है उतनी इंपॉर्टेंट महिला भी है, और जितनी महिलाएं उतनी पुरुष हैं। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी होस्ट है रीना। हाय रीना, वेलकम। कैसा लग रहा है महिला मंच पे पुरुष मंच को खड़ा करके?
10: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बोला भी था तुम्हें कि भाई आ जाओ, हाँ महिला मंच में तुम भी शामिल हो जाओ। फाइनली तुम आज हो गए।
0: गाइस, मैं महिला मंच में शामिल हुआ, महिला मंडली में शामिल हुआ, इफ यू डोंट माइंड। और आज मजे की बात है कि महिला मंच में एक बहुत ही खूबसूरत महिला को हमें आमंत्रित किया है स्टूडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की महिला ना किसी से कम नहीं है। क्यों रीना? आज की लड़कियां हो गई, महिलाएं होंगी, जो घर में पहले हमें लगता था सिर्फ हमारी मम्मियां घर तक ही सीमित है, अब वो घर से रील बना बना के भी फेमस हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। स्टोरी लगा लगा के फेमस
10: है, काम से लेकर ऑफिस तक
0: सब चीज मैनेज कर रही है हमारी मम्मियां। तो अब हमारी मम्मी सिर्फ होम मेकर नहीं बची है, और इसी बात पे एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मम्मी को इन्वाइट किया है, मैं तो यही कहना चाहूंगा उनको। आज महिला मंच में हमारे साथ कुमकुम भी है। हेलो, हाउ आर यू?
11: मैं
0: बहुत ही
11: कि मैं भी आती हूँ खुशी दी और रीना दी के साथ।
0: हाँ, मुझे मैं महिला मंच में बहुत कम आता हूँ इसलिए मुझे याद नहीं है। तो आपने पूछा आप कैसे, हाउ आर यू, तो मैं बहुत भूखा हूँ,
12: खाने का गाइस, अभी जाके खाना खाऊंगा. और जो हमारी गेस्ट है उनको वेलकम करते हैं. मैम हाउ आर यू, कैसे हैं? वेलकम टू एफएम मुरादाबाद एंड दिस इज महिला मंच, ब्रांड न्यू शो, आपका स्वागत है.
13: मैं शैली सिंह मुरादाबाद से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस शो में आके. और
12: अरे वाह, क्या बात है. और बिल्कुल होनी चाहिए, मुझे लगता है शैली जी एक महिला होने के नाते ही अपने आप में एक बहुत गर्व का मोमेंट होता है कि जब आप कुछ अच्छा करके आ रहे हो, कुछ बड़ा करके आ रहे हो, तो ये आपके लिए और भी बढ़िया होता है. क्यों रीना? जैसे कि आज जो शैली जी हमारे साथ मौजूद है, वो सिर्फ शैली नहीं है, उनके काम भी बिल्कुल सराहनीय है, बहुत अच्छे अच्छे काम करके आई है वो. तभी आज स्टूडियो में आपके बीच में हमने उनको आमंत्रित किया है. थोड़ा अपने बारे में बताएं हमारी महिलाओं को जो लोग सुन रहे हैं.
13: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल छजलैट. मैं जिम ट्रेनर भी हूँ. योगा मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, योगा जिम ये सारी चीजें.
12: तो कहना है योगा में रुचि भी है आपकी, योगा टीचर भी आप बन रही हैं.
13: रुचि मदान, मैं उनके स्टूडेंट हूँ.
12: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया. रिसेंटली आई थी रुचि जी वैसे हमारे स्टूडियो में, बहुत बढ़िया. इसके अलावा आपने बताया प्रिंसिपल भी.
13: हाँ, प्रिंसिपल RSM पब्लिक स्कूल छजलैट.
12: ओके, छजलैट में आप वर्किंग है. मैम इतने सारा काम कैसे कर लेती हो आप?
13: मैं बस कहते ना, महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं से. आप नवदुर्गा में जो पूजा करते हैं किसके लिए करते हैं? शक्ति के लिए करते हैं. और शक्ति क्या है? हम ही धन भी हम है, विद्या भी हम है.
12: सही बात,
13: सब
12: है.
13: कुछ हम
12: मुझे
13: है.
12: लगता है अगर देखा जाए ना, तो हमारे आसपास की चीजें है ना, वो सब भगवान देवियों से जुड़ी है. धन की देवी लक्ष्मी है, ज्ञान की देवी सरस्वती जी है, शक्ति की देवी माँ दुर्गा है, काली देवी सर्वनाश करने
13: जब
12: वाली
13: हम
12: है,
14: अन्न की देवी अन्नपूर्णा.
12: हाँ, तो मतलब हर माँ गंगा जो जिसमें हम नहाते धोते हैं वो गंगा मैया है, वो भी गंगा माँ है. तो सारी नारियों से ही हमारा जो है सजा हुआ है पूरा संसार,
13: और जिसके माध्यम से हम आते हैं वो भी नारी.
12: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने. तो मुझे लगता है कि आज जो है नारियों के ऊपर बहुत सारी बातें होने वाली है, और इस प्रोग्राम में हमने मैम को इनवाइट किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, और मुझे लगता है महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन भी है. और इसके अलावा वो गाड़ियों में रील भी बनाती है बैठ के, वो बात तो बहुत अलग है क्योंकि वो भी उनको बहुत पसंद है. मुझे लगता है कहना चाहिए, वो इतनी एक्टिव है कि लोग गाड़ी चलाएं बट वो रील भी बना लेती है. वैसे ये बहुत रिस्की भी होता है, आप कैसे करती हो ये?
13: नहीं, अपने अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टैलेंटेड है, कि वो गाड़ी चलाने के साथ साथ आप बीच बीच में आपको एक्सप्रेशन भी देते जाएं.
12: वो तो आप जबरदस्ती उनको बीच में ऐड कर लेते हो कि आओ ना.
13: ये तो शक्ति है कि आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि नहीं, कि आपकी तरफ नहीं, मेरे को पहले एक्सप्रेशन दो, बाद में चलाओ.
12: क्या बात है,

0: नहीं, अच्छा हम बात कर लेते हैं अब महिलाओं के बारे में। जैसे शैली जी आप बहुत सारा काम करती हैं और ऐसे आपकी जैसी बहुत सारी तमाम महिलाएं हैं जो एजुकेटेड हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो बस सोचती हैं, कर नहीं पाती हैं, क्योंकि कहते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए एक कदम का आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, एक पॉजिटिव स्टेप लेना बहुत जरूरी है। तो आपको कैसे आया ये और जो लोग आपको सुन रहे हैं ताकि उनको भी ये चीज आए कि वो भी शुरुआत करें।
1: देखिए आजकल की अगर हम बात करते हैं कि महिला इतनी कमजोर है तो आज की महिला तो नहीं है।
0: करेक्ट,
1: ये 90s के दौर की जब हमारी मम्मियाँ थी तब की बात है ये कि उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता था।
0: करेक्ट,
1: अपने लिए एक साड़ी लाने के लिए भी उन्हें 10 बार सोचना पड़ता था कि मैं इस फंक्शन में यही पुरानी वाली पहन लेती हूँ। आजकल की लेडीज सशक्त हो चुकी हैं, वो समझ चुकी हैं अपनी प्रायोरिटीज कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। वो सेल्फ डिपेंड भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं और वर्किंग भी हैं, घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी संभाल रही हैं। उन्हें ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या करना है। लेकिन जो पहले की हमारी मम्मी लोग होते थे उनके लिए उनका दायरा इतना सीमित होता था कि वो घर और बस बच्चे और उनका पति और ससुराल मायका, उनका दायरा बस यहीं तक था। वो अपनी जो फीलिंग्स होती थी ना वो भी घर में शेयर नहीं कर पाती थी, उनके लिए भी उनको कोई नहीं मिलता था कि वो अपनी फीलिंग्स भी किसी को कभी शेयर कर पाए।
0: करेक्ट, बिल्कुल। तो मतलब ये आपने बिल्कुल सही कहा, आज की नारी जो है किसी से कम नहीं है। क्यों रीना, ये बिल्कुल बात सही
2: कह रही
0: है। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो इन बातों को बहुत फॉलो करती हैं और उनके फैमिली में एक रिचुअल्स बना आया है कि भाई वो शादी के बाद कुछ नहीं करेंगे या नहीं करने देंगे, मतलब ऐसा भी
2: अभी भी बहुत ऐसी फैमिली
1: ऐसी है। लेकिन उनको ऊपर ये प्रेशर है कि ये हमारे संस्कार है, इन्हें ही आपको आगे
0: मेंटेन करना है।
1: लेकिन संस्कारों को भी मेंटेन करने के साथ साथ भी आप अपने आप को ग्रो अप कर सकते हो,
0: करेक्ट,
1: कॉन्फिडेंट बन सकते हो, ये नहीं बताते हैं।
0: लेकिन मुझे ऐसा लगता है शाली जी आप जो कर रही है ना ये एक तो मोटिवेशन है ही और महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन भी दे रहा है ये चीज, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली भी तो स्ट्रांग बना रहा है ना।
1: फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहा
0: है। आने वाला टाइम देखिए कितना महंगा हो रहा है, आजकल कितनी सारी शॉर्टेज पड़ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट के अंदर, आपको बच्चों को भी अच्छे स्कूल देने हैं, अच्छी उनकी चीजों का भी ध्यान रखना है, तो इसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना महिलाओं को भी।
1: बिल्कुल, और सबसे ज्यादा तो मैं पुरुषों का सहयोग चाहूंगी कि वो घर में रह करके उनसे जो भी बन पड़ता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि एवरी टाइम आप घर में रह के उनका घर के कामों में सपोर्ट करें, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं उनको हेल्थ को लेकर के कि आप कुछ अपने लिए, पहले तो सबसे पहले हेल्थ है हमारी, आप अगर महिला अगर घर की स्वस्थ है तो वो सबका ध्यान रख पाएगी। अगर एक दिन आपकी मम्मी, आपकी वाइफ या सिस्टर बीमार पड़ जाती है तो अस्त व्यस्त हो जाता है,
0: बिल्कुल सही कहा,
1: वो कहानी बिगड़ जाती है घर की। लेकिन सबसे पहला हमारा है कि उनको स्वस्थ रहने पे उनके टाइम से नाश्ता करें, टाइम से खाना खाएं, उनसे भी पूछें आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा। ये केवल पत्नियों का ही नहीं बन रहा है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम्हारा दिन भी कैसा रहा, तुमने आज क्या सोचा, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये चीज है।
0: मतलब दोनों चीजों को मेंटेन

0: ये चलना है।
1: हाँ जी
0: करेक्ट, बहुत अच्छा बोला आपने। और कुमकुम तुम क्या कहना चाहते हो?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी जैसे कि मैम ने अभी बताया, संस्कार और रीति रिवाज के साथ जो हस्बैंड कहते हैं ना कि ये हमारे घर के संस्कार हैं, ये हमारी रीति रिवाज है, रिचुअल्स हैं, आगे नहीं करना हमारी फीमेल्स को, उस नाम पे ना उसको रोक दिया जाता है।
0: करेक्ट।
2: लेकिन हमें ना उन चीजों को वहां तक सीमित नहीं रख के उस सबके साथ साथ अपनी फीमेल को मतलब अपने पार्टनर को आगे बढ़ाना चाहिए, कभी भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उनके साथ उनको मेंटली हेल्थ भी ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ इनका मेंटल हेल्थ भी अगर ठीक है ना तो वो हैप्पी रहेंगी, और जब वो हैप्पी रहेंगी तो उनका स्वास्थ्य वैसे ही ठीक हो जाएगा।

0: दोस्तों बिल्कुल, देखिए एक्चुअली ना मुझे भी ऐसा लगता है कि लेडीज के साथ साथ ना हम पुरुषों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जब तक हम चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको पुश नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि चीजें अच्छे लेवल पे जा सकती है ना। जैसे आज ही मैं राजमा चावल बनाना सीख के आया हूँ भाई, कल मेरी शादी होगी तो मेरी बीबी को कुछ तो रिलैक्स मिलेगा भाई। अगर वो अपने घर चली जाएगी तो मुझे होटल का वेट नहीं करना पड़ेगा। शैली जी,
1: तो ये तो एक बड़ी एक सबसे बड़ा मिथ लगता है मुझे कि सिर्फ महिलाएं ही खाना बनाती
2: हैं। हाँ, वही
1: आप रेस्टोरेंट्स में देख लो, होटल्स में देख लो,
0: मेल खाना बना
1: शेफ है। शेफ कौन है? आप फीमेल शेफ बहुत ही कम
2: पुरुष
1: मिलेंगे नहीं।
0: तो फिर ये समाज में क्यों है कि
1: आप घर में हलवाई बुलाओगे कोई लेडीज नहीं आएगी, पुरुष ही आ रहा है।
0: हाँ।
1: ये केवल घर का ही चल रहा है कि आप ही को खाना बनाना है, आप ही को ये करना है।
3: ये तो ना हमारे कुकिंग वर्ड में ही डिफाइन कर रहा है, कुकिंग। यहाँ किंग की बात हो रही है, क्वीन की बात नहीं हो रही।
0: करेक्ट,
1: तो
0: एग्जैक्टली
1: बिल्कुल सही बात है। आई
2: नो, वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: तो जितने भी जैन से वो किंग बन जाए, कुकिंग करने के साथ साथ कुकिंग करें।
1: मैं ये कह रही हूँ

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद हैं एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी बातें करती हैं और बहुत ही अल्टीमेट सी यू नो वाइब आ रही है मुझे इनके साथ यू नो बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा मैंने कहा था ना मैम बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील यू नो आएगी बातों में। और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम आपको स्टेशन आके कैसा लगा, हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का यू नो एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको definitely मजा आएगा इस conversation में और आज बहुत सारी बातें होंगी और मैं मतलब बहुत happy feel कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम situation में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे doctors होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो questions आप हमें भेजते हैं basically। और आज हमारे पास आप ही के questions हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जैसे पुराने जमाने
0: दाई जी बिल्कुल बिल्कुल
1: ठीक है, तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देर आर लॉट ऑफ चीज, देर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की आई मीन पार्टनर होती है। तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेज, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबॉडी सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं। बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती है, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है। उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभाल है, बट उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते
1: हैं। आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर वर टू पीपल, ठीक है? हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है? अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी डिनाइड, बोली नहीं मैम, घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब

0: प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड
1: वेरी बैड.
0: तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें. तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ. एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मेयर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं आप वो करा लो. डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे. अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे. आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे. तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ. अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकती. और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है.
1: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं. तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. जैसे कि मैम ने कहा, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर. और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं. आज वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं. अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच. आजकल का लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप हैं जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
0: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर.
1: ठीक है.
0: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट. एक बहुत इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर. ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता. एक स्पैचुला से आपकी सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है. इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर. आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे. करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है. इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है. अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले. पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेज, बट ऐसा नहीं है. कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए.
1: करेक्ट करेक्ट.
0: गवर्नमेंट इज रनिंग कि
1: एब्सोल्युटली
0: अब पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे. ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन्ड तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए. अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3 से 4 हजार रुपए की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट.
1: फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल.
0: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को. अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती हैं. डोजिंग का भी है कि 9 to 15 इयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे. और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर है तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन. ठीक है, और ये लगवानी चाहिए. इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन. आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है. सब अपनी बच्चियों को लगवाएं और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स आप प्लीज इसे लगवाएं. दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट. तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप इयरली नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाय ईयरली आप मेमोग्राफी करा लें. प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती.
1: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया. यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं जो एचपीवी वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है. पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है. आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
0: I would say कि प्लीज लगवाइए, ठीक है. इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है. कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही. कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए.
1: Absolutely.
0: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा.
1: करेक्ट मैम, बिल्कुल.
0: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि एक सरकार का कोई स्कैम है. नो, इट इज नॉट अ स्कैम. इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को. प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें.
1: एब्सोल्युटली. और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एवी का वैक्सीन आप जरूर कराएं. ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें. मैम थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में. अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को, कल्चर्स को फॉलो करते हैं वो लोग. उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेकर बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं, पैड्स मत यूज करो, ये मत करो.
0: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है. आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है, ठीक है. अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है. इफ यू सी सनातन धर्म, दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल. क्यों क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना. जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच. तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन. अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी.
1: Correct.
0: मंदिर ऊपर हुआ करते थे.
1: Right.
0: तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था. तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं. दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था. इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है. हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना. सो अभी भी, अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे. द थिंग इज, जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू. आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माय डॉटर विल फॉलो. ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है. बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माय मदर. ठीक है, मम्मी जब होती है तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स की. ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माय होम आई फॉलो माय रिचुअल्स. तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते. थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी. जब इतना लास्ट, पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का. आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता. तो थिंग्स आर चेंजिंग. व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग, व्हाई कांट वी अपडेट ना.
1: करेक्ट. अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं.
0: Exactly.
1: तो उसके विषय में थोड़ा सा आप बताएं.
0: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज. आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज. ठीक है, अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमेनोरिया यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज. तो ये सब बीमारियां हैं. अब पीरियड नहीं आए, एक दो दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है. बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास 3 पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा. हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम.
1: ओके, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. सो आई होप जो भी वुमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे. आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं. एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज़ से कहीं ना कहीं.
2: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लविना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: और बहुत ही अच्छा लगता है मैम। अच्छा, एक विमेंस के लिए सही खान पान सही न्यूट्रिशन का होना कितना जरूरी है? अगर मैं खुद से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक फीमेल के लिए उसकी उसका डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लाइफस्टाइल को बदलने में?
1: सी यार, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ये अभी हो रही है, ठीक है। पुराने जमाने में आप अपनी दादी नानी से बात करो, कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो बोलते थे, मतलब माई दादी यूज टू से कि हमें तो हमारे हस्बैंड छूते थे और बच्चे हो जाते थे। पता नहीं आजकल की लेडीज का क्या हाल होने लगा है, ये तो इनफर्टिलिटी ही ट्रीट कराती रहती है, IVF करा रही है। प्रॉब्लम क्या थी? सी प्रॉब्लम थी उनका लाइफस्टाइल ऐसा था, प्लस वो इतने एक्सपोज नहीं थे केमिकल्स के लिए, बैलेंस डाइट ले रहे थे, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज इन अ सेंस हमारे सारे काम जो होते थे मैनुअल होते थे, ठीक है, प्रॉपर स्लीप लेते थे।
0: Correct.
1: जब से ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक आ गया है, बच्चे रात भर 2-2 बजे तक ही मोबाइल ही देखते रहते हैं। दिस इज अ रेडिएशन, है ना?
0: Absolutely.
1: आप रेडिएशन एक्सपोज कर रहे हो, प्लस उनका खान पान बदल गया है, हर चीज स्विगी हो गई है, हर चीज स्विगी हो गई है, तो आप घर बैठे ही सब कुछ मंगा रहे हो, ठीक है। बाहर का खाना ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आएगा, आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा, उसके बाद जो है कोई फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है,
0: करेक्ट,
1: ठीक है। हाँ, सब चीज ऑनलाइन हो गई है, सब चीज कैब्स पे आने लगी है, तो इवन पार्क में भी यू विल गेट अ वेरी लेस गैदरिंग,
0: करेक्ट
1: ना। तो दिस ऑल लीड टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये PCOS, PMS कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इट इज ओनली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कि आपने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा। आप कार लेते हो, ठीक है, कार लेते हो तो कार की सर्विस कराना जरूरी है, वंस इन अ ईयर उसकी सर्विस होना जरूरी है। आप नहीं कराओगे तो 2-3 साल बाद उसका माइलेज जीरो है। ऐसी आपकी बॉडी का हाल है, अगर आप उसको नहीं सर्विस करेंगे, उसको नहीं नेचुरल चीजें देंगे, तो ऑब्वियसली ये बॉडी नहीं रिएक्ट करेंगे। एंड आई एम गेटिंग PCOD के पेशेंट, इतनी जिद्दी PCOD कि हम सब कुछ कर चुके हैं, बहुत सारे साइकल्स ऑफ हार्मोन दे चुके हैं, बट बेसलाइन बॉडी आने को तैयार।
0: बिल्कुल मैम, यू नो मुझे भी ऐसा लगता है कि अच्छा, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आप अभी बता रहे हो ना, ये चीजें मुझे लगता है हमें बताने की जरूरत ही नहीं, वैसे लोगों को खुद ही इन चीजों को समझना चाहिए। बट आजकल का लाइफस्टाइल अलग ही हो गया है ना, बात ये भी है। अच्छा मैम, एक चीज और है, आजकल का स्ट्रेस, सोशल मीडिया की तो हमने बात ही कर ली, आजकल का लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और हमारा खान पान, ये सब कुछ कहीं ना कहीं ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के रीजन कहीं ना कहीं बनी रहा है।
1: Exactly.
0: जैसे आपने बताया कि लोगों को आजकल हर चीज ऑनलाइन करानी है, शॉपिंग ऑनलाइन करनी है, फूड ऑनलाइन करना है, हर चीज की फैसिलिटी उन्हें घर बैठे चाहिए।
1: Exactly.
0: तो इन सब चीजों की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना। बिल्कुल, आपने ये चीज पे अभी जो आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइज, हमारा भी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी प्लीज अब कीजिए, अगर जितना हो सकता है ना आप प्रैक्टिकली बाहर निकलिए। छोटी छोटी चीजें जो हम अवॉइड कर देते हैं कि नहीं यार शाम को बाजार निकल जाएंगे, कल निकल जाएंगे, आज ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ये सब चीजें जो हमें उस तरफ लेके जा रही है जिस तरह हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, आज हम जहाँ पहुंच गए कहीं ना कहीं
1: एब्सोल्युटली
0: कहीं ना
1: कहीं।
0: करेक्ट, करेक्ट। अच्छा मैम, जो लोग अभी मैं बात करूं उन महिलाओं की जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, जो प्रेगनेंसी से पहले कपल्स को किन किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से हेल्थ चेकअप है जो उनको डेफिनेटली दिमाग में ध्यान में रखनी चाहिए?
1: 5 मोटी बातें जो ध्यान रखनी है। एक, प्री प्रेगनेंसी आप अपना चेकअप कराएं, ठीक है। दूसरी बात, फोलिक एसिड स्टार्ट करें। जब भी आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड है उसके कम से कम 3 महीने पहले हम ये कहते हैं कि आप फोलिक एसिड काम करना शुरू करें। तीसरी चीज, थायराइड, शुगर, ये सब आप बेस्ट टेस्ट कराएं। चौथी चीज, हेल्दी वेट मेंटेन करें। और 5वीं चीज, यदि आप स्मोक करते हैं

0: या अल्कोहल इंटेक है तो ये बिल्कुल बंद हो जाए।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैम, सोशल मीडिया का थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, स्पेशली लेडीज बहुत ज्यादा ये चीज को मैंने देखा फॉलो करती है। तो मतलब कोई भी आ गया, किसी ने भी आके ज्ञान दे दिया, आप ये चीज करो, आप ये रेमेडी करो, ये करो, और लोग वो करते भी हैं। तो क्या ये विमेन्स को करना चाहिए, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो घर में महिला है, उनको ऐसे कुछ भी सोशल मीडिया देख के फॉलो करना चाहिए?
0: नहीं, एक्चुअली इससे ही बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं, कल मेरे पास एक पेशेंट आई जिसको कि सीजर की हिस्ट्री थी, सीजर डिसऑर्डर है, दौरे पड़ते थे, पूरी टर्म प्रेगनेंसी थी, बट उसने किसी गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया, कोई इंस्टाग्राम की रील देखी, उसमें कोई दवाई जो थी वो खा रही थी। अब वो ओपीडी में एक रूटीन चेकअप के लिए आई थी और रूटीन चेकअप के लिए बाहर बैठी थी और उतने में उसको सीजर्स आने लगे एंड शी स्टार्टेड ड्रूलिंग फ्रॉम माउथ, ब्लड आने लगा और वो आने लगा। तो उस वक्त और प्लस बच्चे की धड़कन जाने लगी, तो हमें एकदम इंटरवीन करके उसको सिजेरियन में लैंड करना पड़ा। हालांकि वो सेकंड ग्रेविडा थी, तो आई वुड नेवर गो कि दूसरा बच्चा पहला बच्चा नॉर्मल है, तो आई वुड हैव ट्राइड कि हमें नॉर्मल कराऊंगी, बट मेरे सामने उस वक्त इट वॉज एन इमरजेंसी, डाइंग इमरजेंसी कि मुझे बच्चा और माँ दोनों बचाने थे। तो उसके लिए हमने जल्दी से ओटी शिफ्ट किया गया, पेशेंट इंट्यूबेट हुई, 2 दिन आईसीयू में रही। तो दिस कुड ऑल बी प्रिवेंटेड कि अगर आप एक न्यूरोफिजिशियन का रेफरेंस कर लेते, टाइमली हम इंटरवीन करते, प्लान करके डिलीवरी कराते। सो दिस इज ऑल डिवास्टेटिंग इफेक्ट। अब उसमें सोशल मीडिया में हर कोई डॉक्टर, आप पहले उसकी डिग्री तो एटलीस्ट टैली करें।
1: करें,
0: कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट लिख रहा है तो गायनेकोलॉजिस्ट इज अ सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट। प्लस सोशल मीडिया पे कभी दवाइयां फॉलो नहीं करनी चाहिए।
1: करेक्ट,
0: कैन फॉलो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या फिर सोशल मीडिया इज ओन, आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई ओनली मेक कि ये पेशेंट के सीरियसनेस है, इसमें डॉक्टर को दिखाएं। इट इज नॉट लाइक आप दवाई खाने लगोगे उस सोशल मीडिया से ना।
1: करेक्ट,
0: सर्टिफाइड डॉक्टर्स की एडवाइस ले, क्रॉस चेक करे, डाउट्स हो तो डॉक्टर से पूछे। जितनी भी बात है, आप 10 मिनट 15 मिनट आप उस ओपीडी में बैठे हैं तो यू कैन आस्क एवरीथिंग यू वांट। तो उससे ये जो अचानक से लास्ट में डायग्नोसिस बनती है ये नहीं बनेगी। तो सोशल मीडिया का प्लीज फायदा उठाएं, इट इज ओनली टू कनेक्ट विद पीपल। आई अपडेट कि थोड़ा सा पेशेंट को ये लगना चाहिए, पेशेंट फील कि हाँ भैया मैम घर का पार्ट है, कल थोड़ा सा फनी रील्स, थोड़ा सा ये, सो इट इज ओनली टू कनेक्ट विद पीपल, नॉट कि हम उस पे ट्रीटमेंट। हमने 10 MBBS, PG, सो इट्स ऑल कंस्टिट्यूट 10 साल की मेहनत। हाउ कैन आई इंस्टाग्राम रील ऑफ 1 मिनट 30 सेकंड रिप्लेस दैट नॉलेज? एंड अब सुपर स्पेशलिटी हो रही है, पीपल आर डूइंग MCH, तो आप ये सोचो कि 13-14 साल की पढ़ाई इंस्टाग्राम की रील से अगर हो जाती है। आई हैव सीन पीपल इनफर्टिलिटी वाले, वो किसी ने बता दिया लिट्रोस से है, लिट्रोस खा रही है, 5 महीने के बाद एक मोटी सिस्ट है, अब वो ओवरी भी खराब हो गई है और हमें सिस्ट भी निकालनी पड़ी है, वी हैव टू ऑपरेट हर, बिकॉज हर चीज के साइड इफेक्ट है। पीपल आर ओनली टेलिंग इफेक्ट, देयर नॉट टेलिंग साइड इफेक्ट। तो प्लीज वाइसली चूज करें, अपने डॉक्टर से बात करें। एक कंसल्टेशन महीने में एक बार का कंसल्टेशन होता है, जो भी है आप अपने पेपर पे लिस्ट बना लो। आई ऑल्सो टेल माई पेशेंट की टू डू लिस्ट आप अपने पेपर पे लेके आओ, जितने क्वेश्चन है मुझसे पूछो कि मैम ये करना है या नहीं करना,
1: नहीं करना।
0: और प्लीज सर्टिफाइड डॉक्टर्स को ही फॉलो करें, यू विल गेट द इंस्टाग्राम प्रोफाइल की कौन सर्टिफाइड है कौन नॉन सर्टिफाइड।
1: एब्सोल्युटली, और सोशल मीडिया पे कुछ रील्स और व्यूज के लिए, कुछ लाइक के लिए लोग कुछ भी डाल रहे हैं और हम कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगता है इट्स नॉट अ गुड। दूसरी बात, हर मेडिसिन का हर एक कह सकते हैं जो इंसान है उसके साथ कनेक्शन नहीं बन सकता है।
0: Exactly.
1: मैम, हर मेडिसिन हर इंसान के लिए नहीं बनी होती है।
0: बी इंड्यूस्ड विद लिट्रोसोल, बी इंड्यूस्ड विद क्लोमिफेन, बी इंड्यूस्ड विद HMG इंजेक्शन,
1: वी
0: डिसाइड।
1: एब्सोल्युटली,
0: और शुगर के लिए 1000 दवाएं मार्केट में, वी डिसाइड
1: 100%।
0: एंड दैट इज ऑल्सो की वी, ऐसा नहीं है कि हमने एक दवाई लिख दी तो वही 100% दवाई होगी। नो, वी हैव टू चेंज। अगले पेशेंट आया, उसने कुछ कंप्लेन करी तो वी हैव टू चेंज दैट दवाई। अगर इतने से ही ChatGPT और ये सभी बता देते तो फिर कोई फायदा ही नहीं था।
1: Important.
0: एक पेशेंट यूट्रस, वो बेबी अनोमलस बेबी, पूरा अनोमलस जिसकी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, उसने ChatGPT पे डाला, ठीक है, वो मेरे पास 26 वीक पे आया, उसका जो लेवल 2 स्कैन था 20-22 हफ्ते का, उस अगे एनोमली जो कि सर्वाइवल मोड पे नहीं था वो बच्चा, तो हमें उसका अबॉर्शन कराना चाहिए था, बट उन्होंने ChatGPT पे डाला, ChatGPT सेड कि कुछ नहीं है कि कंटिन्यू करने का, उन्होंने कंटिन्यू किया, शी केम एट 26 वीक। अल्टीमेटली बेबी की तो प्रोग्नोसिस नहीं थी, वी हैड टू मतलब अबॉर्ट दैट बेबी, बट अगर वो 20-22 हफ्ते पे होता तो मेडिको लीगल चीजें भी कम होती और प्लस इजी होता। अब जितना बेबी बढ़ जाएगा, प्रोग्नोसिस तो उसकी है ही नहीं, अगर मान लीजिए आप टर्म तक भी पहुंचा दीजिए, उसको पूरे टाइम पे डिलीवर कराइए, अब बच्चा आपके हाथ ही नहीं लगना है, तो फिर ऐसी चीजें चैट जीपीटी से नहीं पूछी जाती, ऐसी चीजें डॉक्टर से पूछी जाती हैं।
1: करेक्ट। तो कहीं ना कहीं हमारा इसका मोटिव भी यही है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं या आपके घर में कोई चीज कर रहा है तो प्लीज ये मत कीजिए, डोंट डू दिस। एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बहुत जरूरी है मैम, क्योंकि जब तक आप सही लोगों से नहीं मिलेंगे तब तक आपको सही एडवाइस नहीं मिलेगी।
0: सी, और एक गायनी का ना ऐसा नहीं होता कि आप गए आपको गॉलब्लैडर स्टोन निकलवाना है, काम खत्म हो गया। गायनी से आपको 9 महीने का एक ताल्लुकात बनाना पड़ता है, ताकि जब आपकी डिलीवरी होगी तो शी इज योर होल सोल, क्योंकि उस चैम्बर में वही है। अगर आप फील कनेक्टेड नहीं करते हैं, लाइक आई वाज देयर इन एन हॉस्पिटल, माय हस्बैंड गॉट शिफ्टेड टू अनदर प्लेस, आई डिडंट चेंज द प्लेस, आई लेट हिम गो कि तुम जाओ, आई विल नॉट, क्योंकि मुझे वाइब्स आ रही थी, आई कुड फील दैट गायनी एज माय ओन। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि पेशेंट्स, आप जिसको भी चूज करें उसको रिलीजियसली फॉलो करें और उससे डिलीवरी के टाइम पे कनेक्टेड रहें, सो दैट देयर इज अ स्मूथ डिलीवरी इन पोस्टपार्टम।
1: एब्सोल्युटली। और आजकल तो सोशल मीडिया है, अच्छी चीजों के लिए आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो देंगे बैक टू बैक। बट हमारी भी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, इन सब पे प्लीज अपनी हेल्थ को लेकर तो बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। मैम थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने इतना टाइम हमारे साथ शेयर किया, हमारे लिसनर्स को तमाम इन्फॉर्मेशन दी। आई एम श्योर जितने भी लोग ये सुन रहे हैं सभी को कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिला होगा और जानने को मिला होगा। आई एम थैंक्सफुल टू यू, इतना टाइम आपने निकाला, बिकॉज यू हैव ऑल्सो वेरी बिजी, शी इज नॉट फ्री भाई, जब भी जाओ मैम बिजी इतना ऑक्यूपाइड रहता है आपका। बट अभी भी हम लोग डिसाइड कर रहे थे कल का बना, फिर उसके बाद आज का बना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैम, आपका लाइफ स्टाइल भी बहुत बिजी रहता है आई नो, एंड फिर भी आप इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ पे आए, आपके लिए दिल से थैंक यू मेरी ओर से और FM मुरादाबाद की ओर से भी। जाते जाते हमारे लिसनर्स को क्या संदेश आप देंगी, जो लेडीज या जो जेंट्स आपको सुन रहे हैं?
0: यार आई वुड से भैया मैं लेडीज की डॉक्टर हूँ तो एडवाइस तो सिर्फ लेडीज को ही देनी है,
1: ठीक है, ठीक है,
0: लेकिन जेंट्स को भी एक एडवाइस देनी है कि देखो लेडीज, आप इग्नोर मत करो अपने आप को, अपनी बॉडी को इग्नोर मत करो, सिम्टम देगी वो सिग्नल देगी और उसको आप एक्नॉलेज करो और उसके लिए ट्रीटमेंट करो। और जेंट्स को सिर्फ यही संदेश है कि अगर आपसे लेडीज कुछ कह रही है तो डोंट टेक हर फॉर ग्रांटेड, ये नहीं कि वो आपका सब्स्टिट्यूट है, गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों चलेंगे तब गाड़ी अच्छी चलेगी। सो अगर वो कुछ कह रही है तो प्लीज, बहुत सारी फैमिलीज मैंने ऐसा देखा जहाँ मेल्स ही होते हैं उसे, अरे अरे अरे ठीक है सबको ही होता है, क्या हो गया, ब्लीडिंग ही तो हो रही है, सबको होती है, मेरी मम्मी को भी होती थी। नो प्लीज, जस्ट टेक केयर ऑफ हर, वो आपके घर की अन्नपूर्णा है, उसके बिना घर नहीं है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपसे वो कुछ कह रही है तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, उसको भी लगना चाहिए शी इज इम्पोर्टेंट, तो हर किसी का ध्यान वो रख पाएगी, उसको और भी अच्छा लगेगा। आई हैव सीन पेशेंट्स विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आई हैव सीन लेडीज जिनकी शादियां हो गई होती है इनफर्टिलिटी विद डिप्रेशन। तो मेल्स के लिए सिर्फ इतना ही है कि कोई भी प्रॉब्लम उसकी अलग नहीं है, यू बोथ आर गाड़ी के दो पहिए, तो दोनों को एक साथ ही चलना होगा, उसको समझना होगा और उसकी बात आपको सुननी होगी। एंड फीमेल्स प्लीज डोंट हेजिटेट, सामने आइए और अपनी प्रॉब्लम को प्लीज बताइए।
1: थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल मैसेज, सच अमेजिंग मैसेज, एंड इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए एंड आपने तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करी, एंड आई एम श्योर आप आगे भी आते रहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए।
0: या
1: सो गाइज प्लीज आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम था हेलो डॉक्टर, और आज एशियन हॉस्पिटल से डॉक्टर राशिका गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में थे। मैम से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपको कैसे लगा ये प्रोग्राम, आपको कैसे लगी ये कॉन्वर्सेशन, डू शेयर योर फीडबैक हमारे इंस्टाग्राम पे, आप आके मुझे शेयर कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, और हमारा FM का ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से आपको मिल जाएगा। सो प्लीज आइए फॉलो कीजिए। अच्छा मैम आपका इंस्टाग्राम, आप सोशल मीडिया पे इतनी देर से बातें कर रही हैं, सो प्लीज डू शेयर योर सोशल मीडिया।
0: आई डोंट हैव मेनी फॉलोअर्स, ऐसा नहीं है, बट आई फील रिलैक्स्ड कि मेरे दिन में जो एक्टिविटी हुई है आई लाइक बी शेयरिंग विद पीपल, नॉट टू मिसगाइड एनीबॉडी, नॉट टू मिसगाइड एनीबॉडी, बट ये दिखाने के लिए कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो उस 15 मिनट में आप मुझसे नहीं पूछ पाते हो।
1: Absolutely.
0: Like, कल ही मुझसे कोई पेशेंट पूछ रहा था कि मैम आम खाना होता है प्रेगनेंसी में, सो आई पोस्ट स्मॉल स्मॉल रील्स बस इसीलिए कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ जाए, आपको भी अच्छा लगना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि हाँ डॉक्टर राशि का कोई है, सो इट इज ओनली टू मेक अ प्रेजेंस इन योर होम, ठीक है। और बाकी
1: एक सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का भी एक जरिया तो है ना मैम सोशल मीडिया पे, आप जैसे लोग ही हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, जैसे मेंटोर, ये चैट जीपीटी और इंस्टाग्राम से तो बेटर है कि आप सही इंसान को फॉलो करेंगे तो वो डायरेक्शन तो देगा।
0: देयर आर मेनी मिसगाइड्स ऑन सोशल मीडिया ना, तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये लगेगा कि वो सही बोल रहे हैं क्योंकि हम ही नहीं रहे।
1: एब्सोल्युटली।
0: तो पीपल विल थिंक, तो अब कोई भी ABCD गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेहनत. प्लस हम भी गायनेकोलॉजिस्ट विद डिग्री नहीं बने, विद आर एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स हम कभी हम भी फंस जाते हैं. वी आस्क आवर सीनियर्स, वी आस्क सर्जन की हमें वो लेनी पड़ती है. सो नोबडी इज कंप्लीट. इट इज ऑलवेज, जैसे हमारा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आई एडमिटेड अ पेशेंट जिसको एक्यूट ब्रेंकाइटिस थी, तो एक गैस्ट्रो इन्वॉल्व हुआ उसमें, उसको सीजर डिसऑर्डर था, तो उसमें एक न्यूरो फिजन इन्वॉल्व हुआ, प्लस एक गायनी थी और उसको एक एआई में चली, तो एक यूरोसर्जन इन्वॉल्व हो गया. तो दिस कैन नॉट बी, एक कोई ले मैन ये सब चीजें नहीं संभाल सकता है. तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप जो है डॉक्टर्स से ही कनेक्ट करें, उनकी बातों को. आजकल लोगों का एक्चुअली विश्वास कम हो गया है, ठीक है. विश्वास कम भी इसीलिए हुआ है क्योंकि ये जो ए बी सी डी बीच वाले लोग हैं ना, दीज पीपल डू रैंडम थिंग्स, बट वो ग्रॉस ये आ जाता है कि डॉक्टर्स ने किया, बिकॉज दे आर अल्टीमेटली डॉक्टर्स.
1: करेक्ट, राइट. अच्छा मैम, जो लेडीज आपको सुन रही है, आपसे पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहती हूँ या आपको विजिट करना चाहती हूँ, तो कहाँ आप उनको मिल सकते हैं?
0: आई सिट एट एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल,
1: ठीक है,
0: 10 to 4 एवरी डे, ठीक है. संडेज आर ऑफ डेज,
1: ओके.
0: तो यू कैन कम
1: मंडे टू सैटरडे, मतलब वो आ सकते हैं.
0: एग्जैक्टली, मंडे टू सैटरडे आ सकते हैं. सो वी हैव अ वेरी रीजनेबल प्राइस फॉर नॉर्मल डिलीवरीज, फॉर सिजेरियन सेक्शंस विद अ एक्सपर्ट केयर. तो एनी बॉडी कैन कम एनी टाइम.
1: आपका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आपने बताया?
0: हाँ, आई एम, मुझे मेरा तो डॉक्टर राशिका के नाम से ही है.
1: तो गाइस प्लीज फॉलो कीजिए, छोटा सा अकाउंट बड़ा अकाउंट तभी होगा जब हम और आप फॉलो करेंगे, क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन को हमें आगे डिलीवर भी करना चाहिए. वो कहते हैं ना, ईच वन टू कीच वन, मैं हमेशा कहता हूँ आप भी फॉलो करें औरों को भी कराएं, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक डिलीवर होना बहुत जरूरी. सो अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाजत, वेरी वेरी सून फिर मिलेंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे. आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए. सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए. बाय बाय.

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +989128101915। दूसरा नंबर है +989128101909। तीसरा नंबर +989128101902। और चौथा नंबर है +9899321793। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का

0: कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस है।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: बदलते उत्तर प्रदेश।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
4: हर घर में

0: विकास की नई सोच, परंपरा का नया सम्मान, स्वाद, संस्कृति और रोजगार को नई उड़ान देता है आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम का नाम तो बता ही दिया है, और आज इस प्रोग्राम को मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले अपना नाम बता देता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आनंद, और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में अपना साथ देने के लिए आ गई है कौन, मेरी प्यारी दोस्त
1: आरजे रीना।
0: यस आरजे रीना, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी विविधताओं का प्रदेश, यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, और सबसे मजेदार बात, स्वाद बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरजे रीना आपने। अगर हम आगरा जाएं तो वहाँ का पीठा याद आता है, अगर हम वाराणसी जाएं तो वहाँ की कचौड़ी, जलेबी की खुशबू मन मोह लेती है, मथुरा के पेड़े, कानपुर के ठगू के लड्डू और मेरठ की रबड़ी, अयोध्या की मिठाइयाँ, आय हाय हाय, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने स्वाद में एक कहानी समेटे हुए है।
1: और अब यही स्वाद, यही परंपरा उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने जा रही है, क्योंकि योगी सरकार लेकर आई है एक बेहद खास पहल, एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
0: दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ व्यंजनों को पहचान देना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित करना, आधुनिक बनाना, रोजगार से जोड़ना और दुनिया तक पहुंचाना है।
1: यानी अब हमारे गांव कस्बों की रसोई से निकलने वाले पारंपरिक व्यंजन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकते हैं।
0: अरे वाह, यह सोचकर तो बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन जरा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए आखिर यह योजना कैसे काम करेगी।
1: जरूर, देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश के हर जिले के एक खास पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी, फिर उस व्यंजन को गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग के आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
0: यानी जो स्वाद वर्षों से लोगों के दिलों में बसा है, उसे अब एक नई तकनीकी और बेहतर प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने लाया जाएगा।
1: बिल्कुल, और इसके लिए सरकार ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग भी लिया है,
0: जैसे कि FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।
1: जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके अलावा CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और NIFTEM जैसे बड़े संस्थान भी इस योजना में सहयोग कर रहे हैं।
0: तो ये संस्थान क्या करेंगे?
1: ये संस्थान हर जिले के व्यंजन के लिए स्टैंडर्ड रेसिपी मैनुअल तैयार करेंगे, यानी उस व्यंजन को बनाने की एक मानक प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि उसका स्वाद, गुणवत्ता और स्वच्छता हर जगह एक जैसी बनी रहे।
0: मतलब अगर कोई पर्यटक मथुरा के पेड़े खाए या वही पेड़े विदेश में पैक होकर पहुंचाए, तो उसका स्वाद और उसकी गुणवत्ता एक समान हो।
1: बिल्कुल सही समझा आपने, और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा विश्वास का निर्माण।
0: दोस्तों, आज के समय में लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, वो यह भी जानना चाहते हैं कि खाना कितना सुरक्षित है, कितना पौष्टिक है और उसकी गुणवत्ता कैसी है।
1: और इसी वजह से इस योजना में न्यूट्रिशन लेबलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
0: यानी अब पैक किए गए पारंपरिक व्यंजनों पर पोषण संबंधित जानकारी भी दी जाएगी श्रोताओं,
1: साथ ही QR कोड और बार कोड जैसी सुविधाएं भी होगी, ताकि ग्राहक आसानी से उत्पाद की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
0: वाह, यानी पारंपरिक स्वाद लेकिन आधुनिक अंदाज।
1: दोस्तों, योजना का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट पैकेजिंग,
0: क्योंकि अच्छी पैकेजिंग ही किसी उत्पाद की पहली पहचान होती है। दोस्तों,
1: बिल्कुल, सरकार भारतीय पैकेजिंग संस्थान यानी IIP के सहयोग से आकर्षक, सुरक्षित और इको फ्रेंडली पैकेजिंग विकसित करेगी।
0: मतलब अब हमारे पारंपरिक व्यंजन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि देखने में भी शानदार होंगे,
1: और इससे उन्हें बड़े मॉल, सुपरमार्केट और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जगह मिल पाएगी।
0: दोस्तों, जरा सोचिए, एक छोटा सा स्थानीय व्यंजन जो कभी सिर्फ गाँव या शहर तक सीमित था, खाना अब दुनिया भर के लोगों की पसंद बन सकता है।
1: और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ भोजन की बात नहीं करती, यह रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी बात करती है।
0: सही कहा आपने आरजे रीना। इस योजना के तहत स्थानीय उद्यमी युवाओं और स्वयं सहायता समूह को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा
1: और उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे बेहतर पैकेजिंग करें, कैसे उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखें और कैसे ब्रांडिंग

0: करें और कैसे अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक पहुंचाएं।
1: यानी कि गांव की महिलाएं, छोटे व्यापारी और युवा अब अपने हुनर को रोजगार में बदल सकेंगे।
0: बिल्कुल, कल्पना कीजिए किसी गांव की महिलाएं अगर अपने पारंपरिक अचार, मिठाइयां, स्नैक्स को सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचे तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
1: और यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश की असली सोच, जहां विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। स्वाद भी, सम्मान भी, रोजगार भी, पहचान भी, एक जनपद एक व्यंजन, उत्तर प्रदेश की नई उड़ान।
0: दोस्तों, सरकार इस योजना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रही है।
1: बड़े आयोजन में स्वाद यूपी का थीम के तहत बड़े आयोजनों में इन व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
0: साथ ही डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया अभियान और लघु फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाया जाएगा
1: और इसके फायदे पर्यटक को भी मिलेंगे।
0: बिल्कुल, जब कोई पर्यटक किसी जगह जाता है तो वह वहाँ का स्वाद जरूर याद रखता है। इस योजना से उत्तर प्रदेश का फूड टूरिज्म भी मजबूत होगा।
1: यानी लोग सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को देखने नहीं आएंगे बल्कि यहाँ का स्वाद का अनुभव लेने भी आएंगे।
0: और जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
1: तो दोस्तों, अगर आपके जिले में भी कोई खास पारंपरिक व्यंजन है तो ये समय है उनको एक नई पहचान देने का।
0: संस्थाई उत्पाद अपनाएं, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित कीजिए और उत्तर प्रदेश के स्वाद को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए।
1: क्योंकि जब हमारे स्थानीय स्वाद दुनिया तक पहुंचेंगे तभी सच मायनों में उत्तर प्रदेश बनेगा विकास का प्रदेश।
0: इसी उम्मीद और सकारात्मक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
1: तो मैं हूँ आरजे आनंद
0: और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना।
1: फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के अगले विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार और आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और दोस्तों ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं होती, कि मुस्कुराहटों की कोई कीमत नहीं होती, रिश्तों की कोई हद नहीं होती, लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह खास नहीं होता। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हैं। दोस्तों आप भी मुझे फटाफट से कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है वेनेसडे का, समय हुआ है 3:11 राइट नाउ और मैं हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो लेकर, हेलो फरमाइश। और अभी बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से, हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: कुंदनपुर मुरादाबाद।
0: अच्छा, कुंदनपुर से बात कर रहे हैं जी, बताइएगा सर क्या करते हैं आप?
1: मैं सब्जी मंडी में काम करता हूँ।
0: अच्छा, सब्जी मंडी में काम करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बताएगा आज आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: गाना सुनना है
0: जी, बताएगा।
1: मैं फिल्म का नाम तो भूल गया, वो गाना है मम्मी ने चाय पे बुलाया है, इतनी वो याद है।
0: अच्छा, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ये वाला ट्राई करना सो, ओके चलिए सुनवाते हैं प्यारा सा गाना, धन्यवाद कॉल करने के लिए, थैंक यू। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सर की पसंद का प्यारा सा ट्रैक और आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको अगेन बताती हूँ 9837896896, जो आपके दोपहर को बनाएगा और भी ज्यादा खूबसूरत। तो आप मुझे बिना किसी देरी की कॉल लगा सकते हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ। और सुनिएगा ये अमेजिंग सा ट्रैक

0: एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना फ्रॉम द मूवी सोतन, जो 1983 में आई थी। राजेश खन्ना जी, टीना जी पर ये फिल्माया गया ट्रैक, बहुत ही खूबसूरत सा। और लिरिक्स भी बहुत ही खूबसूरत थे। पर इस गर्मी में चाय का तो पता नहीं है, लेकिन अगर साथ में एक ग्लास ठंडा पानी या फिर ठंडी लस्सी, सिकंजी या कुल्फी मिल जाए तो दोपहर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाए कि दोस्तों। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, अपना नाम बताइएगा।
1: अमीर हुसैन
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप? रहमत नगर मुरादाबाद से।
0: रहमत नगर मुरादाबाद से जी, बताइएगा आज आपने हेलो फरमाइश में कॉल किया है, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं सर?
1: मोहम्मद रफी की आवाज है, मेरा एहसान दादान, ये वाला गाना है।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत। शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: शुक्रिया।
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं सर की पसंद का प्यारा सा गीत, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और मैं हूँ आपके साथ, कौन? आपकी खुशी। हाँ, पहचान लिया ना आपने, वेरी गुड। चलिए तो बिना किसी देरी के सुनते हैं शानदार सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, क्योंकि कॉल लगाएंगे तभी तो हमसे आप कनेक्ट कर पाएंगे ना, कनेक्टिविटी बना पाएंगे। उसके लिए आपको फोन लगाना होगा और मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ये प्यारा सा गाना सुनिएगा।

0: प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
5: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
4: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: कॉल 9045912348।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और मेरे साथ में क्लस्टर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो आइए उनसे क्विकली बात करते हैं कौन कहाँ से कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: पहले प्लीज आप थोड़ा सा वॉल्यूम अपने रेडियो का कम कर लीजिएगा, आपके पीछे से बैकग्राउंड से बहुत साउंड आ रही है। हाँ जी, अभी फाइन, ओके, गुड आ रही है आपकी वॉइस। क्योंकि ये क्या होता है ना, आवाजें रिपीट होती हैं तो समझ नहीं आता कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, अपना गुड नाम बताइएगा, योर गुड नेम।
1: और घर सब ठीक है आपके?
0: हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। नाम तो बताइए अपना, इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो।
1: अरे मैम, हम भूमि बोल रहे हैं आपके पड़ोसी।
0: अच्छा, ओके, भूमि बात कर रही है, बताइएगा भूमि, कैसे हैं आपकी फैमिली में सब?
1: सब बहुत बढ़िया है मैम, बस आप ठीक हो, हम भी ठीक ही है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, वेरी गुड। बताइएगा भूमि, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: आज मैं मतलब अपनी मम्मी का एक फेवरेट सॉन्ग है वो सुनना चाहती हूँ।
0: हाँ बताइएगा कौन सा फेवरेट सॉन्ग है।
1: पता ना, वो गाना है जो मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा।
0: अच्छा, ओके ओके,
1: जी, ये गाना सुनवा दीजिए मेरी मम्मी की फरमाइश है।
0: ठीक है, आपकी मामा की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक सुनवाते हैं। थैंक यू सो मच भूमि, आपने कॉल किया।
1: ओके मैम, थैंक यू सो मच,
0: मोस्ट वेलकम। ख्याल रखो अपना भी और फैमिली का भी।
1: ओके मैम, आप भी अपना ध्यान रखिए।
0: ठीक है, श्योर, हम बिल्कुल रखेंगे।
1: ओके मैम,
0: नमस्ते आपको भी, बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए दोस्तों, ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं एंड लौट कर आते हैं, उसके बाद आपसे भी करेंगे गुफ्तगु, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे खूबसूरत से गाने गुनगुनाते रहिए, बताते खुशी।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। एंड आप सभी का फेवरेट शो चल रहा है हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं। जो आपका दिल चाहे गाने वही यहां पर प्ले करेंगे हम, लेकिन एक शर्त है, उसके लिए आपको हमें कंटिन्यू कॉल करना होगा। अगर आप कंटिन्यू कॉल नहीं कर पाएंगे तो आपका कॉल लगना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इस समय बहुत से लिसनर्स हमें कॉल करते हैं और लाइनें बहुत व्यस्त होती हैं, तो आपको कंटिन्यू ट्राई करना होगा। और अभी यहाँ पर वक्त हुआ है 3:36, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
1: सितारों का आंगन होगा, बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। नमस्कार जी।
0: आपको भी नमस्कार। हम तो सोच रहे थे कि पहले पूरा गाना सुन लें आपका।
1: चलिए फर्स्ट टाइम जुड़ेंगे तो पूरा गाना सुना देंगे
0: जी। बताइएगा अपना शुभ नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप सब?
1: यूपी बनारस से मोती।
0: अच्छा, जी बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: बहुत ही मस्त है, बस गर्मी को लुप्त उठा रहे हैं, बस बारिश का आसरा देख रहे हैं कि कब बारिश आ जाए।
0: ओके, इंतजार में है बारिश की, जल्दी ही आएगी, चिंता मत कीजिए।
1: और रात में थोड़ा सा तूफान आया था, उसके साथ साथ थोड़ा सा बारिश भी आया था, मगर उसका कुछ असर दिन में नहीं होता।
0: ओके, हाँ जी, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है ना, इसलिए।
1: हाँ, इसीलिए मैं पेड़ के छांव में बैठ के प्रोग्राम सुन रहा था और कॉल भी लगा रहा था, तो उसकी हवाएं भी मिल रही थी ठंड ठंड।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: आप बताएं, आप कैसी हैं और आपके यहाँ का मौसम कैसा?
0: हमारे यहाँ का वेदर ऐसा है कि कभी धूप हो जाती है बहुत कड़क, तो कभी बादल हो जाते हैं। अभी राइट नाउ का तो ऐसा वेदर है। एंड मैं ठीक हूँ, आपने मेरे हाल चाल जाने हैं, शुक्रिया आपका। बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: एक गीत सुनना चाहता हूँ
0: जी, बताइएगा।
1: एक मासूम सा जिसे ये मेरा मेरी साजे में चुरा लिया, ये गीत है।
0: और ये ट्रैक किन के लिए सुनना चाहते हैं आप?
1: सबसे पहले आपके साथ, आनंद भाई के साथ, और जितने आपके यहाँ के आरती हैं सभी के साथ, जितने पे मुरादाबाद सुनने वाले श्रोता है,
0: हाँ जी,
1: सभी के साथ, और कुछ अपने खास दोस्तों को याद करना चाहता
0: हूँ। जी जी जी बिल्कुल, टेल मी।
1: मेरे दोस्त है सरताज अंसारी।

0: गद्दाम अंसारी, शाहिद अंसारी, मुश्ताक अंसारी और मेरे दोस्त केलरा में रहते हैं आसिफ हाशमी उनके साथ।
1: ठीक है सर, एंड आपके सभी फ्रेंड्स के साथ में सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक। आपको शुक्रिया, आपने कॉल किया।
0: थैंक यू,
1: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक एंड आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, शायद नेक्स्ट कॉलर आप ही हमारे शो के बन जाए, कुछ भी हो सकता है। एवरीवन आप बस ऐसे ही फोन लगाते रहिएगा और ये प्यारा सा गीत सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक सुना, और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं? हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। अपना शुभ नाम बताइएगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: अच्छा, सी जी से बात कर रहे हैं। बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया है।
0: अच्छा ही रहना चाहिए सर। और बताइएगा मौसम कैसा है वहाँ का?
1: मौसम तो अभी धूप खिला हुआ है।
0: अच्छा, धूप हो रही है।
1: हाँ जी।
0: ओके, तो बताइएगा सर, और क्या हो रहा है? फैमिली में सब ठीक है ना आपके? आप क्या करते हैं, अपने बारे में भी बताइएगा।
1: हमारा मूल काम खेती बाड़ी है।
0: अच्छा, खेती बाड़ी है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी
1: जी
0: खेतों में कुछ लगाया है आपने या नहीं?
1: अभी तो फिलहाल बारिश का इंतजार है। हाँ
0: अच्छा, बारिश का इंतजार कर रहे हैं,
1: जी
0: चलिए अच्छी बात है सर। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि जल्दी से बारिश हो जाए।
1: जी
0: जी, आप बताइएगा क्या सुनना चाहेंगे सर आज?
1: फिल्म साजन का घर से सुनवा देंगे। नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने चुना है। किनके लिए सुनना चाहते हैं आप ये खूबसूरत सा गीत, बताइएगा।
1: कुछ हमारे रेडियो मित्र हैं, श्रीपाल गोयल जी, लोकेन्द्र वर्मा जी, दिलीप बहुजा जी, रोशन देवांगन जी, तुकाराम जाधव जी, संतोष वैष्णव जी, मुकेश शर्मा जी और तमाम साथी।
0: ठीक है सर, सभी के साथ सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत आपको। धन्यवाद आपने हमें कॉल किया।
1: जी धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत सर की पसंद का, और आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं। बहुत इजी सा नंबर हमारा है, मैं आपको बता देती हूँ, 98-378-96-896। ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जिस पर आपको हमें कॉल लगाना है और अपनी पसंद के ट्रैक सुनते जाना है, चाहे आप कार में हो या फिर आप घर में हो, एंड या फिर आप शॉप पे बैठे हो आराम से कस्टमर का वेट कर रहे हैं कि कोई तो आए शॉपिंग करके जाए। हाँ चलिए गाना सुनिएगा, बस मैं आती हूँ अभी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश। मुझे मालूम है आप भी कॉल लगाने के लिए बहुत देर से कॉल किए जा रहे हैं बैक टू बैक, लेकिन फोन नहीं लग रहा है। आप परेशान मत होइए, नेक्स्ट कॉलर आप ही हमारे शो की बन जाएंगे। और ये अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना अलका याग्निक जी साथ में किशोर कुमार जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम शर्मन जी एंड लिरिक्स थे समीर जी के। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम
0: जी, आपको भी नमस्कार सर। अपना शुभ नाम बताइएगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, आपकी खातिर सत्ता ही आना पड़ता मैम। मन का मैम से आज बात कर ले, कल आनंद जी थे तो कल हमारा विकास खत्म था, हमने आइडिया से एयरटेल में पोर्ट कराई थी, वो आज चालू हुई है मैम।
0: अच्छा चलिए, बात करना हमसे लिखा था तो फिर आनंद सर से कैसे हो पाती?
1: हाँ बात ये है, उनसे काफी समय हो गया।
0: हाँ
1: मैं
0: जी,
1: तो हर सप्ताह हो जाती
0: exactly,
1: है।
0: एग्जैक्टली, एक्चुअली वो कभी कभी आते हैं शो में अपना शो तो वो मॉर्निंग करते ही एवरीडे, लेकिन हेलो फरमाइश में वो कभी कभी कनेक्ट होते हैं।
1: वो कहते हैं ना मैं कि रोज दाल खाओ लेकिन एक दिन चटनी भी खाना मन करता।
0: ओए होए होए, अच्छा जी जी बताएगा सर क्या फरमाइश है?
1: आपसे तो होती रहती है, आपसे तो है ही रेगुलर।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई बात नहीं, हम आनंद सर को फिर से बोलेंगे, वो आपके लिए फिर से आ जाएंगे, ठीक है?
1: हाँ जी जी जी मैम, और बढ़िया सर।
0: हाँ जी, हाँ जी, ऑल गुड। आप बताएगा क्या सुनेंगे आज आप?
1: मैं जी तो बताऊंगा, ये तो बता दो, कोई बारिश की संभावना कहीं से हो रही नहीं हो रही, आप लोगों को पता होगा मैम।
0: सॉरी क्या कहा आपने?
1: मैं ये कह रहा हूँ कहीं से बारिश की संभावना है नहीं है, बड़ी गर्मी पड़ रही है मैम।
0: सर अभी तो अलग अलग राज्यों में तो बताया गया है बारिश के बारे में, महाराष्ट्र वगैरह में तो हो रही है, लेकिन इधर यूपी का अभी मालूम नहीं है।
1: जी जी जी जी हाँ, यही स्थिति है अभी, कोई मालूम नहीं है मैम। लेकिन मैम एक फिल्म है इंजाम, उसमें कपिल कुमार और आशा भोसले की आवाज में गीत है, इन्हें प्यार किया है प्यार करेंगे, दुनिया से अब हम न डरेंगे, दुनिया की ऐसी की तैसी जरा किसी तरह से बोल है।
0: कौन सी मूवी का ट्रैक बताया आपने?
1: इल्जाम इल्जाम
0: इल्जाम मूवी का गाना है?
1: हाँ इल्जाम मूवी का गाना आया था, ये मोबाइल पर सर्च किया था तो।
0: ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा से गाना आपको।
1: तो मैं ये सुनने वाले डॉक्टर अशर हुसैन मोहम्मद दानी सिद्दीकी रजा हुसैन है, हाजी गफ्फार खान साहब है, मोहम्मद इशरत है, मुकेश है, इरशाद भाई है, मेराज भाई है, और साथ में मैं वापसी सुनिए।
0: ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं सर की पसंद का ये ट्रैक, एंड आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं। अगर आप अभी राइट नाउ फ्री हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें, समझ नहीं आ रहे हैं, फ्री बैठे हैं यार, कोई अपने पसंद का ट्रैक ही सुन ले, तो हाँ उसके लिए आपको कॉल करना होगा एवरीवन। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 98 3 98 8 96।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और वक्त हुआ है 4:07 राइट नाउ। एंड शो तो आप जानते ही हैं, आपका फेवरेट चलता है मंडे टू फ्राइडे हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे कॉल करते हैं एंड अपने फेवरेट गाने सुनते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स को डेडिकेट करना हो, फैमिली को हो, या फिर आपका बेस्ट कोई हम सफर हो जिसके लिए आप कोई ट्रैक सुनना चाहते हो, या फिर अपनी पसंद का उनको डेडिकेट करना चाहते हो, या फिर उनकी पसंद का आप खुद सुनना चाहते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो रिश्ते हमारे दिल के करीब होते हैं ना, हमें उनकी पसंद भी बहुत खूबसूरत लगती है, दिल को सुकून दे जाती है। तो ऐसा कोई अगर गाना है तो आप मुझे क्विकली कॉल कीजिएगा, नंबर है 9837896896। और अभी मैं बात करती हूँ अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्ते। क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम अफजाल है।
0: अफजाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैं अभी केरल से बात कर रहा हूँ। वैसे मैं रहने वाला जिला मुरादाबाद से पलूपुरा घोसी का हूँ।
0: ओके, केरल में आप रहते हैं?
1: जी जी जी।
0: अच्छा, तो वहाँ पर क्या वर्क करते हैं सर आप?
1: जी मैं यहाँ सैलून में काम करता हूँ।
0: सैलून में काम करते हैं, सबको हैंडसम बनाते हैं?
1: जी जी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसे बताएगा कितने ईयर से वहाँ पर आप हैं?
1: मैं लगभग 17-18 साल से हूँ यहाँ पे केरल में।
0: तो कैसा लगता है वहाँ का वातावरण, वहाँ का लोगों से व्यवहार? आपकी काफी फ्रेंड्स भी वहाँ पर बन गए होंगे ना?
1: जी जी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, एकदम घर जैसा माहौल हो गया है यहाँ, गाँव जैसा। बहुत अच्छा है यहाँ का कल्चर और लोगों का प्यार बहुत अच्छा है।
0: मुरादाबाद में कम मन लगता होगा, वहाँ ज्यादा लगता होगा। हाँ,
1: साल में लगभग 10 महीने तो यहीं पे रहना है, 2 महीने घर रहना है बस गाँव में।
0: ओके,
1: तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने दोस्त जैसे हो गए हैं, और एकदम हमें ऐसा लगता है जैसे अपने गाँव में, हमें लैंग्वेज भी आती है ना यहाँ की।
0: अरे वाह, तो कुछ बोलकर सुनाइए जरा मलयालम में।
1: मलयालम में यहाँ निंगल के स्नेह किन्नु, मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ।
0: ओके, अच्छा। और अगर हालचाल पूछने हो किसी के, जैसे हम हिंदी में इंग्लिश में मालूम करते हैं, तो वैसे वहाँ मलयालम में कैसे बोलते हैं, मलयाली लैंग्वेज में?
1: इंगना आनो, कैसे हो?
0: अरे बड़ा टिपिकल लैंग्वेज है।
1: जी जी। हाँ, जवान भी नहीं पलटेगी, अनजान इंसान की तो जवान भी नहीं पलटेगी। और यहाँ का जो मतलब ओणम जो आता है यहाँ पे, ओणम तो उसमें यहाँ पे एक व्हाइट कलर की साड़ी पहनते हैं यहाँ पे, और घर में फूल का डिजाइन बनाते हैं।
0: Yeah.
1: तो उस पर हम घरों पे जाते हैं, खीर खिलवाते हैं वो लोग। अच्छा, बहुत मतलब इतना वो है प्यार यहाँ लोगों में बहुत ज्यादा।
0: हाँ जी, वहाँ का कल्चर ब्यूटीफुल है, और केरल भी बहुत ही खूबसूरत है। एंड वहाँ का पॉपुलर फूड क्या है सर जो बहुत ज्यादा फेमस है? इडली डोसा है क्या?
1: डोसा भी है, और क्या कहते हैं बड़ा, ये मतलब ये उड़द की दाल का बनाते हैं लोग।
0: अच्छा अच्छा, बड़ा। ओके, और वहाँ पर लेमन राइस, मसाला राइस ज्यादा खाते हैं ना?
1: जी जी, मोटा राइस होता है वो, और बिल्कुल हाँ। मतलब पक के वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है वो, तो वहाँ से 12-13 सब्जियाँ होती है, उसको बोलते हैं यहाँ पे सब्जियाँ।
0: ओके,
1: हाँ उसको सब्जियाँ बोलते हैं यहाँ पे, तो वो जो केले के पत्ते पे खिलाया जाता है।
0: हाँ जी हाँ जी, वहाँ का कल्चर बहुत ही ब्यूटीफुल है। साउथ इंडियन मूवीज हम देखते हैं, साउथ की फिल्में, तो वहाँ पर उसमें फिल्मों में सारी चीजें दर्शाई जाती हैं, दिखाया जाता है सारा चीजें।
1: जी जी हाँ, बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पे आएंगे ना एक बार, आप आइए अगले मतलब अगस्त में, यहाँ पे ओणम है, अगस्त लास्ट में है, तो ओणम पे 8-10 दिन तक यहाँ पे फेस्टिवल जैसा रहता है।
0: अच्छा,
1: 8-10 दिन की छुट्टियाँ होती है स्कूलों की, और हर जगह आज मतलब यहाँ पे खेल जैसा होता है, अगले दिन कुछ और प्रोग्राम होता है, ऐसे 10 दिन तक प्रोग्राम चलते हैं।
0: अच्छा, नई नई चीजें, एक्टिविटीज होती रहती है वहाँ पर।
1: जी जी।
0: ओके, तो बताइएगा सर आप क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: जी फिल्म का नाम है तू चोर मैं सिपाही, चल कर ले थोड़ा प्यार, नहीं तो मर जाएंगे दोनों।
0: ओके, और ये ट्रैक आप किन के साथ सुनना चाहते हैं सर?
1: जी मैं हूँ और मेरी फैमिली है, फैमिली मेरी घर पे है, अगर सुन रहे हो तो उन लोगों के लिए ढेर सारा प्यार, और मेरे रिश्तेदार है कासिम, हसन और मुस्तफा, ये सब लोगों के साथ सुनना चाहते हैं, और आप भी।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें भी शामिल किया, और सुनवाते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आपकी पसंद का। ख्याल रखिए अपना अच्छे से। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप मुझे कॉल लगाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वरना बहुत सारी चीजें आप मिस कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। इस पर कॉल लगाइए और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाइए।

0: Hi everyone, once again welcome back. Listening to FM Muradabad 89.6. रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुझे फोन लगाते रहिए. अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से. हेलो फरमाइश. हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम मुमताज है.
0: कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मैं कर रहा हूँ अकबानपुर.
0: अकबानपुर से बात कर रहे हो? क्या अभी कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो आप?
1: हम करते हैं 7th
0: क्लास में. 7th क्लास में, ओके. बताइए, रेडियो सुनते हैं आप?
1: बज रहा आप भी.
0: अच्छा,
1: लाइट बाद तो.
0: ओके, बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: लाइट बाद तो.
0: हाँ, लाइट चली जाती है, उसको भी थोड़ा रेस्ट करने की नीड होती है ना. बताओ आप कौन सा गाना सुनोगी?
1: लाइट बंद हो गया रेडियो.
0: कोई बात नहीं, आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं एप्लीकेशन के जरिए. आपको पता है?
1: ना मुझे ना पता है. इसमें आपको ना सिस्टम, मेरे पापा ने सिस्टम कर रखा है
0: ओके. आप ना एफएम को ना मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं. प्ले स्टोर पर जाइएगा और एफएम मुरादाबाद 89.6 आप डालेंगे ना, सर्च करेंगे तो वहां पर आपको लॉगो दिख जाएगा. फिर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है?
1: आप ऐसे अपना सिस्टम तक रहोगी?
0: मैं तो अभी रहने वाली हूँ 5 बजे तक.
1: 5 बजे जाने वाली हूँ?
0: हाँ, नेक्स्ट आरजे आएंगी ना, वो भी शो होस्ट करती हैं, आपको मालूम है.
1: वो भी बात ही करेंगे?
0: नहीं, वो बात नहीं करती, मतलब वो आपसे बात नहीं करेंगी, लेकिन हाँ वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगी.
1: मैं तो बात करती हूँ.
0: हाँ, एग्जैक्टली राइट. आप बताओ कौन सा गाना सुनोगे?
1: ये वो छोटा मोबाइल है.
0: कोई बात नहीं, आप गाना तो बताओ.
1: अब नहीं सुन रही, जब लाइट आ जाएगी तो फोन कर लूंगा.
0: ओके चलो, ठीक है. हे भगवान, छोटे छोटे बच्चे बड़े नटखट होते हैं. बट कोई बात नहीं है, उन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी, हरियाणवी सॉन्ग. तो दोस्तों मैंने कहा प्ले कर देते हैं, इतने प्यार से कॉल किया है. बाकी आप भी मुझे दोस्तों कॉल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर तो मैं आपको बार बार बता देती हूँ ताकि आप मोबाइल को ना, मोबाइल नंबर को बिल्कुल भी भूले ना, आपको याद हो जाए. मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ फिर से, 9837896896. रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने सफर को खूबसूरत बनाते रहिए. एंड ये गाना बहुत ही प्यारा सा, आप सुनिएगा.

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, अपना नाम बताइएगा।
1: मैम आदाब।
0: आपको भी आदाब। क्या नाम है आपका?
1: मैं ग्राम धनुपुरा जिला रामपुर से आपका रहमान बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: जी मैम अच्छे हैं, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं। आप बताइए आपके अपने परिवार में सब लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी, सब बहुत ही अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है सर, कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहते हैं आज?
1: जी मैम फिल्म का नाम है,
0: मूवी का नाम है
1: जवाना दीवाना।
0: ओके
1: जी, जवाना दीवाना का कौन सा हिस्सा प्ले कर देना मैम।
0: ठीक है सर, आप क्या करते हैं?
1: जी मैं नर्सिंग का काम करता हूँ मैम।
0: अच्छा, आपने पहले भी मुझे बताया था, मुझे अभी याद आया। जी सर, आपने कॉल किया, धन्यवाद, सुनवाते हैं आपके पसंद के गीत। हाँ हाँ बिल्कुल बताएगा, टेल मी।
1: ग्राम गेट से मोहम्मद कामिल।
0: हाँ,
1: ताली परवेज
0: जी।
1: और जटपुरे से मोहम्मद आकिब भाई।
0: हाँ जी।
1: और अजीत नगर से भाई करण भाई
0: जी।
1: और खमोतिया से भाई पप्पू भाई।
0: ठीक है।
1: और साथ में मेरा बेटा मोहम्मद हमदान।
0: ओके।
1: और बारादरी महमूद खान रामप्रसन्न भाई रफत साहब और गांधी समाजी से गफ्फार भाई और साथ में आप और हम।
0: ठीक है सर, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। सुनवाते हैं आपकी पसंद का एक खूबसूरत सा गीत, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का भी टाइम हो गया है, तो दोस्तों एड ब्रेक के बाद सुनेंगे आप ये गीत। तब तक आप
2: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
2: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी। दोस्तों समय हुआ है 4:32 और अगर अभी आप ट्रैफिक में हैं, ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगी परेशान मत होइए। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा क्योंकि पेशेंस बहुत जरूरी है। और हाँ, प्यारे से चेहरे पर प्यारी सी स्माइल जरूर रखिएगा क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका सर?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, मैं ग्राम अकबरपुर तहसील से मदद कर
0: रहा हूँ। जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: बस हम तो बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हो?
0: हाँ जी, आई एम गुड, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बताइए क्या गाना सुनना है आपको आज?
1: जी आप इधर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही? मौसम कैसा है आपके?
0: नहीं सिर्फ बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ बादल हो जाते हैं कभी कभी, कभी धूप निकल जाती है।
1: जी जी, फिल्म का नाम है स्टेट मैन।
0: हाँ जी,
1: गाने के बोल रहे हैं आज मिले हो कल फिर मिलना।
0: ओके ठीक है सर, ये ट्रैक आपको सुनवाते हैं।
1: जी धन्यवाद आपका।
0: जी मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए दोस्तों ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं सर की पसंद का, आज मिले हो कल फिर मिलना। मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे कॉल लगाइए, नंबर मैं आपको बताती हूँ। मोबाइल नंबर है हमारा है 9837896896। हम मिल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों अपनी आवाज के जरिए हम आपके साथ कनेक्ट रहते हैं, आपके आसपास ही रहते हैं। सुनिए का एक खूबसूरत ट्रैक, मैं लौट कर आती हूँ बस इस ब्यूटीफुल ट्रैक के उस पार।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: जी दोस्तों, हम आज भी आपसे मिल रहे हैं और कल भी हमारी आपकी मुलाकात होगी, फ्राइडे भी होगी, आप टेंशन ना लो। और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना कुमार सानू जी साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही मीठी सी मधुर सी आवाज में। आज मिले हो, कल फिर मिलना। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
0: हाय दी। हाय, हेलो, क्या नाम है आपका?
1: जिला मुरादाबाद, ग्राम गोदी से निखत फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: जी बताइए निखत जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ जी, आप बताइए।
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। आज तो काफी समय के बाद आपने कॉल किया है, कहाँ व्यस्त थी आप?
1: हाँ जी, मैं घर के कामों में ही थी।
0: ओके।
1: हाँ जी, क्या कहते हैं, मेरी सिस्टर की लड़की हुई है ना, तो उसी के काम में लग रही थी।
0: ओके, आप मासी बन गए हो? हाँ
1: हाँ जी।
0: तो लड्डू कब खिलाओगे हमें आप बताओ?
1: खिलाऊंगी जल्दी जी, मैं आऊंगी।
0: थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मुबारक है आप मासी बन गए हो।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। बताइएगा आज आप क्या सुनेंगी?
1: जी मौसम चल रहे हैं ना, तो आप ही अपनी पसंद से प्ले कर देना।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत सा एक बहुत ही।
1: मेरे साथ में है मेरी भांजी।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए क्या नाम है उनका?
1: मेरी भांजी है सारा फातिमा, कसा फातिमा, और मेरी छोटी सी नन्नी सी प्यारी सी भांजी आयशा फातिमा।
0: अच्छा, नाम भी नामकरण हो गया उसका?
1: हाँ जी, आयशा फातिमा।
0: ओके, बहुत प्यारा नाम है। चलिए, हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स, हमेशा वो खुश रहे एंड हैप्पी रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू कॉल करने के लिए। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक मैंने यहाँ पर इवनिंग टाइम में प्ले करने का डिसाइड किया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। एंड जावेद अली साथ में मोहित चौहान जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में ट्रैक है। रॉक स्टार से ये ट्रैक मैंने सिलेक्ट किया है, इसको प्ले करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश। और दोस्तों, इस समय वक्त हुआ है 4:51 और हमारे बहुत सारे श्रोता इस समय ऑन द वे कार में हैं, तो कुछ अभी चाय की चुस्कियों का लुफ्त उठा रहे हैं। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, अपना नाम बताइएगा।
1: जी नमस्ते मैम।
0: आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा।
1: जी मैम, मैं बिमल बात कर रहा हूँ, ग्राम पोस्ट बक्सीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं, बिमल ठाकुर बदायूं से बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप।
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ रहें और अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमें भेजते रहें, हम लगातार सुनते रहें।
0: थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स के लिए। वैसे बताइएगा, आज आपने काफी टाइम की बात कॉल किया है।
1: टाइम के बाद इसलिए कॉल किया कि आप लोग बार बार यही बोलते हैं कि हर श्रोता को एक मौका मिलना चाहिए। हाँ। तो मैंने इस बीच में बहुत गैप कर दिया था अपने, मतलब जो बात करने का, तो मैंने कि थोड़ा देख रहे हैं और श्रोता जुड़ेंगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि नए नए श्रोताओं को सुनना हमें भी अच्छा लगता है। हम तो अपने 21 से कह रहे हैं मैम कि जो श्रोता मैंने कभी नहीं सुना और पहली बार उस रेडियो पे जुड़े हुए श्रोता का नाम या गीत सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता
0: है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा है, और उनको भी खुशी होती है कि चलिए फाइनली हमारा कॉल में शामिल हो गया है,
1: क्योंकि हर किसी के मन में एक आशा रहती है मेरा कॉल लगे। और कुछ पुराने लिसनर हैं जो जबरदस्त कॉल लगाने में माहिर हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत जरूरी।
0: हाँ बिल्कुल आपने सही कहा है, हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे ऑल्ड लिसनर्स हैं कि वो फटाक से कॉल लगा लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है किस तरह से कॉल लगाना है, लेकिन जो न्यू लिसनर्स होते हैं वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं इस वजह से।
1: जी, और मैम कहा गया कि किसी को अगर मौका दे दो, आज वो जो हमारे नए लिस्टर है उनके लिए अगर हम मौका देंगे तो वो भी एक दिन होशियार हो जाएंगे और वो भी दबादब कॉल लगाने के लिए माहिर हो जाएंगे।
0: अच्छा जी बताइएगा,
1: मैं आपका खूबसूरत नाम जान सकता हूँ।
0: हाँ मेरा नाम खुशी है।
1: जी बिल्कुल, आपका स्टाइल है खुश होने का वो भी बहुत अच्छा है और नाम भी बहुत अच्छा रखा है आपके घर वालों ने।
0: जी थैंक यू सो मच। हाँ नाम
1: के लिए दो लाइनें पेश कर सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो।
0: जी जी बिल्कुल, आपको परमिशन है।
1: लिख कर दर्द किताबों में छुपाने से क्या होगा, जो समझ ना सका खामोशी उसे सुनाने से क्या होगा, वक्त ने मिटा दिए कई पुराने निशान, अब बीते हुए लम्हों को जगाने से क्या होगा।
0: वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें थी आपकी सर।
1: जी थैंक्स,
0: मोस्ट वेलकम। बताइएगा आज आप कौन सा गाना सुनेंगी सर।
1: मूवी का नाम है राम जाने, और इसमें बेहतरीन सॉन्ग यही है टाइटल सॉन्ग राम जाने, कैसे पढ़ाई है मेरा नाम जाने, ये सॉन्ग सुनवा दीजिए। मेरी बात सरदा के लिए गाना डेडिकेट रहे हैं, साथ में अमरजीत जी रामपुर से, और कितने भी सुनवाते हमारे प्यारे प्यारे श्रोता सभी को गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ट्रैक। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें कॉल किया।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, टाइटल ट्रैक सुनते हैं राम जाने, उदित नारायण जी की, साथ में सोनू निगम जी हैं, अलका याग्निक जी हैं, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, एंड सुनते हैं सब मिलकर। और मैं लौट कर आती हूँ, बस आप यूं ही बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 के साथ।

हेलो हाय एवरीवन, वंस अगेन खुशी यहाँ पर आ चुकी है. फिर मुरादाबाद 89.6, ये है आपके अपने शहर का फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन. और दोस्तों, अब मुझे दीजिए जाने की अनुमति. 5:02 स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं. नेक्स्ट प्रेजेंटर भी आ चुके हैं आरजे रीना जी, जो आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणवी तड़का एंड इवनिंग मस्ती शो, जहाँ पर वो ब्यूटीफुल बातें तो करती हैं लेकिन आपकी शाम को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं. मैं तो चलती हूँ दोस्तों, लेकिन हाँ, मिलूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग 10 बजे. तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए. अपने अपनों का और अपना भी अच्छे से ख्याल रखिए. बाय बाय, कीप स्माइलिंग एवरीवन.

0: It's just like a
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
3: कॉल 8826213131
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ
5: 9412211111
6: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए

0: शेरनेक्सस शेरनेक्सस। क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
1: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।
2: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
3: प्रकृति से खुशियों की लहर।
4: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
6: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट हो गए हैं और समय की बात करूं तो 5:17 हो चुके हैं श्रोताओं, और टेम्परेचर की बात करूं तो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्मी कम होने का तो भैया नाम ही नहीं ले रही है। इनका कहना है कि भाई हम तो बढ़ते ही जाएंगे, तुम काटो, जितना पेड़ काटोगे उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। तो इस गर्मी में हमें पेड़ लगाना है जितना हो सके, और साथ ही साथ पशु पक्षियों के लिए भी छत पर पानी रखना है, और ये नहीं कि पानी रख दिया एक बार तो चेंज नहीं करना है, उस पानी को चेंज भी करते रहना है। क्योंकि देखिए, गर्म पानी जैसे हम नहीं पी सकते तो गर्म पानी वो भी नहीं पी सकते हैं। उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए दाना रखिए, क्योंकि वो भी अपना पेट भर सके, वो मांग नहीं सकते हैं। और हम इंसान को तो भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हम मांग कर खा लेते हैं, लेकिन पक्षी नहीं मांग सकते हैं। और साथ ही साथ 2 घंटे आप सभी के साथ कनेक्ट रहेंगे, ढेर सारी बातें करने वाले हैं, मूवी से लेकर देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और कल क्या है, कल का डे स्पेशल क्या है, आज की डे क्या स्पेशल है, हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी फिलहाल ये अगला गाना बहुत ही शानदार है, इस गाने के साथ एंजॉय करिए।
7: ओए सनी,
8: ब्याह कर ले, जिंदगी भर लड़ेंगे।
7: ब्याह का तो पता नहीं, लेकिन तेरी गर्ल जरूर बन सकती है। ए छुटन, फोन दे।

क्या बात है जी, न चंगा सारी रात सोनी। लेकिन रात का क्यों इंतजार करना है जी, जब गाने हो आपके सामने तो डांस भी करना बनता ही है ना। देखिए, आप अगर डांस करते हैं तो बॉडी आपकी एक्टिव रहती है और वजन भी साथ ही साथ कंट्रोल में रहता है। बहुत से कहते हैं कि डांस करने से वेट थोड़ी कम होता है जी। बिल्कुल, डांस करने से वेट कम होता है क्योंकि आपको आते हैं पसीने, और जब बॉडी से पसीना निकलता हो तो ऑटोमेटिक आपका वेट कम तो होता ही होता है जी। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर, जाते रहे गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूं तो 5:27 हो चुके हैं, और आज जैसे कि मॉर्निंग में सुबह मैं बाहर से आ रही थी तो देखिए एक गलती की वजह से ना पूरी सड़क पर ट्रैफिक यानी कितना ज्यादा हो जाता है कि बाहर निकलने के लिए मैं सोचना पड़ता है कि हमें क्या है ना कि हम जब भी आप ट्रैफिक में होते हैं, अगर आपको थोड़ी देर के लिए भी अगर स्कूटी बाइक गाड़ी जो भी रोकना है ना तो उसको साइड में करके रोकना चाहिए, चाहे सेकंड के लिए क्यों ना रोक रहे, क्योंकि अगर आप भी सड़क पर अपनी गाड़ी रोकते हैं तो आपकी वजह से जो लंबी लाइन है ना कतारियों गाड़ियों की वो लगनी शुरू हो जाती है। फिर एक ही बात, हॉर्न बजाते रहते हैं। इसीलिए आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप थोड़ी देर के लिए भी अपनी गाड़ी रोकते हैं तो साइड में रोकिए, ताकि जो आपके पीछे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना होए। और हेलमेट सीट बेल्ट जरूर पहनिए। बहुत से कहते हैं कि भैया क्या ही करना है, बस थोड़ी दूर तो जाना है, नहीं पहन रहे, कौन हमें देख रहा है। लेकिन छोटी छोटी जो चीजें हम नजरअंदाज करते हैं वही बहुत बड़ी चीजें बन जाती है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप दो कदम पर जा रहे तो हेलमेट और सीट बेल्ट ना लगाए, चाहे एक कदम पर भी जाए तब भी हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाए। और इस गर्मी में पानी की बोतल जितना हो सके अपने साथ रखिए, क्योंकि पानी की बोतल रखना बहुत जरूरी है। आपको सेकंड सेकंड में भी प्यास लगता है, क्योंकि भैया जेठ का महीना है और जेठ के महीने में अगर पानी की बोतल आप नहीं लेकर जा रहे तो सोचिए, गर्मी ऊपर से इतनी और ऊपर से आपको बाहर से पानी ना मिले कहीं तो फिर क्या करेंगे। इसीलिए अपने साथ पानी रखना बहुत जरूरी है। और जो पैदल सवारी है उनसे कॉटन का दुपट्टा रखिए और छाता रखिए अपने साथ, ताकि आप धूप से इस गर्मी से बच सके। चलिए जी, लौट कर आते हैं एक फिलहाल गाना और बहुत ही खूबसूरत एक और अपडेट में लेकर आऊंगी कि बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर कौन है। अगर आप जानना चाहते हैं तो ट्यूनिंग करके रखिए आरजे रीना के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: कौन है तू?
1: डीजे गोविंद। यो
2: ए आई टी फेल से हो पाएगा क्या?
1: हाँ बस एक चांस
2: चल।

0: मैं जा रही हूँ।
1: क्या?
0: मैं जा रही हूँ।
1: इतनी जल्दी क्यों?
0: उसके घर से फोन आ गया है, डेडलाइन है।
1: मैं घर छोड़ दूँ?
0: बाय बाय
1: बाय बाय।
2: क्या बात है जी, लकी टू लकी मी, अब भी लकी बन सकते हैं जी जब हम क्वेश्चन पूछेंगे आप सभी से। तो देखिए, अगर आपका आंसर आता है राइट तो आज बनते हैं आप लकी विनर। हाँ जी, और आज रीना के साथ कनेक्ट है। समय की बात करूं तो 5:37 हो चुके हैं और आज की तारीख 24 जून बहुत ज्यादा खास है, और कल की तारीख तो और भी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि कल है निर्जला एकादशी, यानी कि जेठ के महीने का एकादशी। ये कहते हैं कि अगर आप पूरे साल एकादशी ना करो और ये जेठ वाला एकादशी करो तो पूरे साल के इतना आपको पुण्य मिलता है। चलिए, इससे आगे हम बात करते हैं बॉलीवुड के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर बन चुके हैं रणवीर सिंह, यानी कि धुरंधर और धुरंधर 2 के बाद सच में ये धुरंधर बन गए भैया। कोई भी अगर मूवी बनाए तो इनकी डिमांड है, ओ माय गॉड। मतलब वही है ना कि देखिए, अब जब जनता आपको पसंद करने लगती है ना और आपकी जो मूवी है वो फैंटास्टिक वाली जाती है, तो भैया ये तो बनता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड तो होना बनता है अपने अंदर, है ना। तो भाई रणवीर सिंह बन चुके हैं बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर, और साथ ही साथ जो मूवी है वो बहुत सारी मूवी रिलीज होने वाली है। कौन कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताने वाली हूँ आज की स्पेशल डे आखिरकार क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही शानदार गाना।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 5:48 हो चुके हैं श्रोताओं, और आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है। आज है 24 जून, और 24 जून को मनाया जाता इंटरनेशनल परी डे। हाँ, अब सोच रहे होंगे ना कि आखिरकार परी दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल यह दिन हमारी कल्पनाओं, लोक कथाओं और उन परियों को समर्पित है जो बचपन में हमारी कहानियों का हिस्सा रही है। परियां उम्मीद, जादू, अच्छाई और सपनों का प्रतीक मानी जाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की कल्पना शक्ति और सकारात्मक सोच उतनी ही जरूरी है जितनी हकीकत। बचपन में हमने बहुत सी परियों की कहानी सुनी है, और हमेशा लड़कियों को कहा जाता है ना कि ये पापा की परी है, और लड़कियां पापा की परी होती है, लेकिन स्कूटी आपने उड़ाना नहीं है जी बस। वरना पापा की परी की तरह स्कूटी मत उड़ा दीजिएगा, क्योंकि हम अक्सर लड़कियां भाई ब्रेक तो लगाते नहीं, बस भगाते भगाते जाते, ये नहीं देखते आगे खाई में गिरेंगे कि खेत में गिरेंगे, बस भगा जाते हैं। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो आज अपने अंदर के उस बच्चे को जरूर जिंदा रखिए जो आपने सपने देखे हैं, उन सच करने का हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। और इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हमें ना कभी सीरियस रहना ही नहीं है, क्योंकि सीरियस रह के आज तो कोई कुछ कर पाया ये बताओ, नहीं ना? तो क्यों सीरियस रहना है? बिल्कुल बिंदास रहो, झकास रहो, कहीं भी रहो, चिल रहो, जो आगे सामने वाला भी लोग देखे ना आपको तो बोले यार ये इतने खुश कैसे रह सकती है, आखिरकार क्या चल रहा है इसकी जिंदगी में? अरे कुछ नहीं चल रहा है, बस भैया खुश रहो। खुश रहने से ही हर चीज ठीक हो सकता है, वरना भैया फेस पर ना जो झुर्रियां आ जाती है ना, वो इसी रीजन से कहते हैं ना भाई, लड़कियों के फेस पर जल्दी झुर्रियां आ जाती है, पार्लर जाती है, ट्रीटमेंट करवाती है, कुछ ना कुछ जरूर करवाती है। यही रीजन होता है कि हम बहुत चीजों को सोचने लगते हैं, गहराई से सोचते हैं। तो बस उसकी टेंशन नहीं लेनी, बस पापा की परियों की तरह एंजॉय करनी है। हर मुश्किल परिस्थिति में भी आपने खुश रहना है, क्योंकि खुश रहोगे तो हर एक मुश्किल काम भी आप आसानी से कर पाओगे। सो चलिए, परी वाला जो हमने आपको आज, परी डे भी है तो एक परी वाला गाना तो बनता है जी। लाल परी, लाल परी। लेकिन एक मैसेज आ गया मेरे पास, ये विक्की सागर जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग सर। और अगले मैसेज की बात करूं तो आकाश जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग सर। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे पास आकांक्षा कनेक्ट होती है लाइन पास से, और इनका कहना है कि मैम मुझे मेरे पापा हमेशा बोलते हैं पापा की परी हो तुम बच्चे। ओहो क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है, पापा की परी है आप, बस स्कूटी ध्यान से चलाना है, ठीक है जी। चलिए फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी।

जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ। और कहते हैं ना, कुछ कर दिखाओ जो आपके अंदर हुनर है। और जब आपके हुनर जब हर किसी को दिखने लगे ना, तो वाह वाह वाही सिर्फ आपकी होती है। और आप इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट है श्रोताओं और सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर। जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आखिरकार मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। क्योंकि जो कल का जो दिन यानी कि 23

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
2: हेलो जी, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है और आप आर्जेरिना के साथ कनेक्टेड। समय की बात करूं तो 6:01 हो चुके हैं। सो आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है और खास इसलिए है कि यानी कि अगर मैं बात करूं रोहित शर्मा जो कि कप्तान रह चुके हैं और उनकी जो भाई बल्लेबाजी है ना बड़ी शानदार की है, और इसी को जब आपके अंदर कोई टैलेंट होता है ना तो वो हर इंसान को दिखता है कि भाई इस बंदे के अंदर टैलेंट है और इसने इतिहास में कुछ ना कुछ जरूर करा है और अपना नाम यानी कि इतिहास के बुक में दर्ज करा लिया है। जिनमें से रोहित शर्मा, जिनको यानी कि 2007 में उन मिला था पद्मश्री से, इनको सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रभवन में यानी कि सम्मानित किया पद्म भूषण से, और 23 जून का ही दिन है और 2026 में उनको फिर से पद्मश्री से नवाजा गया। यानी कि आपके अंदर जब कोई टैलेंट होता है तो वो जरूर आप सबको सामने सभी के सामने दिख जाता है। साथ ही साथ बॉलीवुड एक्टर्स के बहुतों को आज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए जो इन्फ्लुएंसर है, जो यूट्यूब पर काम करते हैं, इंस्टाग्राम पर काम करते हैं, उनके भी अगर पेजेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको छुपाकर आपने नहीं रखना, बल्कि अपने टैलेंट को दिखाते रहो, क्या पता कल की बारी आपकी हो। तो इसीलिए कभी भी हम ये सोचकर निराश नहीं होना चाहिए, बस आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे यानी कि बॉलीवुड में भाई कौन कौन सी मूवी है वो रिलीज होने वाली है। फिलहाल तो श्रद्धा कपूर की जो मूवी आने वाली है 28 अगस्त को बहुत चर्चे में है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक,
3: कॉफी स्पाइक्स रिकॉर्ड,
2: फिर आप सभी के साथ ढेर सारी बातें करते श्रोता और एक कड़क सवाल भी आप सभी के लिए।

और उनमें से हैं देखिए सिर्फ बॉलीवुड को नहीं और क्रिकेटर को नहीं, इन्फ्लुएंसर को नहीं, बल्कि हमारे मुरादाबाद का भी नाम सर्वप्रथम और सबसे पहले। आप सभी को पता है कि मुरादाबाद में सिर्फ की जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां पर सिर्फ कलाकार बहुत है, हर भाई पीतल नगरी है और पीतल के जो सामान चीजें हैं वो बनाई जाती है, जिसमें से यानी कि अगर मैं बात करूं जिनका नाम आया है श्री चरणजी लाल यादव जी को, उनको यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो बॉलीवुड हमारा पीछे नहीं है भैया, हर इतिहास में मुरादाबाद ने अपना नाम है ना दर्ज करा रखा है, क्योंकि जो इतिहास मुरादाबाद की जो पीतल की जो चीजें हैं जो बनाई जाती है वो हर जगह फेमस है, जहां कहीं भी चले जाओ बस एक ही नाम से फेमस है, पीतल नगरी। जो पीतल के जो सामान है वो सिर्फ और सिर्फ मुरादाबाद में ही मिलती है और हमारा मुरादाबाद का नाम हर जगह सबसे पहले आता है सिल्फ कला में, जिसमें से भाई इनका नाम तो होना ही था श्री चरणजी लाल यादव जी का। चलिए फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 6:00 यानी कि 13 मिनट हो चुके हैं। और आप सभी ने यानी कि जो लखनऊ में हुआ अग्नि जो आग लग गया, यानी कि बच्चे कोचिंग पर यानी कि पढ़ने गए थे, लेकिन एकदम आग लगने के कारण 14 बच्चे घायल हो गए हैं। और मतलब भाई कुछ नहीं कह सकते, दिल दहला देने वाली बात है। इसी के ऊपर यानी कि देखिए, आप अपने घर में या कहीं भी बाहर रहते हैं और अपने सबसे ज़रूरी बात है कि किचन में आपकी सुरक्षित जो चीज़ें हैं रखनी चाहिए। हम क्या है ना, और चीज़ें तो रख लेते हैं अपने किचन में, लेकिन जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो अपने किचन में हम नहीं रखते हैं। इसीलिए यानी कि फायर विभाग की तरफ से NOC अपने घर में ज़रूर ले, साथ ही साथ अपने घर में एक एग्जिट और एक इमरजेंसी गेट ज़रूर बनवाए, क्योंकि ये बनवाने बहुत ज़रूरी है। आजकल अगर बात करो तो गांव शहर में तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो शहरों में रहते हैं, जो सेकंड फ्लोर पर 25 फ्लोर पर रहते हैं, वो कैसे बचे। तो हर जगह अब ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी और एग्जिट गेट अपने घरों में ज़रूर बनवाए। कभी ऐसा मौका ऐसा होए तो आप यानी कि एकदम अपने घर से निकल तो सकते हो ना, क्योंकि ये फायर विभाग की तरफ से भाई आ चुका है। और अपने किचन में हमें अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए। साथ ही साथ अगर देखें, किचन से गर्मी बहुत ज़्यादा है और जहाँ हम बहुत सी चीज़ें रखते हैं वहीं एक बाल्टी में आप रेत भरकर रख सकते हैं, क्योंकि जब भी कुछ आग वगैरह लगती है तो रेत से ना आग बहुत जल्दी बुझती है। तो इसीलिए अपने किचन में आपने रेत रखना है। और अगर आप AC, देखिए हर घर में है, AC की सर्विस करवाते रहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपने भाई 2 महीने हो गए या नहीं करवाया है, 2 महीने में क्या ही होता है, फिर करवा लेंगे, देख लेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी है, अगर ये छोटी सी लापरवाही आप कर देते तो बड़े खतरे का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और अपने घर में आपने वेयर वेस्टिंग जरूर लगवाना है, ताकि इससे कोई भी कुछ होता है, यानी कि जो फायर वाला आते हैं जब भी आग लगती है तो जिससे बुझा सके, तो ये चीज अपने घर में जरूर रखनी है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है और गर्मी में आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि देखिए, पहले के टाइम में ना जो गांव में रहते हैं अभी भी वो एक ही टाइम खाना बनाते हैं और शाम तक, मतलब दोपहर में भी अगर भूख लगती तो खा लेते, लेकिन शहरों में क्या हो गया है, अब मॉडर्न जमाने की तरह हर जगह वही जिस टाइम भूख लगेगी ना उसी टाइम खाना बनेंगे, बस ब्रेकफास्ट बनेगा, उसके बाद लंच के टाइम में ही खाना बनेगा। सोचिए किचन में यानी कि इतनी गर्मी, जाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि किचन में जाए या ना जाए। इसीलिए चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अपने घर में किचन में बाल्टी में यानी कि रेत ज़रूर रखिए, ताकि खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है तो आपको आग बुझाने में आपकी हेल्प करेगी। चलिए, और अब की बार यानी कि मैं लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए कड़क सवाल। कड़क सवाल आखिरकार क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल एक मैसेज आगे है, उनको शामिल कर लेते हैं। मंसूरी कॉलोनी करूला मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, इनके दोस्त है सैयद शारिक अली। गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी, आपका शो सुन रहे हैं। इवनिंग मस्ती हो जाता है। थैंक यू सो मच सर, इवनिंग अच्छी हो जाती है और बहुत सी अच्छी जानकारियां भी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ पूनम जी कनेक्ट होती है लाइन पार से, और इनका कहने कि जो अभी आपने जस्ट इनका मैसेज आ गया कि जो फायर वाली आपने बातें करी है कि किचन में रेत रखना, तो मैम मैं हमेशा से अपने किचन में रेत जरूर रखती हूँ, क्योंकि एक बाल्टी रेत रखने से आपका ये तो है नहीं कि जगह बहुत ज्यादा घिर जाता है, बल्कि ये चीजें अपने घर में रखवानी चाहिए। फायर वाला जो एयर फायर वाला है वो भी अपने घर में रखना चाहिए कि कभी ऐसा कुछ होता है तो आप आग को कंट्रोल कर सको, आग को बुझा सको। तो बिल्कुल जी, सही कहा आपने, ये चीजें हमारे घर में होनी चाहिए। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं चिंटू जी मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि गुड वाली इवनिंग है जी, आपकी बातें बहुत प्यारी लगती है मुझे, थैंक यू सो मच जी। चलिए, लेकिन एक प्यारा सा गाना, उसके बाद कड़क सवाल के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे। श्रोताओं, बस कितने जाना है, आरजोरीना के साथ कनेक्ट रहना है।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहती रहे जी। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। और ऐसे ही एक सपने को सच कर दिखाया है, यानी कि भारत के उभरते हुए युवा यानी कि क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने। उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 15 साल और टीम इंडिया की जर्सी पहनकर, यानी कि 15 साल की एज में हर किसी की बस की बात नहीं होती कि इंडिया टीम की जर्सी आप पहनो। जब वैभव सूर्यवंशी ने पहली बार भारत की यानी कि नीली जर्सी उसको मिली और उसने देखा, उसकी आंखों में जो वो नमी थी, वो सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए नहीं है बल्कि मेहनत, लगन और विश्वास की जीत का पल है। कि जब आप मेहनत करते हो और वो भी टीम इंडिया के लिए, और आपके पास नीली जर्सी आती है, तो उसका जो खुशी होता है अलग ही लेवल का होता है। उसको इस बात की खुशी नहीं होती कि मेरे को नीली जर्सी मिल गई, उसको इस बात की खुशी होती है कि आखिरकार जो मैंने मेहनत करी है उसका फल आज मुझे मिल गया। वैभव सूर्यवंशी ने साबित कर दिया कि इरादे मजबूत हो तो एज कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि एज सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है और संख्या कभी मायने नहीं रखता है। हर एज में अगर आपके टैलेंट है आपके अंदर, तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एज तो सिर्फ एक संख्या, एक नंबर है। नंबर को क्या ही जोड़ना है जी। कहते हैं ना हमारे पास, यानी कि हम डिग्रियां तो बहुत लेते हैं, लेकिन वो डिग्रियां सिर्फ और संदूक में ही काम आते हैं। काम आता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका टैलेंट। आपके अंदर क्या टैलेंट है? देखिए, अगर आपने 90% भी ले लिया है और आपके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ संदूक में ही रखे जाएंगे। अगर आपने 76% लिया है और आपके अंदर टैलेंट है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए नंबर पे कभी मत जाइए। नंबर तो वो तो सिर्फ एक संख्या है। बस अपने अंदर की हिम्मत और हुनर को जानिए और यूं ही अर्जुरीना और एफएम मुरादाबाद को सुनते रहिए। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और इसके बाद एक ऐसी बात करने वाली हूँ, एक ऐसा अपडेट है भाई जो इंस्टाग्राम पर तहलका मचा रखा है। घर पर अगर आप न्यूज सुन रहे हो तो सब जगह उसी के चर्चे हैं, उसी के चर्चे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है आजकल की जेंजी को, आजकल की जनरेशन को? मतलब वो सोचना क्या चाह रही है, करना क्या चाह रही है, लेकिन गलत स्टेप उठाएंगी, लेकिन घर वालों को कभी सामने से बोल नहीं पाएंगी। क्यों भैया? बुरे बन जाते। लेकिन जब आप पूरी दुनिया के आगे बुरे बनते हो, उसका क्या? सो इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक गाना और लौट कर आते हैं जी आप सभी के बीच, लेकिन गाने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
2: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जो समय की बात करूँ तो 6:36 हो चुके हैं। और आपने इंस्टाग्राम पर, न्यूज़ पर, कहीं भी आप न्यूज़पेपर देख ली, हर जगह तहलका मचा हुआ है। यानी कि केतन अग्रवाल और सिया गोयल का। देखिए भैया, आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप किसी से प्यार करते हैं तो देखिए, जब प्यार करते तो शर्म किस चीज़ की। आप अपने घर वालों को बोल सकते हो कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ तो मैं शादी भी इसी से करूँगी। ये नहीं कि आप घर वालों को भी ना बताओ और उस लड़के की ज़िंदगी तहस नहस कर दो। यानी कि केतन अग्रवाल और सिया, मतलब केतन अग्रवाल जो लड़का है उसकी क्या गलती है? क्या उसने शादी के लिए हाँ कर दिया इसलिए गलती है, या फिर उसने उसके लिए बर्थडे उसकी प्लानिंग करी, इतना अच्छा सब कुछ डेकोरेशन किया, क्या ये गलती है उसकी? मतलब हम इंसानों में घर पर कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन किसी की जान लेने की हमें हिम्मत है। मतलब ये डिसीजन हम ले सकते हैं कि हम उसके जान ले सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन नहीं लेंगे कि अपने घर वालों को बताए। यानी कि घर वालों को आगे बुरा क्यों बनना है भाई? शरीफ बच्चे हैं, शरीफ बनेंगे। तो भाई मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, कोई भी इंसान हो, मैं हूँ, आप हो, अगर प्यार करते हैं तो घर वालों को बोलो, ना कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो। सोचिए, केतन अग्रवाल अपने घर का एक लौता बेटा, अब उसके घर में कौन है? सिर्फ मम्मी पापा। सो शादी, भाई आजकल शादी शादी नहीं रह गया है, हर कोई शादी के नाम पर डरने लग जाएगा। और सिर्फ एक लड़की की वजह से हर लड़की के ऊपर उंगलियां उठने लग जाती है, एक गलत लड़के के ऊपर हर गलत लड़के के ऊपर उंगलियां उठने लग जाती है। इसीलिए कुछ भी ऐसा करने से पहले 100 बार जरूर सोचिए, और कुछ ऐसा होता है तो अपने घर वालों को जरूर बताइए। किसी की जिंदगी के साथ मत खेलिए, क्योंकि उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा हुआ होता है। और इसी बीच में लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए कड़क सवाल, और कड़क सवाल भी बहुत ही आसान है, बस आपने सोचना है और आंसर आराम से आपको मिल जाएगा। सो आज का कड़क सवाल ये है, जो करता है वायु शुद्ध, फल देकर जो पेट भरे, मानव बना है उसका दुश्मन, यानी कि मनुष्य उसका दुश्मन बन चुका है, आखिरकार वो कौन है? जल्दी मैसेज करके बताइए। नंबर है 9823789698 पर आपने मैसेज करके बताना है। वंस अगेन एक बार और ध्यान से सुनिए, जो करता है वायु शुद्ध, फल देकर हर इंसान का पेट है भरता, लेकिन दुश्मन बने हुए है उसके मनुष्य इंसान, आखिरकार वो कौन है? जो भाई लगाना तो नहीं चाहते, काटना जरूर चाहते हैं वो, लेकिन वो हमारा हमसे कुछ भी नहीं लेता है, बस हमें फल देता है, हमें पेट भरता है और वायु शुद्ध करता है। देखिए फॉर एग्जांपल बहुत है, सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल के लिए एक गाना आप सभी के बीच, सो इस गाने को एंजॉय करते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 6:45 हो चुके हैं श्रोताओं। और आज का कड़क सवाल भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बस आपने सोचना है और आप आसानी से मैसेज कर सकते हैं। आज का कड़क सवाल ये है, जो करता है वायु शुद्ध, फल देकर हमारा पेट भरता है, लेकिन इंसान है उसका दुश्मन बन चुका है। आखिरकार कौन है और दुश्मन क्यों बने हुए? आप महसूस करके बताइए आखिरकार इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जो हमें शुद्ध हवा देता है, फल देता है, बदले में हमसे कुछ नहीं लेता है, आखिरकार उसका नाम क्या है और इंसान उसका दुश्मन बन चुका है? सोचिए। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

क्या बात है जी। और आर्जेरीना के साथ अब कनेक्ट एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:54 हो चुके श्रोताओं, और अब आप सभी के मैसेज की तरफ चलते हैं। आज का कड़क सवाल यही है कि जो करता है वायु शुद्ध, फल देकर हर किसी का पेट भरता है, फिर भी इंसान बना है उसका दुश्मन। चलिए देखते हैं क्या आज राइट आंसर आता है भैया। ओहो, पेड़ है। ओके, हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और ये हमारे साथ कनेक्ट होती है ललिता कश्यप जी, और इनका कहना है कि चाय पी लीजिए। मैम आज शादी सालगिरह है, यानी कि 15वीं है। अच्छा, आज आपकी शादी की सालगिरह है, तो आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी रेडियो की टीम की तरफ से आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप यूं ही अपनी जिंदगी में एक दूसरे का साथ देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि रिश्ते में मिठास एक दूसरे के साथ रहने से बनती है। और जब वही रिश्ता देखिए, जहां भी नोक झोंक हो, थोड़ा सा सहन करिए और आगे बढ़ जाइए अपने रिश्ते में। कभी ये मत देखिए कि कभी हो जाता है ना कि हम नहीं झुकेंगे, भैया हम क्यों झुके, मैं क्यों सुनूं, लेकिन वही रिश्ता बहुत शानदार, बहुत प्यारा होता है, जहां नोक झोंक के साथ प्यारी प्यार बहुत बिंदास होता है। सो इनका कहना है कि आज शादी की सालगिरह पर एक गाना सुनवा दीजिएगा, गोविंदा जी का। ओके जी, बिल्कुल आपको सुनवाएंगे। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे पास आता है इरशाद हुसैन अंसारी जी का, इनका कहना है कि पेड़ है। और जय श्री राम रीना जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे हैं? बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि राइट आंसर होता है पेड़। माही हमारे साथ कनेक्ट होती हैं और गुड इवनिंग पहुंचाती है, वेरी गुड इवनिंग जी। इनका कहना है कि राइट आंसर होता है पेड़, और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से पेश कर रही हो मैम, थैंक यू सो मच जी। और अगले मैसेज की बात करें तो ये विवेक जी हमारे साथ कनेक्ट होती है, और इनका कहना है कि पेड़ है मैम, जो कि इंसान उसका दुश्मन बन चुका है, और पेड़ तो हम काटते हैं लेकिन पेड़ लगाते नहीं है। सो मैं रेडियो के माध्यम से सभी लिसनर्स को यही कहना चाहूंगा कि पेड़ जितना हो सके उतना लगाइए, कम से कम महीने में आप दो नहीं लगा सकते, एटलीस्ट एक पेड़ तो आप लगा ही सकते हैं, तो पेड़ जरूर लगाइए, क्योंकि पेड़ से हमें छाया मिलती है, फल मिलते हैं, और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं, बस थोड़ा सा देख रेख की तो जरूरत पड़ती है, और पेड़ किसी का क्या ही बिगाड़ लेगा। जब देखिए, अगर पेड़ बहुत सारे रहेंगे तो हम इस गर्मी से भी बचे रहेंगे, जो आजकल इतना टेम्परेचर बढ़ चुका है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल जी, सही कहा विवेक जी आपने। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ पारुल कनेक्ट होती हैं बुद्धे बिहार से, और इनका कहना है कि राइट आंसर होता है पेड़, और अभी मैं ऑन द वे हूं। सो वैसे मैं घर पर फोन पे सुनती हूँ, लेकिन आज गाड़ी में सुन रही हूँ, तो आपकी आवाज और भी खूबसूरत लग रही है मैम, और बस गाने आप बहुत अच्छे प्ले कर रही है। मैं मतलब गाने जो जब भी गाने प्ले होते हैं, और भी मैं वॉल्यूम बहुत तेज कर लेती हूँ। क्या बात है जी, इतना भी तेज नहीं करना है, बाकी स्पीकर फट जाए। चलिए जी, अगले मैसेज की बात करते हैं। हमारे साथ खुशबू कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि राइट आंसर होता है पेड़, और इनका कहना है कि मैम अब तक मैंने दो पेड़ तो मैं लगा चुकी हूँ। क्या बात है जी, वेल डन, बहुत अच्छी बात है कि आपने दो पेड़ कम से कम लगाए तो है ना, तो लगाने चाहिए आपके घर में। आप छोटे छोटे गमले लगा सकते हैं, उसके अंदर पेड़ लगा सकते हैं, जो आपको कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो आपको घर में जरूर और जरूर अपने गमलों में लगाने चाहिए, जिससे शुद्ध हवाएं आती हैं। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, और आप सभी को यही कहना चाहेंगे कल एकादशी है, निर्जला एकादशी है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बना रहे। और इसी के साथ बाय, टाटा, टेक केयर। लेकिन ललिता कश्यप जी का जो गाना है उसको मैं जरूर प्ले करने वाली हूँ, और सबसे पहले राइट आंसर आज इन्होंने ही दिया है, तो आप बनती हैं आज मेरे शो के विनर, क्योंकि भाई ये बड़ी एक्टिव लेडी है, जब भी आप ये रेडियो सुनती है मैसेज इनका जरूर आता है,
और ये उसका राइट आंसर भी देती है, कभी लेट हो जाती है लेकिन कभी कभी भाई मौके पर चौका लगा देती है। सो आज आप बनती है हमारे हरियाणा इवनिंग मस्ती शो के विनर बनती हैं आप। सो आज आपकी सालगिरह भी है तो एंजॉय करिए और पार्टी जरूर दे दीजिएगा जी, ऑफिस आ जाइएगा। अब ये मत बोलिएगा कि ऑफिस नहीं आ सकते, बस जिस दिन ठंडा मौसम हो उस दिन आ जाइएगा। और चलिए फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद मैं यहाँ से लेती हूँ जाने की इजाजत। श्रोताओं यही कहना चाहेंगे कि अपना ध्यान रखिए और पानी पीते रहिए इस गर्मी में, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और इस गर्मी में आप बच कर रहेंगे तभी आप अपना ध्यान रख पाएंगे। पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए पानी अपने छत पर जरूर रखिए और उनको चेंज करते रहिए, क्योंकि उनको चेंज करना भी बहुत जरूरी है। चलिए जी, बाय, मिलते हैं कल हम आपको।

0: में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया हर्जेगोवना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले कल रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मोरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त आरजी आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं विकास, विरासत, उद्यमिता और स्वाद के प्रेरक कहानियों की,
6: के साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस शहर में इंडस्ट्रियल हब के रूप में माना जाता है, लेकिन आज अपनी थाली के स्वाद से भी पहचान बना चुका है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद।

0: غازی آباد جہاں فیکٹریوں کی سٹی کے ساتھ ساتھ اب تندور کی خوشبو بھی اٹھتی ہے، جہاں روزگار کی نئی کہانیاں لکھ رہا ہے سویا چاپ اور ہری مرچ کا اچار۔
1: سچ بتائیے، این سی آر میں ایسا کون سا علاقہ ہے جہاں شام ہوتے ہی ایک پلیٹ ملائی چاپ کی آواز سنائی دیتی ہے؟
0: بالکل، لیکن شروتاؤ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سویا چاپ آخر کیا ہے؟ اور سویا چاپ کے مکھی روپ سے سویا بین پروٹین سے بنتا ہے۔ سویا بین کو وشو استر پر پروٹین کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے۔ بھارتی کرشی انوسندھان سنستھانوں اور پوشن وشیشجوں کے انوسار سویا پروٹین میں لگ بھگ 45 سے 50% تک اچھ گنوتا والا پروٹین پایا جاتا ہے۔ اسے میدا گہوں کے ساتھ آٹے میں گوند کر اسٹک پر چڑھایا جاتا ہے، پھر ابالا جاتا ہے۔ اس پرکریا سے اس کا اسٹرکچر اس کا چکن جیسا بن جاتا ہے، اسی لیے ویجیٹیرین میٹ بھی اسے کہا جاتا ہے،
1: یعنی سواد بھی اور صحت بھی۔
0: اسی میں آوشک امینو ایسڈ، آئرن اور کیلشیم بھی پائے جاتے ہیں۔ فٹنس پریمیوں کے لیے یہ کیول ایک بہترین پروٹین نہیں ہے، اور اسے جب تندور میں پکایا جاتا ہے تو اس اوپر سے ملائی کاجو کا پیسٹ، مسالوں کا تڑکا، تو بن جاتی ہے ملائی چاپ، افغانی چاپ، تندوری چاپ، مسالہ چاپ، اچاری چاپ، ہر فلیور میں الگ انداز۔
1: اب ذرا آنکڑوں کی بات ہو جائے۔
0: ضرور، 40 سے ادھک ہول سیلر، 300 سے ادھک ریٹیلر، 200 سے ادھک ریسٹورینٹ اور ڈھابے، 10,000 سے ادھک لوگوں کو پرتیاشی اور اپتیاشی روزگار۔ سویا چاپ اب صرف ویجن نہیں بلکہ استھانی ارتھ ویوستھا کی ریڑھ بن چکا ہے،
1: یعنی تندور کی آگ سے جل رہی ہے وکاس کی مثال۔
2: میرا نام مجید چوہان ہے اور یہ ریڈی ملائی چاپ میں 2019 میں اسٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں ہم لوگ بہت اتنا پہلے جانتے نہیں تھے، پہلے بھی ٹیسٹڈ ہے دہلی، تو ہمیں پتا چلا کہ بھائی چاپ بھی کوئی اتنی اچھی اس طرح کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بارے میں ہم نے کرنا اسٹارٹ کیا، تو 60s سے 90s کے بیچ میں میری عمر ہے، سمے رہے ہیں پنجاب، تو پھر ہم لوگوں نے گھومنا اسٹارٹ کیا بھائی اس کو کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے، کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے۔
3: سر، ODO کی یوجنا سرکار نے لانچ کری ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا
2: ہے؟ یہ سرکار کا بہت اچھا قدم ہے، کیونکہ جس بھی دیش میں جتنے زیادہ بزنسز اسٹیبلش ہوں گے وہ اتنا فاسٹ گروئنگ ہوئے گا۔ تو ODOC میں کیا ہے کہ جتنے بھی یوا ہیں اپنے، کوئی چھوٹا موٹا کسی بھی طرح کا ریسٹورانٹ یا کوئی دن چلانا چاہتا ہے تو ODOC یوجنا میں ان کو سبسڈی کے تھرو لون مل جاتا ہے، اس پہ کافی ساری سبسڈی ملتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات ایک اور کری ہے سرکار نے کہ بیچ میں سے مڈل مین ختم کر کے سیدھا آن لائن پورٹل پہ ڈالا ہے کہ آپ سیدھا کریے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اگر نہیں کرتے تو پیچھے سے اپنے آپ ہی، کیونکہ اس کو ریزالو کرنا ہوتا ہے کچھ ایسا ہے۔ اور جتنا بھی سرکار کے جتنے بھی لائسنسز ہیں اور اس کو سب انسٹرکشن ہے کہ ان لوگوں کو اس کو کیا جائے کہ آرام سے ایزیلی سب کو سارا وہ مل جائے، جتنے بھی لائسنس ہیں جس طرح کا بھی ہے وہ سب چیزیں مل جائیں۔ تو مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ ODOC یوجنا سرکار نے اسٹارٹ کی ہے، تھینک یو سو مچ۔
1: اب بات کرتے ہیں سواد کی، جس کے بنا دال روٹی ادھوری لگتی ہے۔
0: اتر بھارتیہ کھان پان میں اچار کا خاص استھان ہے۔ غازی آباد کے ہری مرچ کا اچار پارمپرک ودھی سے تیار ہوتا ہے۔ تازی ہری مرچ، سرسوں کا شدھ تیل، سونف، میتھی دانا، رائی، ہلدی اور نمک کا سنتولت مشرن، اور پھر دھوپ میں پراکرتک روپ سے پکایا جاتا ہے۔
1: اور صحت،
0: ہری مرچ میں وائٹمن سی پرچر ماترا میں ہوتی ہے جو روگ پرتیرودھک کھمتا کو بڑھاتا ہے۔ سرسوں کے تیل کو آیورویدی میں اینٹی بیکٹیریل گڑوں کے یہ جانا جاتا ہے۔ آج 150 سے ادھک کاریگر، 30 سے زیادہ ہول سیلر اور 2,500 سے ادھک لوگوں کو روزگار، یہ سبھی اکائی ضلعوں میں ادیوگ کیندر کے نویش متر پورٹل پر پنجیکرت ہے، جس سے انہیں سرکاری یوجناؤں کا سیدھا لابھ مل رہا ہے۔
1: یہ جو اتنا بڑا بدلاؤ آیا ہے اس کی نیو کہاں سے پڑی؟
0: اس کی شروعات ہوئی ہے ون ڈسٹرکٹ ون پروٹیکٹ یعنی ODOP یوجنا سے۔ اس یوجنا کا ادیشیہ تھا ہر ضلع کو پارمپرک پہچان کو ادیوگ اور بازاروں سے جوڑنا۔ اس کی سفلتا کے بعد اتر پردیش سرکار نے ایک ابھینو قدم اٹھایا، ون ڈسٹرکٹ ون کیوزین یعنی ODOC اسکیم۔ اب ہر ضلع کا ایک خاص ویجن بھی برانڈ بن کر ابھرے گا۔
1: لیکن RJ صرف پہچان بنا دینا ہی کافی نہیں ہوتا، چھوٹے ادیموں کو آگے بڑھانے کے لیے सहयोग भी तो चाहिए ना।
0: बिल्कुल, और यही काम सरकार पूरी सक्रियता से कर रही है। सरकार ने सोया चाप और आचार उद्योग से जुड़े उद्यमी को कई नई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर अनुदान की सब्सिडी, आसान ऋण सुविधाएं और मुद्रा योजनाओं से आर्थिक सहायता, जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम, फूड सेफ्टी पैकेजिंग और गुणवत्ता सुधार की विशेष कार्यशालाएं, महिलाओं और युवा उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए सरल ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस की सुविधा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर फूड फेस्टिवल में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की व्यवस्था।
1: यानी अब छोटे व्यापारी भी बड़े सपने देख पा रहे हैं।
0: बिल्कुल, सरकार की कोशिश है कि स्थानीय उद्यमी सिर्फ अपने शहर तक सीमित न रहे बल्कि उनके उत्पाद देश और विदेश के बाजारों तक पहुँचे। प्रशिक्षण, तकनीकी और वित्तीय सहयोग के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
1: और यही तो है असली विकास, जब स्थानीय हुनर को सही मंच और सही समर्थन मिले।
0: सही कहा आपने, आज गाजियाबाद का स्वाद सिर्फ लोगों की थाली तक नहीं है बल्कि हजारों परिवार की रोजी रोटी और आत्मविश्वास भी जुड़ चुका है। राज्य और राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल मंच, आकर्षक ब्रांडिंग और आधुनिक पैकेजिंग, ई मार्केटिंग और डिजिटल प्रमोशन, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण, आसान ऋण और सब्सिडी प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, इससे छोटे उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है।
4: नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैं जनपद गाजियाबाद में उपायुक्त उद्योग के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद के नाम से लॉन्च करी थी, जिसके माध्यम से जो हमारे परंपरागत आर्टिजन हस्तशिल्पी या हमारे जो परंपरागत उत्पाद रहे हैं 75 जनपदों में, उनको बड़े स्तर पर कामयाबी मिली और बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम रही। और उसी के आधार पर भारत सरकार ने भी एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की। अब एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं, जो औद्योगिक उत्पाद हैं, उनको या आर्टिजन्स हैं, उनको हमने कवर किया। अब उसी कड़ी में हमारी एक नई योजना एक जनपद एक व्यंजन योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार हमारे समस्त जनपदों के जो पारंपरिक रूप से जो खाने पीने की चीजें हैं या व्यंजन हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना लाई गई है। हमारी जनपद की कुजीन, जैसा कि आपको पता है, गाजियाबाद में सोया चाप और मिर्च का अचार दो उत्पाद यहाँ ODOC के तहत चयनित किए गए हैं। अपने जो हमारे परंपरागत बनाने वाले लोग हैं, इसको उनकी ट्रेनिंग भी देंगे, उनको टूल किट्स भी देंगे और उनको लोन के माध्यम से जो उनका अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग उनका जो भी यूनिट औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से या अपने घर पे कुटीर उद्योग के में अगर वो बना रहे होंगे उसको, या रेस्टोरेंट के माध्यम से सोया चाप अपना बेच रहे हैं, तो उनको हम फाइनेंस भी देंगे कि वो अपने काम को और अच्छा कर सकें। और उसके बाद उनको बेचने के लिए उसकी ब्रांडिंग और उनको मार्केट अवेलेबल कराने का भी काम इस स्कीम के माध्यम से किया जाएगा।
1: ये
5: समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में LDA ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा 2014 में पास किया गया था, जिसके बाद 2016 में LDA ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
6: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है। और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
5: इस बीच आज LDA ने आग की चपेट में आई बिल्डिंग पर नोटिस लगाने की कार्रवाई की। इस नोटिस के जरिए LDA ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अगर LDA को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं आग की घटना में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद KGMU से डिस्चार्ज कर दिया गया है। KGMU के प्रवक्ता KK सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी जनपदों में अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। इसी क्रम में आज प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है, वहीं कई अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में CFO महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं, जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
7: जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में, की क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है। एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है, सुबह से हम इसी में लगे हुए हैं। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर साक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
8: आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज नाबार्ड लखनऊ में FPO राज्य स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाली विभिन्न कृषि संबंधी चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और वर्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों के संरक्षण, हैंडपंपों के अनुरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और जन जागरूकता कार्यक्रमों को अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश भी दिए। भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और तजाकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि तजाकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक समझौता भी किया जाएगा।
9: तजाकिस्तान और भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात ये आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर तजाकिस्तान से सीधा संबंध रहा और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
5: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा।
10: हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान करती है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेरठ को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR इसकी तैयार होनी है जितना हिस्सा मेरठ के अंदर आएगा उसका पैसा मेरठ का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
5: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। बदायूं के कछला गंगा घाट पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमरोहा के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए प्रशासन ने नेशनल हाईवे 9 पर रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि आगामी सप्ताह में मानसूनी गतिविधियां तेज होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड में LDA ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
11: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
12: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
13: कॉल 8826213131।
14: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट TB, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
15: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: सहयोग से सभी जिला न्यायालयों में 5 जुलाई से सप्ताहांत अदालत शुरू की जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य की शुरुआत की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इस निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।
3: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि यह स्टेशन चरण 5A के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, जो वर्तमान मेजेंटा लाइन का जनकपुरी वेस्ट से आर के आश्रम मार्ग का विस्तार है। 9.9 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 9 भूमिगत स्टेशन शामिल हैं। इनमें शिवाजी स्टेडियम, युग युगीन भारत, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि केंद्रीय सचिवालय स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां नई मेजेंटा लाइन का स्टेशन मौजूदा येलो और वॉयलेट लाइन से निर्बाध रूप से जुड़ जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों, यात्रियों और लुटियंस दिल्ली क्षेत्र में आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक चलेगी।
4: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं, उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है, ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
3: यह परियोजना राजधानी दिल्ली के मुख्य हिस्से से आवागमन को सुदृढ़ करने और यात्री सुविधा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या।
2: दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगभग 657 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में आज ये निर्णय लिया गया।
5: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से राजधानी की सड़कों को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख मार्गों की गुणवत्ता में सुधार होगा और सड़क अवसंरचना को आधुनिक मानकों के अनुरूप सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के पूर्वी रखरखाव क्षेत्र में लगभग 58 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर 147 करोड़ रुपए, उत्तरी रखरखाव क्षेत्र में 104 किलोमीटर लंबी सड़क पर 247 करोड़ रुपए और दक्षिणी रखरखाव क्षेत्र में लगभग 107 किलोमीटर लंबी सड़कों पर 263 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत व्यय की जाएगी। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नेहा गोस्वामी।
2: बैठक में उत्तरी दिल्ली के धीरपुर में डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक नए कैंपस के निर्माण को मंजूरी दी गई है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि लगभग 1668 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला ये कैंपस राजधानी में गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया कैंपस विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करेगा और राष्ट्रीय राजधानी में उच्च शिक्षा के अवसरों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने आज नई दिल्ली के पुलिस मुख्यालय में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
6: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि उन्होंने पुलिस बल को अपराध पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसमें महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निरंतर कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने, सर्वोत्तम पुलिस पद्धतियों को अपनाने और AI तथा ड्रोन जैसी उभरती

0: मॉनसून के आगमन को देखते हुए राजधानी में तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज कीर्ति नगर और मोती नगर में मॉनसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: लोक निर्माण विभाग ने बताया कि राजधानी में नालों की डी सॉल्टिंग का लगभग 90% कार्य पूरा कर लिया गया है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बताया कि इस वर्ष डी सॉल्टिंग अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। विभाग ने कहा कि इस वर्ष लगभग 30 लाख मीट्रिक टन गाद हटाने का कार्य पूरा किया गया है। मीडिया से बातचीत में श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि आज दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य अभियंता और फील्ड टीमें मानसून से पहले सड़कों और नालों का निरीक्षण कर रही हैं। श्री सिंह ने बताया कि अगले 10 से 15 दिनों में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा।
2: 70 विधानसभा अगले 10-15 दिन में हम देख लें कि सारे काम हो रहे हैं नहीं हो रहे, जो काम ठीक नहीं हो रहे उनके कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट रुकवा रहे हैं, जो इंजीनियर ठीक काम नहीं करेंगे उनके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा। अगर दिल्ली की जनता को इस बारिश में कोई जल भराव ना दिखाई दे इसके लिए हमारा प्रयास।
1: श्री सिंह ने कहा कि रखरखाव अनुबंध होने के बावजूद कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन केवल जमीनी स्तर पर जाकर ही किया जा सकता है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: दिल्ली सरकार ने राजधानी में डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
3: बैठक में अधिकारियों ने राजधानी में इन बीमारियों की वर्तमान स्थिति, निगरानी व्यवस्था, अस्पतालों की तैयारियों, मच्छर नियंत्रण गतिविधियों तथा जन जागरूकता अभियानों की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि डेंगू के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही श्री सिंह ने नागरिकों से अपील की कि घरों और आसपास कहीं भी मच्छरों के पनपने की स्थिति न बनने दें। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की शीघ्र पहचान और प्रभावी प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तथा त्वरित प्रक्रिया तंत्र की व्यवस्था को विकसित किया है। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली में 35 सेंटिनल सर्विलांस अस्पताल सक्रिय रूप से इन मामलों की निरंतर निगरानी कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं अमित कुमार त्यागी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री शाह मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। इसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये पत्र मांग और आपूर्ति में कमी तथा पुनर्वास पर केंद्रित समन्वित उपायों के माध्यम से मादक पदार्थों के खतरे से निपटने में सहायता प्रदान करेगा। दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से राजधानी के सभी जिला न्यायालय परिसरों में 5 जुलाई से सप्ताहांत अदालतें शुरू की जाएंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यातायात पुलिस ने बताया कि ये न्यायालय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक माह के दूसरे शनिवार और प्रत्येक रविवार को आयोजित किए जाएंगे। इसमें सभी व्यक्तिगत और व्यावसायिक वाहनों के समझौता योग्य यातायात नोटिस या चालान शामिल किए जाएंगे, जिसमें चालान या नोटिस की सीमा प्रति वाहन अधिकतम 20 निर्धारित की गई है। ये सुविधा दिल्ली के पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी और द्वारका न्यायालयों में उपलब्ध कराई जाएगी। यातायात पुलिस ने कहा कि चालान डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट कल से लाइव की जाएगी। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के

कार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के 595 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। इन स्थानों से अवैध पार्किंग हटाने के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप रही, वहीं शाम में वर्षा से दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगभग 657 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मॉनसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से सभी जिला न्यायालयों में 5 जुलाई से सप्ताहांत अदालत शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: हेलो जी, कैसे हालचाल है? नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजी आनंद है और इस वक्त फिर से हम एक खास मेहमान के साथ स्टूडियो में हमने जो है एंट्री दे दी है, यानी कि मेरी तो एंट्री होगी और मेरे साथ ही साथ एक और बहुत ही कमाल के शख्स हैं, एक बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी है जो यहाँ पर आ गई है हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में आपसे गुफ्तगू करने। और ढेर सारी वो अपने साथ पूरा एक पिटारा लेकर आई है, ढेर सारी डायरी लेकर आई है, बहुत सारी उनके पास एक पोर्टली है पूरी जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है। तो आज कौन है जो खजाने से भरपूर हमारे स्टूडियो में हमारे बीच में आ चुकी हैं, दस्तक देंगी अपनी आवाज के माध्यम से, आपको आज करेंगी ढेर सारा यू नो एंटरटेनमेंट का जो डोज है वो लेकर आएंगे, बहुत सारी बातें आपको बताने वाली है, बहुत कुछ सुनाने वाली है। एंड शी इज अल्टीमेट, जिन्हें कह सकते हैं एक पैकेट आज आपको हम देने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या होने वाला है मुझे खुद को भी नहीं पता, आई एम वेरी सरप्राइज। बस इतना पता था कोई आने वाला है, लेकिन वो क्या आने वाला है ये भी नहीं पता था। एंड यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि जब हमें पता लगता है कोई गेस्ट को हमें इंटरव्यू करना है तो उसकी डिटेल्स हमारे पास होती है, लेकिन ये जो मैम आई है ना, इनकी कोई डिटेल है ही नहीं हमारे पास। अब जो भी होगा एक्सक्लूसिवली लाइव होगा। सो सबसे पहले तो वेलकम बैक है मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
1: हेलो एवरीवन, मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आनंद आपके साथ आकर।
0: थैंक यू सो मच।
1: आप जी का जो मुझे सुन रहे हैं मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि जुड़े रहिएगा, बहुत दिल पसंद नगमे सुनने को मिलेंगे, कुछ दिल को छू जाने वाली नज़में और बहुत सारी बातें दिल से दिल।
0: क्या बात है, ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि आज एक नहीं दो दो एंकर आपको सुनाई दे रहे हैं, दो दो अनाउंसर आपको सुनाई दे रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैम बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब किसी की एक तो आवाज इतनी अच्छी, ऊपर से उनकी बात इतनी अच्छी, फिर उनका फ्लो इतना बढ़िया, तो वो पूरा एक नो माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दो एंकर यहाँ पे बैठ के आज श्रोताओं को एंटरटेन करने वाले हैं।
1: सो प्रोग्राम का टाइम एक्सीड हो जाने वाला है।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैम, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, हमारे मुरादाबाद की जनता को हम जानना चाहती है, मुरादाबाद की ऑडियंस की, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं।
1: मैं जो भी कहूंगी वो आप सब भूल जाएंगे, आपको याद क्या रहेगा, मेरी आवाज या जो कुछ मैं सुनाऊंगी। तो मुझे लगता है हमारी कविताएं, हमारी कहानियां, हमारी नज़में, ये जो हैं हमारे दिल से आती हैं और यही हमारी रूह का रिफ्लेक्शन है, आईना है।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो बजाय इसके कि मैं कुछ और इधर उधर का इंट्रोडक्शन दूं जो आप भूलें और आगे बढ़ जाएं, आप कविताओं से शुरू करते हैं और उसके जरिए आप मुझे खुद ब खुद जान जाएंगे। और हाँ, अगर आप मुझे दोबारा सुनना चाहेंगे तो फिर मेरी ये आवाज ही मेरी पहचान होगी।
0: एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है मैम ने कर दिया, एक आपको हिंट दे दिया, एक क्लू दे दिया है कि वो क्या करने वाली है, वो तो वही बताएंगी। तो मैम प्लीज, शालिनी मैम, मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं कुछ और बोलूं, कुछ आपसे ही शुरुआत हो जाए प्रोग्राम की।
1: बिल्कुल। तो एक छोटी सी बात है कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आपने लिखना कैसे शुरू किया। तो उसी के बारे में कुछ लाइनें हैं, एक छोटी सी नज्म है, सुनिए। कि जब भी कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा,
0: वाह,
1: जब भी कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा, मैं तोड़ू उस खामोशी को मुझसे ये हट कर बैठा, तब तब कोई नज्म किसी नन्हे पौधे सी मुस्काई, तब तब अल्फाजों ने धीरे से ली है अंगड़ाई, जब जब रूह खंगाली मैंने, जब जब रूह खंगाली मैंने, छन छन करके लफ्ज गिरे, जब जब रूह खंगाली मैंने, छन छन करके लफ्ज गिरे, मुंह पर उंगली रख कर उनको बिठा दिया खामोश पर, चुपके चुपके से, चुपके से वो सारे बन गए दोस्त हमराज मेरे, फिर नज्म ढली कविता पनपी, बन गए कहानी राज मेरे, बन गए कहानी राज मेरे।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस मैम। आपने जो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है अपनी पंक्तियों के साथ, जो आपने अपने आप कुछ किया है, लाजवाब, मतलब ब्यूटीफुल। लोग मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आप क्या स्पेशल करने वाले हो। कहते हैं ना, एक कलाकार की सबसे खूबसूरत बात होती है कि वो जब अपनी कलम से लिखता है तो उसकी लिखाई जो है उसके शब्दों में जब आ जाती है तो माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। वही आज आप कर रहे हो शालिनी जी, थैंक यू सो मच। सो जितने भी लोग रेडियो पे सुन रहे हैं, आई एम श्योर आपको मैम को सुन के डेफिनेटली मजा आने वाला है। ये तो अभी शुरुआत है, मतलब ये तो कह सकते हैं एक डेमो था ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। तो मैम सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपको हमारे स्टेशन में आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और स्टेशन में आने से पहले ही मुझसे पूछा जा चुका है, लोगों ने मुझसे पूछा आरजे आनंद के साथ रिकॉर्ड करने वाली हो।
0: क्या बात है, मतलब तो आपको उससे पहले नहीं पता था कि आरजे आनंद भी कोई एफएम पर है?
1: नहीं मुझे पता था क्योंकि मैंने सुना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने फैंस भी हैं आपके।
0: मैम ये तो बस कह सकते हैं ना कि जब हम अच्छा काम करते हैं और जब हम मेहनत करते हैं तो वो लोगों को धीरे धीरे पसंद आने लगता है, जैसे कि अभी आपका काम हमारे लिसनर्स को और हमें पसंद आने वाला है। सो मैम मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए थोड़ा सा अपने बारे में कि आपको ये लिखने की क्यूरियोसिटी कैसे आई, कहाँ से आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि लिखना मेरे को जीन्स में मिला है। मेरे मम्मी डैडी भी लिटरेरी है, माँ मेरी लिखती है, बहुत खूबसूरत भजन लिखती है, तो लिखना शायद विरासत में मिला है मुझे, और शायद को हटा देते हैं, डेफिनेटली विरासत में ही मिला है मुझे। और धीरे धीरे वो, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने का शौक भी आपको लिखने की एक कुलाहट देने लगता है।
0: एब्सोल्युटली बिल्कुल
1: मैम। तो पढ़ने के शौक से ही ये शुरू हुआ है, किताबों की खुशबू से ही ये लिखना शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि जब मेरे, जो मैंने अपनी बात इसमें लिखी है कि जब जब कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा, एक्चुअली वही बात है कि जब भी मुझे कुछ ऐसा फील हुआ मैंने उसे लिखा, बस इस तरह लिखना शुरू हुआ है। मैं कोई ट्रेंड या प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, मैं बस मन की बात को लिख पाती हूँ।
0: That's very nice. क्योंकि मैम लिखने के लिए भी आपको फील करना पड़ता है, आपको वो इमोशंस को यू नो कहीं ना कहीं अगर आप कागज पे उतार रहे हो तो उससे पहले आपको वो चीज को अपने जहन में लाना पड़ता है ना। जब तक आप उस फील को फील नहीं करोगी, उस मोमेंट को फील नहीं करोगे, तब तक आप वो लिख ही नहीं पाओगे, है ना। तो इमोशन
1: शब्दों में
0: जान नहीं आएगी, जाएंगी नहीं। एग्जैक्टली, तो वो चीज तो कहीं ना कहीं हर कोई नहीं कर पाता है ना।
1: हाँ, तो ये ईश्वर की कृपा।
0: हाँ एग्जैक्टली, ट्रू, नाइस। वैसे जो ब्यूटीफुल आपकी आवाज है, आप खुद भी इतने ब्यूटीफुल है, नो डाउट।
1: सो
0: थोड़ा सा मैं आपके बारे में ये और जानना चाहूंगा कि मतलब प्रोफेशनली आप क्या करती हैं? आप
1: एजुकेशन आपका? सच बताऊं तो वो सब करती हूँ जिसका डेजिग्नेशन होता है कुछ नहीं।
0: ओह माय गॉड,
1: कहते हैं ना कुछ नहीं करते हैं टाइप, लेकिन मैं बहुत कुछ करती हूँ। वैसे मैं होम मेकर हूँ, मैं काफी सालों तक फोटो एडिटिंग्स में काम करती रही हूँ, वीडियो एडिटिंग्स में भी काम किया है, और अब मैं होम मेकर हूँ, तो मैं 24 घंटे बाद 28 घंटे का काम करना चाहती हूँ। बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहती हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, बुक रिव्यूज करती हूँ, पोइट्री करती हूँ, और ट्रैवल की शौकीन हूँ, जो आपको मेरी कविताओं में भी मिलेगा, पता चल जाएगा।
0: क्या तो बात है, बहुत ही
1: ट्रैवल करती हूँ,
0: बहुत ही बढ़िया। और जब आप नए नई जगह पे ट्रैवल करते हैं तो आपको नया नया कंटेंट भी मिलता है।
1: बिल्कुल, है ना, लिखने की प्रेरणा। और मैं नेचर लवर हूँ तो हमेशा प्रकृति के करीब जाकर वो प्रेरणा लिखने का, जो अंदर से एक मन, अंदर से एक फील, वो सब अपने आप आ जाती है।
0: That's very nice. शालिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और एक स्पेशल सेशन में मैम आई हैं, बहुत सारी चीजें लेकर पूरी प्रिपरेशन के साथ आज वो आई हैं आपको खूब सारा एंटरटेनमेंट का डोज देने के लिए। मैम आगे बढ़ेंगे, क्या स्पेशल सुनाना चाहेंगी इसी बीच आप?
1: तो हम,
0: आपने अपना तारुफ तो करा दिया। यस हाँ, बचपन, एग्जैक्टली, मतलब फ्लैश बैक में लेके जाएंगे आज आप।
1: तो बचपन सभी के दिल के करीब होता है, तो एक छोटी सी नज्म सुनाती हूँ जो आपको बचपन की याद दिला देगी,
0: मतलब फ्लैश बैक में ले जाएगी आज हम सभी को। श्योर मैम।
1: कि बारिश अब भी बचपन साथ लाती है, बारिश अब भी बचपन साथ लाती है, वो कागज की कश्तियां जो पानी में उतारते थे, वो भीगती थी, डगमगाती थी, डूब जाती थी, फिर दूसरी बनाते थे, ये सोचकर इस बार तो तैरी जाएगी, वो भी डूब जाती थी, बनाते थे, कभी उससे बड़ी, कभी छोटी, कभी कागज बदलते थे, पर वो कोशिशें कम नहीं होती थी कभी, वो कश्ती दूर तक जाएगी ये उम्मीद कायम रही जब तक बचपन रहा, वो कश्ती दूर तक जाएगी ये उम्मीद कायम रही जब तक
0: बचपन
1: रहा, बड़े क्या वो खूबसूरत कश्तियां जिंदगी से चली गई, बना तो भी सकते हैं, जाहिर है बना तो अब भी सकते हैं, पर वो जज्बा कहाँ से लाएंगे कि तैरिंग
0: ट्रू,
1: वो जज्बा ही तो था खूबसूरत, वो कश्तियां नहीं थी, वो जज्बा ही था जो बचपन में तैरता था और बड़े होकर
2: डुबो दिया हमने।
0: अरे बाप रे, मतलब मैम ये मुझे लग रहा है कि आपने ना एकदम असलियत से रूबरू करा दिया है हमें।
1: एग्जैक्टली
0: मतलब एकदम सच्चाई का आईना दिखा दिया आपकी छोटी सी चार लाइनों ने। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही धमाकेदार आपने सुनाया। अच्छा ये आप खुद से लिखते हैं?
2: जी ये सब मेरी खुद की
0: आपकी खुद की लिखी हुई है
2: जी।
0: क्या बात है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लिखने के लिए सबसे बड़ा जज्बा तो आपका यही होना चाहिए कि भाई आप पहले उस चीज को जाओ, उस चीज को देखो, उस चीज में घुसो, उसके बाद फिर उसे पन्नों पे उतारो। एंड आई थिंक इट्स नॉट इजी मैम।
1: नहीं तो जो आपने जिया है,
0: हाँ,
1: उसे जो आपने देखा है, जिया है, जो आप महसूस कर सकते हो वो आप पन्नों पे उतार सकते हो।
0: एब्सोल्युटली,
1: अगर आपने जीते समय महसूस नहीं किया, हाँ, अगर आप डूबे नहीं ऊपर ऊपर से निकल गए, हाँ, तो फिर लिखना मुश्किल है।
0: करेक्ट करेक्ट, वही। शालिनी जी के साथ ढेर सारी बातचीत जो है चल रही है आज इस प्रोग्राम में, और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है सेशन चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैम बातचीत के बीच बीच में अगर कुछ अच्छे गीत संगीत हो जाए तो प्रोग्राम और भी खूबसूरत हो जाएगा। तो कोई एक ऐसा गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहती है, जो आपके दिल के बहुत करीब है, कौन सा गीत है जो आपको सुनवाया जाए?
1: बारिश से मुझे वो याद आ गया, रिम झिम रिम झिम, रुम झुम झुम झुम,
0: वाओ ब्यूटीफुल।
1: भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं, सुनवा सकते।
0: क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैम ने गाया, बहुत मजा आ रहा है। आप तो मुझे लग रहा है कि मल्टी टैलेंटेड है, अच्छा बोल भी रहे हैं, अच्छा लिख भी रहे हैं और अच्छा गा भी रहे हैं भाई साहब। बहुत मजा आ रहा है, नो डाउट कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा एवरीबॉडी। फिलहाल गाने की बात चली तो पहले ही गाना सुनेंगे, उसके बाद वापस मिलेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन। इस गाने के बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 पे. आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को. लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या गाना था यार. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस गाने को सुन के ना मुझे तो एकदम वो बारिश वाला वेदर याद आ गया. इतना ब्यूटीफुल ट्रैक जिसको सुनते ही हम फ्लैश बैक में चले गए. वेल, आगे बढ़ेंगे. हमारे साथ शालिनी मैम मौजूद है हमारे स्टूडियो में, जो आपके साथ ढेर सारी बातचीत कर रही है और लिखकर लाई है अपने दिल के जज्बात, जो सीधा आप तक डिलीवर कर रही है हमारे स्टेशन के माध्यम से. आई एम सो ग्लैड मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना मजा आ रहा है मुझे सेशन को एंजॉय करते हुए आपके साथ. मतलब मैं कैसे बताऊं, मुझे खुद को भी नहीं पता, बट बहुत अच्छा लग रहा है. एंड मैम, अच्छा मैं आपकी कविताओं के बीच में और आपकी शेरो शायरी जो आप रहे हो बहुत तो है ही अल्टीमेट, नो डाउट. इसी बीच मैं, मेरी खुद की एक गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है कि आपने कई बारी देखा होगा कि आजकल जेंजी को ना ऐसे एकदम से हम किसी को देखते हैं फर्स्ट टाइम में, हमें ऐसा लगता है कि भैया हमें तो प्यार ही हो गया. मतलब आई डोंट नो लव है या फिर अट्रैक्शन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम में तो प्यार, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में तो नहीं है. जैसे वो अट्रैक्शन जिसे हम कह सकते हैं वो हो सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्ट होना. तो जैसे हम फर्स्ट टाइम में किसी को देखते हैं कॉलेज में, मार्केट में, कहीं पे भी, आजकल के जेंजी का है ही ये हाल. अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ, उसको प्यार हो गया है, उसके लिए कुछ है आपके पास?
1: बिल्कुल. और ये जेंजी का नहीं है, ये तो हमेशा से लव एट फर्स्ट साइट तो शायद हमेशा से चलता आ रहा है. लेकिन मैं तो ओल्ड स्कूल हूँ, तो अगर आप पहले देखें तो सॉरी, तो अक्सर ऐसा भी होता था कि हमने कुछ ऐसा देखा कि हमें अट्रैक्शन हो गया या हमें ऐसा फील हो रहा है कि बस यही तो चाहिए था, और हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है अभी.
0: ठीक है, तो बस हम इमेजिनेशन में खोए हुए हैं.
1: हाँ, तो आप सुनिए, आप इमेजिन करिए, आंख बंद करिए और मेरे लाइनों के साथ साथ चलिए.
0: ठीक है.
1: तो कहा है कि पहली बार देखा उसे नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए. पहली बार देखा उसे नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए. गुलाबी सी साड़ी शायद हाथ में थाम रखी थी, मखमली पांव झांक रहे थे. एक पांव में काले धागे में पिरोए काले मोती पड़े थे, नजर से बचाने के लिए होंगे शायद. बार बार भीड़ में गुम जाती थी वो, मैं उन्हीं पांव का पीछा करता फिर खोज लेता था उसे. उसके पांव मेरी आंखें, मेरी आंखें उसके पांव, लुका छिपी खेल रहे थे जैसे. गुम हो गई वो और मैं चेहरा ना देख पाया था, बस वो पांव आंखों में लिए घर लौट आया था. रात भर वो पांव जहन में चहलकदमी करते रहे, रात भर वो पांव जहन में चहलकदमी करते रहे. सुबह होते ही फिर वही मंदिर की सीढ़ियां और वही मैं. हर रोज सुबह शाम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, दुआएं मांगने लगा हूं, बंदगी सीखने लगा हूं. इसे मोहब्बत कहते हैं या इबादत?
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार मैम. क्या खूब आपने लिखा, मजा आ गया इसको सुनकर, मजा आ गया वाकई में. आई एम श्योर दोस्तों आपको भी डेफिनेटली मजा आ ही रहा होगा. कॉन्वर्सेशन इतनी अमेजिंग चल रही है, बातें इतनी ब्यूटीफुल हो रही है, तो ऑफकोर्स मजा तो आना बनता है. वेल, आगे बढ़ते हुए मैम आपका फिर से वेलकम बैक करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो है आप हमारे लिसनर्स को तमाम सारी अपनी लिखी हुई बातों से रूबरू करा रही है, वो ताजा तरीन बेहतरीन बातें जो है आप हमें वापस याद दिला रही है. जो छोड़ के आ चुके होंगे बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो पे, जो आज अपनी उन यादों में वापस चले जाएंगे. बिल्कुल मैम, और मुझे लगता है कि यही एक खूबसूरत बात होती है इन कविताओं की, इन पोइट्रीज की, कि ये हमें फिर से जिंदा कर देती हैं. अगर हमारी कुछ चीज हमें खो भी गई है ना, मिस हो भी गई है, अगर हम इनको सुनते हैं तो लगता है कि वाह, हमारे सामने पूरी पिक्चर आ जाती है.
1: बिल्कुल.
0: तो ये खूबसूरत एहसास है, और जो आज वो एहसास को आप जगाने के लिए यहाँ आ गई है,
1: थैंक यू सो मच.
0: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड मुझे लगता है कि गाइस इस तरह का टैलेंट ना हर किसी में नहीं होता, और जिसमें होता है फिर तो बल्ले बल्ले. और यार मैम आपका गॉड गिफ्ट है आई थिंक.
1: हाँ बिल्कुल,
0: बस आपने इसको एनहांस कर दिया है,
1: इसको एनहांस कर दिया है. बिल्कुल, मैंने कहीं कुछ सीखा नहीं है, और बचपन से स्टेज पे मेरी मम्मी मुझे भेजती रही कुछ कुछ चीजें सिखा के, मुझे कविता पढ़ना सिखाया, मुझे बाकी चीजें डिबेट सिखाई, और उसके बाद वो चीज मैं शायद पॉलिश करती रही, उन चीजों को वक्त देती रही, और जिसमें आपका दिल लगता है ना, True. वो चीज अपने आप पॉलिश हो जाती है.
0: एब्सोल्युटली, जिस चीज के लिए आप डेडिकेटेड होते हो, पैशनेट होते हो ना, तो फिर आपका पोटेंशियल, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अपने आप बाहर आने लगता है. और आप फिर उसमें आपको ये भी नहीं लगेगा मैं इससे बोर हो रहा हूँ, आप इंजॉय करोगे, एंजॉय लॉट. आप जितना ज्यादा उसमें घुसोगे उतना आपको मजा आएगा. और जिस चीज में आपको मजा आता है ना, वही चीज अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर भी मजा आता है.
1: बिल्कुल,
0: है ना.
1: और जैसे कि अभी आपने कहा था कि कविताएं जैसे पीछे ले जाती हैं कविताएं, तो मैंने भी ऐसे लिखा था कि कविताएं जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे सब चिट्ठियां हैं.
0: क्या बात है.
1: तो वो चिट्ठियां जो या तो अधूरी रह गई और या अपने पते तक पहुंच नहीं पाई.
0: करेक्ट.
1: तो प्रेम हो या नाराजगी हो, इजहार हो, मनोहार हो, समर्पण हो, दर्द हो या टीस हो, या आक्रोश हो, इन सबको किसी ना किसी पते पर पहुंचना था.
0: करेक्ट.
1: लेकिन ये रास्ते में खो गए. अगर ये सब अपने पते पर पहुंच जाते तो इनका सफर खत्म हो जाता.
0: खत्म हो जाता
1: और वजूद भी.
0: एब्सोल्युटली.
1: इन्हें कोई मोड़ मार के हवाई जहाज बना के उड़ा देता, कोई इसमें चना मुरमुरा खा लेता.
0: करेक्ट.
1: कहीं ये कूड़ेदान में जाती और कहीं अलाव में जल गई होती. हो सकता है कुछ वक्त के लिए इन चिट्ठियों को संभाल लिया होता किसी ने, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली इनका वजूद खत्म होना ही था.
0: होना ही था.
1: तो वो चिट्ठियां जो किसी पते पर पहुंच नहीं पाई वो कविताएं हो गई. और ये कविताएं आसमान में लटके सितारों की तरह टिमटिमा रही हैं, स्याह रात में लाखों जुगनुओं की तरह जगमगा रही हैं, महक रही हैं जैसे हिरन में कस्तूरी महकती है, चहक रही हैं जैसे भोर में चिड़ियां चहकती हैं, महफिलों की शान और तन्हाइयों की जान हो गई ये कविताएं, लाखों दिलों की मेहमान हो.
0: ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, क्या बात है. लाखों दिलों की मेहमान हो गई, क्या बात है, बहुत बढ़िया. और आज की हमारी जो मेहमान है वो शालिनी जी हैं, और जो हमारे साथ लगातार बहुत अच्छी अच्छी बातचीत कर रही हैं. और देखो ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है. बहुत मजा आ रहा है. टू बी वेरी मैम, बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है जब हम टाइम देख रहे होते हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि 20 मिनट कैसे हो गए, अनबिलीवेबल. इस कॉन्वर्सेशन को चलते चलते प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा. थोड़े से कुछ और मैम के किस्से और कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें भी सुनेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम जो है पूछेंगे मैम से. बट उससे पहले मैम हम सोच रहे हैं कि ये सब बीच में एक और एंटरटेनमेंट का अगर तड़का लग जाए तो मजा आ जाएगा. एक और खूबसूरत सा गीत जो आप चाहती हैं हमारे शो को एक बार तो ये सुनवा देना चाहिए, आनंद मजा आ जाएगा.
1: तो वो सुनाते हैं

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: हेलो जी, कैसे हाल चाल है?

यस, आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं. ऑफ कोर्स उनकी बातें आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होंगी. आई एम श्योर बहुत सारी उनकी कविताएं आपको फ्लैशबैक में भी लेकर चली गई होंगी. आज हमारे साथ शालिनी जी स्टूडियो में मौजूद हैं, ढेर सारी बातचीत वो कर रही हैं. लेकिन मैं एक चीज उनसे पूछना

0: ट्रैवलिंग में जब भी कहीं ट्रैवल करने जाते हैं और वो अगर माउंटेन वाला एरिया मिल जाए तो मजा आ जाता है, माइंड ब्लोइंग, मतलब
1: एक नंबर की घुमक्कड़। अरे क्या बात है, आपको सुनाती हूँ जो मैंने अपनी पहाड़ की घुमक्कड़ी के दौरान महसूस किया है वो, और अब अगर सुनने वाले भी आंख बंद करेंगे तो मुरादाबाद
0: पहुंच ही जाएंगे, पहाड़ पर पहुंच जाएंगे। तो चलो हम लोग फील करते हैं,
1: बिल्कुल
0: पहुंचते हैं पहाड़ों की दुनिया में।
1: इन पहाड़ों में बंजारापन मेरे लिए सुकून की परिभाषा है। सूरज से पहले अरुणा का आना, जैसे प्रियतम के लिए रेड कार्पेट बिछाना, हवाओं में बहता चिड़ियों का संगीत और बादलों का मखमली शामियाना, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां और कदमों का खुद ब खुद सद के चलते जाना, सुबह जैसे अंगड़ाई लेकर जाग रही हो और मुझे अकेला पाकर कविता का मुझसे बतियाते हुए साथ चलते आना, घरों से उठते धुएं का सर्द मौसम के साथ मिलकर हवा में तस्वीरें बनाना और मेरा इस सारे आलम में खुद के भीतर बे आवाज उतर जाना, सुबह का दोपहर को लांघ कर बेसब्र हो शाम से मिलने चले आना और शाम का खुद आसमान में रंग बनकर बिखर जाना, आसमां का सारे रंगों के साथ नदी में डुबकी लगाना और नदी का लहराते बलखाते सारी धरा को धानी ढंग जाना, कुदरत की गलवैयां डाले कविता का सारे रंगों के साथ मेरे मन समा जाना और मेरा दुआ करना कि यूं ही फूले फले ये पहाड़ ये नजारे, कि बस होता रहे पहाड़ों में आना जाना।
0: क्या बात है, बस होता रहे पहाड़ों में आना जाना। बिल्कुल, और ये आना जाना तो बिल्कुल लगा रहेगा मेरे दोस्त। अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं तो बस आप मैम की ये चार पंक्तियां जरूर याद कर लीजिएगा, शायद आप जब जब जाएंगे तो आपको ये पंक्तियां याद आती रहेंगी। एंड मुझे लगता है कि इन पंक्तियों से तो सच में हम सब पहाड़ों में पहुंच ही गए मैम, आज बहुत मजा आ गया। और आपकी इन लाइनों से मुझे लगता है कि वाकई में आप एक नंबर की घुमक्कड़ तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरीके से लिखा है ना वो बिल्कुल हमें ओरिजिनल फील दे रहा था, लग रहा था कि हम वहां पहुंच चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, एंड आई एम श्योर जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी जरूर मजा आया होगा। सो मैम अब चलते चलते कोई प्यारी सी चार पंक्तियों के माध्यम से कोई एक सोशल मैसेज, कुछ अच्छा विचार जो आप रखना चाहें हमारे लिसनर्स को, जो आप अपने कविताओं के कहानियों के माध्यम से बताना चाहें, कोई संदेश आप देना चाहें इस प्रोग्राम के माध्यम से।
1: बिल्कुल, तो एक छोटी सी बात कहूंगी और ये है ऑर्गन डोनेशन के बारे में।
0: ब्यूटीफुल,
1: सुनिए प्लीज। रूह जब आजाद हो जिस्म के इस पहरन से, ये बूटी ये झालर ये सलमा सितारे ये मोती नगीने ये गोटा किनारे, ये सब हमारी आंखें हमारे दिल हमारी किडनी के बारे में है। ये बूटी ये झालर ये सलमा सितारे ये मोती नगीने ये गोटा किनारे, जलने न पाए छुटा लेना सारे, कि इनके लिए हैं लंबी कतारे, किसी का दिल इंतजार में दिल के हमारे, और किसी की नज़र के इंतजार में खुद नज़ारे, क्यों मिट्टी मिलाएं लुटो ये सारे, कि जीते रहेंगे तुम्हारे हमारे,
0: जीते रहेंगे तुम्हारे हमारे। सो नाइस मैम, थैंक यू सो मच, आपसे बातचीत करके सच में बहुत मजा आया, एंड आई एम श्योर ये जितने लोगों ने सुना होगा उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा डेफिनेटली।
1: थैंक यू सो मच,
0: बातें यहाँ रख के
1: अपने
0: लिसनर्स के साथ आपको भी बातचीत करके डेफिनेटली मजा आया होगा, क्योंकि आज वो लिसनर मेरे नहीं आपके भी हो गए, क्योंकि इतनी मनमोहक वाली आवाज है आपकी, इतनी अच्छी आप बोल रहे हैं, तो यू नो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड एक कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा थॉट या कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है आप कहना चाहे मुरादाबादी से तमाम लोग आपको सुन रहे हैं?
1: मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये जितने भी क्रिएटिव आर्ट हैं, जैसे आप सुन रहे हैं, चाहे वो लिखना है चाहे वो गाने हैं या कुछ भी, जो भी क्रिएटिव आर्ट हैं, वो आपको एक जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का सलीका सिखाते हैं, तो लगे रहिए इसमें और एंजॉय करते रहिए।
0: थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत अच्छा लगा, एंड जल्दी फिर आपसे दोबारा मिलेंगे कुछ और नई बेहतरीन बातों के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल,
1: थैंक यू सो मच,
0: एंड गाइज आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, छोड़ के जा रहा हूँ कुछ अमेजिंग ट्रैक के साथ, फिर होगी मेरी आपकी मुलाकात, तब तक के लिए कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
5: अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
6: It is really our responsibility.
7: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
6: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
5: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
8: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
9: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
10: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
9: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
11: We had 26 delegates from
12: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
9: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
13: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
9: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजानी स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
14: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
9: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
15: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
9: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: EMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिल। सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग। आज की रात हम बात करेंगे उन पलों की जब दिल ने कहा था बस यही है जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। और आज 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपके अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे वही बातें होंगी जो दिल से निकली हुई होंगी। पूरी उम्मीद है घर जाते समय इधर उधर झाका झुकी चल रही होगी कार से कि भैया कौन जल्दी पहुंच रहा है और कौन मेरे से पीछे है, और कोई ना कोई तो मेरे साथ वाला है जो कह रहा होगा भाई जल्दी जल्दी चल, कोई पार्टी भी होने वाली है। तो अभी तक हमारी बात से चल रही थी कि कौन सी ऐसी खुशी है जो आपको लगी कि हाँ यार यही सबसे बड़ी खुशी है। और हमारे साथ हमारे लिसनर्स के भी अब ज्वाइन करने का टाइम हो गया है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और अपने दिल की कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं कि हाँ लगा कि यार आज सबसे ज़्यादा खुशी हुई है मुझे, तो ज़रूर शेयर करें 9837896896 पे। हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं और देखते हैं उनकी दिल की बात क्या है। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार साहब, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार जी, मेरा नाम मोबीन है।
0: मोबीन जी, क्या काम करते हैं आप?
1: मैं पेंट का काम करता हूँ, मकानों का पॉलिश वगैरह, पॉलिश पेंट वगैरह ये मकानों का।
0: सही है साहब, आप भी मकान चमकाते हैं।
1: जी मकान चमकाते हैं जी।
0: बहुत बढ़िया। और मोबीन जी बाकी सब सही, मौसम सही है आपकी तरफ?
1: जी मौसम तो सही हो रहा है, गर्मी हो रही बहुत।
0: गर्मी हो रही है आपकी तरफ? हाँ साहब, हमने तो इसलिए पता नहीं चल रहा है ना क्योंकि कभी एसी कभी कूलर ठंडी हवा ले ही रहे हैं इस गर्मी में।
1: आपको तो पता चलेगा ही
0: नहीं। तो आज मोबीन जी हमारी बात चल रही थी कि ऐसी कौन सी खुशी आपको अब तक की टाइम में आपको इतनी अच्छी लगी कि हाँ यार यही सबसे अच्छी खुशी है जिंदगी की जो मुझे अभी मिली है, ऐसी कोई खुशी वाली बात बताइए आप।
1: ऐसी कोई खुशी क्या खुशी हो सकती है?
0: शादी हो गई थी आपकी? शादी हो गई है साहब? नहीं,
1: शादी तो हो गई, बच्चे हैं, शादी तो।
0: हाँ तो सर, सबसे ज्यादा खुशी तो लगता है मुझे वही होगा, आपको लगा होगा कि आज सबसे ज्यादा जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है मेरी।
1: बस बस बस।
0: उसके अलावा और कोई खुशी?
1: अब क्या खुशी हो सकती है छोटे आदमी के लिए, मजदूर आदमी के लिए क्या
0: क्यों नहीं हो सकती है साहब? कभी कभी कभी कभी पेंट करते हुए कोई ना कोई तो खुशी याद आ जाती होगी।
1: हाँ वो कभी कभी खुशी हो जाती है, कोई मौका ऐसा होता है, कोई आदमी साथ में काम करने वाले होते हैं तो कोई खुशी का मौका आ जाता है।
0: खुशी का तो सर कोई बात ही नहीं, जैसे कभी होता है ना पहली आपकी कमाई या आपका पहला प्यार, कोई ना कोई कुछ ऐसा याद आ जाता है, या कोई घर में नया नन्ना मेहमान आया होगा
1: जी,
0: या
1: जी।
0: कोई तो ऐसा सपना देखा होगा जो भाई सच हो रहा है, तो खुशी तो सर उसके तो कोई कहते है ना वो नहीं है, मेजरमेंट नहीं है
1: जी, जी। खुशी का तो कोई ऐसा कई काम टेंशन इतनी हो जाती है छोटे आदमी को, खुशी का तो इतना नंबर ही नहीं आता कोई।
0: सर टेंशन ना कभी भी ये देख के नहीं आती कि कोई छोटा आदमी है बड़ा आदमी है या कोई मिडिल क्लास आदमी है,
1: कोई खुशी होती है ऐसी तो ध्यान पे।
0: हाँ
1: आदमी ध्यान नहीं रखता उस चीज का,
0: ये बात तो है। तो बताइए ना कोई तो खुशी बताइए ऐसी, पहले बच्चे की खुशी बता दीजिए कि वो सब उस समय कैसा लगा आपको
1: खुशी। हाँ बच्चे की खुशी बढ़िया हुई थी, लड़की हुई थी हमारी,
0: बहुत ही अच्छी बात,
1: बहुत बढ़िया काम हुआ, ये भी खुशी थी।
0: और बताइए क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: ये मैं गाना सुनना चाहता हूँ, जैसे वो बदल गई है दुनिया, बदल गया है जमाना,
0: बदल गई है दुनिया, बदल गया है जमाना।
1: जी हाँ जी,
0: तुम मत बदल जाना।
1: हाँ तो ये गाना थोड़ा अच्छा लगता है, दुनिया पूरी चेंज हो गई है, बदल गई है,
0: दुनिया तो साहब घूम रही है, दुनिया तो गोल है ना, तो जब तक बदलेगी तब तक तो। हाँ चलिए मोबिन साहब, आपकी फरमाइश पूरी करी जाएगी, बदल गई है दुनिया, बदल गया है जमाना।
1: जी जी जी,
0: अभी करते हैं इसे प्ले।
1: थोड़ा अच्छा लगता है गाना ये, और एक गाना है जीवन धारा का वो भी अच्छा लगता है, चलो अब तो एक ही सुनाया जाएगा, एक ही सुनेंगे।
0: क्यों नहीं साहब, दूसरा भी सुनाएंगे कल फिर से, आप दिल से दिल तक अखिल संग में फिर से कॉल करिएगा, आपका कल का दूसरा गाना भी प्ले होगा।
1: जी जी कल मिलेगा, कल दूसरा सुन लेंगे। हाँ
0: ठीक है मोबिन साहब।
1: जी जी ठीक,
0: नमस्कार जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मोबिन साहब जो कह रहे थे कि इन्हें खुशी एक समय बहुत हुई जब उनके पास पहली बिटिया उनके हाथों में आई, उनके पास उनका पहला बच्चा आया, तो बहुत ही कहते हैं ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ मेरी कोई मुराद थी वो पूरी हुई। तो बहुत अच्छा लगा मोबिन साहब, आपने अपनी खुशी ये बताई, और बहुत ही दिलदार और बहुत ही जानदार व्यक्तित्व हैं आपका भी। आपने बहुत खुल के अपने दिल से निकल के बात बोली, थोड़ी सो हिम्मत चाहिए होती है दोस्तों जब अपने दिल की हम बात करते हैं और दूसरों के दिल तक उस बात को पहुँचाते हैं। कहते हैं कुछ लम्हे वक्त की किताब में ऐसे दर्ज हो जाते हैं जो उम्र भर चेहरे पर मुस्कान बनकर रह जाते हैं। खुशी की कोई कीमत नहीं होती है दोस्तों, खुशी की कोई कीमत नहीं होती दोस्तों, बस कुछ पल दिल के बेहद करीब हो जाते हैं। तो ऐसे ही आज मोबिन साहब ने अपने दिल की बात बोली, और सुनते हैं उनकी पसंदीदा गाना और मिलते हैं दोबारा इस गाने के बाद 9837896896। और हाँ, कोई हो या दिल की बात तो बोलो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कम से कम कुछ तो निकले बाहर दिल से भी।

0: बिना पायल के ही बजे घुंघरू। वेलकम बैक टू 89.6 मेगाहर्ट्ज पे और आपका अपना मुरादाबाद एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। चलिए हमारे साथ, हमारे पास हमारे लिसनर्स के कॉल आने चालू हो गए हैं और बात करते हैं हमारे अपने दूसरे लिसनर से। नमस्कार
1: जी,
0: कैसे हैं आप? अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए।
1: जिला मुरादाबाद, ग्राम देवापुर, दल सिंह सैनी।
0: सैनी साहब आप कैसे हैं?
1: बस बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाइए।
0: सब बढ़िया। और क्या हो रहा है इस समय, मौसम कैसा है आपकी तरफ भी?
1: मौसम कल से नॉर्मल है। खैर,
0: कल से नॉर्मल है।
1: हाँ जी।
0: तो सैनी साहब, आज जो हमने शो में बातें चल रही हैं हमारी, वो ये बात चल रही है कि कोई एक ऐसा पल जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई हो या कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ आज सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है या मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब व्यक्ति हूँ, कोई ऐसा पल बताइए हमारे सभी श्रोताओं को।
1: देखिए, जितने भी श्रोता हमारी बात को सुन रहे हैं, सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: क्या बात है
1: जी। और कुछ घड़ी घड़ी कर रही है, मौसम और भी ठंडा हो जाएगा।
0: ये तो है,
1: काफी गर्मी झेलती है, झेल ली हम तुमने।
0: हाँ, गर्मी तो अभी काफी झेल ली है, मगर अब धीरे धीरे मौसम जो है बरसात नुमा होने वाला है।
1: हाँ जी, आज 24 हो गई है।
0: हाँ, 24 हो गई, ये बात भी आपने सही बोली है। आज हम तो कुछ और ही सोचे बैठे थे, मगर आपने बता दिया आज 24 हो गई है, तो बहुत अच्छा लगा।
1: पूरा जून खत्म हो चुका है,
0: जून का महीना खत्म होने वाला है। तो अभी बात मुद्दे पे आइए, आप वो बात बताइए जो हम सब सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा खुशी का पल था, कौन सा खुशी का दिन था, आपको लगा कि यार आज सबसे ज्यादा खुश हूँ मैं अखिल।
1: नहीं देखिए जी, वो गाना किसी और मेरे भाई साहब का था।
0: गाने की बात नहीं हो रही है अभी, गाने की तो अभी बाद में बात होगी, पहले आप ये बताइए कोई ऐसा पल है आपके पास जो बताना चाहेंगे सभी को कि या तो जब आप पहला कोई घर में बच्चा आया हो या आपकी शादी वाला दिन आपको बहुत खुश वाला दिन लगा हो।
1: देखिए, मेरे पास 3 बच्चे हैं भगवान के दिए हुए, बड़ी बेटी है, 2 बेटे हैं, तीनों स्कूल जाते हैं।
0: क्या बहुत बढ़िया।
1: ऊपर की तरह काम करता हूँ जी, बोतल वगैरह, गिलास वगैरह बनाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप तो अब आप बताइए ना, कुछ तो ऐसा बताइए हमारे सभी श्रोताओं को।
1: और तो मैं ज्यादा बहुत सी बातें याद नहीं, मैं आपको क्या बताऊं।
0: चलिए चलिए, कोई बात नहीं, अब आप अपना गाना ही बता दीजिए फिर, अब हम समझ गए हैं आपको, अब खुशी के मारे आप सब कुछ भूल गए हैं
1: जी।
0: मैं कह रहा हूँ आप भी खुशी के मारे सब कुछ भूल गए, तो आप गाना ही बता दीजिए, वो तो याद होगा आपको,
1: आपको।
0: पिया सावन का मेला। ठीक है, ये आपकी फरमाइश पूरी करते हैं सर। सर बहुत अच्छा लगा आप हमसे जुड़े और आपने अपनी फरमाइश रखी हमारे साथ।
1: मैं आपका प्रोग्राम सुबह भी सुनता हूँ, दोपहर में भी सुनता हूँ, मगर मैं क्या करूँ, छोटा आदमी, छोटा ही फोन है, एयरफोन में सुन लेता हूँ।
0: सर आदमी कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ये तो कहने कहने की बातें हैं, और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप हमारे लिए दिल से जुड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: अच्छा, मैं राज भैया से बात करता था, लगभग दिसंबर के महीने में जुड़ा हुआ हूँ मैं।
0: हाँ जी हाँ जी, चलिए हमें बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए सर और अपने दिल की बात जरूर बताते रहिएगा।
1: बताऊंगा, कोई दिक्कत होगी तो।
0: ठीक है सर, तो ये थे हमारे साथ सैनी साहब मुरादाबाद से ही, और इन्होंने भी अपनी बातें बताई कि जो है मैं हमेशा खुश रहता हूँ और खुशी के साथ आपके साथ ये गाने से जुड़ा हुआ हूँ। इनकी फरमाइश में ही लगता है मुझे इनकी सारी खुशी छुपी हुई रहती है कि कब मेरी फरमाइश का गाना चलेगा एफएम मुरादाबाद पे और मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए साहब, इनकी खुशी को थोड़ा सा पूरा करते हैं और एक बढ़िया सा स्पिरिचुअल सॉन्ग भी सुनते हैं।

0: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।

0: सीता कश्यप मुरादाबाद से, और आज हमारी शादी की सालगिरह भी है 15वीं। क्या बात है साहब, आपकी 15वीं जो है शादी की सालगिरह है, उसकी बहुत बहुत बधाई। आप ऐसी ही शादी की सालगिरह मनाते रहें और कभी कभी हमें भी FM मुरादाबाद की टीम को ही बुलाते रहें। और एक रिक्वेस्ट करिए उन्होंने गाने की, अभी एक गाना तो आप लोग गैस करिए, गाना नहीं बताऊंगा मैं, हाँ मगर ज़रूर ये गाना ज़रूर प्ले करेंगे आपके लिए। और एक मैसेज और आया हमारे पास अंकित जी का रामपुर से, वो ये कहते हैं, जब मेरी पहली सरकारी नौकरी लगी थी, मेरा चयन हुआ था, तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन था। तो अंकित जी पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपने एक अच्छी जॉब अचीव करी, और सच में वो खुशी वाला दिन होता ही ऐसा है जब आपको वो लगता है कि हाँ मैंने कुछ जो है पाया, जो मैंने सपना देखा था उसे मैंने निभाया, तो उसका खुशी वाला दिन तो अलग ही महसूस होता है। और सभी के जिंदगी में एक एक बार ऐसा कोई ना कोई दिन ज़रूर आता है जिस दिन उसे लगता है, फील होता है कि आज मैंने कुछ करा है यार, कुछ अलग ही किया है। दोस्तों खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं मिलती, कभी किसी पुराने दोस्त का फ़ोन आ जाए तो भी बहुत खुश हो जाता है बंदा, कभी परिवार के साथ बिताया गया समय वो भी उसे बहुत खुशी दे देता है, और कभी किसी अपने का मैं तुम पे गर्व करता हूँ कह देना भी दिल को सबसे ज़्यादा खुशी दे जाता है। हमारे साथ हमारे एक लिसनर जुड़े हैं आमिर जी, चलिए उनसे बात करते हैं उनकी दिल की बात को। नमस्कार आमिर जी, कैसे हैं आप?
1: जी नमस्कार सर, मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे?
0: बढ़िया सर, कहाँ से बोल रहे हैं आमिर जी आप?
1: जी सर मैं रहमत नगर गली नंबर 1 से बात कर रहा हूँ मैं, और बताइए सर।
0: सर गली नंबर 1 ही है रहमत नगर में या 2-3 गलियाँ और हैं?
1: जी एक ही है, मैं साबुन फैक्ट्री के पास से बोल रहा हूँ, अहमद रजा मस्जिद के निकट।
0: अच्छा अच्छा, तो कभी गली 1 नंबर बंद हो जाए तो कोई पीछे से रास्ता है जाने का आने का?
1: जी रास्ते तो सर कई हैं, मतलब गली नंबर 1 में से काफी रास्ते हैं, कुछ रास्ते न्यू भी मुझे पता लग गए हैं जिधर से जा सकते हैं।
0: तो बताइए, आज आपको पता ही होगा आज हम किस विषय पे बात कर रहे हैं, तो बताइए आपका भी कोई खुशी का पल, खुशी का दिन जो आपको कहते हैं ना कि एकदम यादगार रहा और आपको उस दिन बहुत ही खुशी महसूस हुई।
1: जी जी सर, वो खुशी का पल मेरे लिए वो था सबसे ज्यादा, जो मैंने जब मैंने इंटर किया था अब, तो उस समय पे मैं घूमने जा रहा था, मुझे बिलीव भी नहीं हुआ एक मिनट को, जब मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, बोले कि तुम पास हो गए हो। जी पहले तो स्टार्टिंग में हमारी सिस्टर ने मतलब कि हमें झूठ बोला, बोले कि फेल हो गए। तो मैं फौरन जब उन्होंने मेरे पास में साइन किया तो मैंने चेक किया, सब छोड़ता हुआ डायरेक्ट नीचे पहुंचा, मैंने देखा तो वहाँ पास लिखा था, मैं बहुत खुश हुआ।
0: तो उस दिन क्या
1: मेरे लिए सबसे अच्छा पल?
0: उस दिन आपने सेलिब्रेट कैसे किया? दोस्तों को पार्टी दी, जो या जो दोस्त फेल हो गए तो उनके पास जाके उनको मोटिवेट किया, भाई आज जब मैं पास हो सकता हूँ तो तू भी अगली बार पास हो जाएगा।
1: जी जी जी जी, दोस्त वगैरह की भी कॉल आई थी, दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, मैंने कहा मेरा सही रहा, कुछ फेल भी हुए थे तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करिएगा, ये बात मेहनत करते रहिए।
0: बिल्कुल सही बात कही। और आमिर जी मैं आपको एक बात और बताऊं कि कहीं कहीं ना आपको ये जो मार्क्स हैं ये डिसाइड नहीं करते आपको कि आगे क्या करना है, कभी कभी आपका काम, आपकी सोच और जिस मन से आप उस काम को कर रहे हैं वही डिसाइड कर देता है कि हाँ आगे आके आपको कितना अच्छा नाम करना और काम करना है।
1: जी बिल्कुल सर।
0: तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जी सर आज मैं दोस्ती मूवी का सॉन्ग, टाइटल सॉन्ग सुनना चाहूंगा, सारी खुशी तेरे दम से, सोनू निगम जी की आवाज में यही सॉन्ग सुनना चाहूंगा।
0: क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं साहब, आप किसी अपने दोस्त को ये डेडिकेट भी करना चाहेंगे जो आपके साथ हर पल आपके साथ खड़ा रहता है?
1: मैं ये अपनी सिस्टर को डेडिकेट करना चाहूंगा, खासतौर पर हमारी सिस्टर को, ये मूवी भी बहुत ज्यादा पसंद है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो कहते हैं कभी कभी अपने ही परिवार में, अपने भाई बहन में से कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके साथ आप कहते हैं सारी यादें अपने साथ रखते हैं, और वो आपको भी बहुत संभाल के आपकी बहुत केयर करते हैं, मतलब आप नसीब वाले हैं, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आप अपनी सिस्टर को इतना अच्छा गाना डेडिकेट कर रहे हैं और उन्हें एक बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, बहुत अच्छा। और बहुत ही कहते हैं ना तालियां, अभी मैं तालियां बजा तो नहीं सकता मगर तालियां आपकी सिस्टर के लिए।
1: ओके थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: चलिए आमिर साहब धन्यवाद आपसे हमारे जुड़ने के लिए।
1: ओके नमस्कार सर।
0: नमस्कार आमिर। तो ये थे हमारे साथ आमिर साहब जिन्होंने अपने दिल की बात रखी, और सच में 12th पास करना और उसके बाद ये पता होना यार मैं तो पास हो गया, तो ये एक अलग ही खुशी होती है। इस खुशी को कोई बयान नहीं कर सकता। हाँ, मगर आजकल

समय में लोगों को ये रहता है, बच्चों को ये रहता है यार कि मैं परसेंटेज कम आ गए या मेरे मार्क्स कम आ गए या इस सब्जेक्ट में मैं एक नंबर से 100 नहीं लेके आ पाया, तो वो एक अलग चीज़ है। मगर जो बेसिक जो खुशी होती है ना, वो सबसे पहले खुशी ये होती है कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया, कुछ क्लियर कर लिया। तो बहुत अच्छा लगा आमिर जी, आपने अपने दिल की बात रखी। और कहते हैं ना कि दौलत से घर बनता है पर खुशियाँ रिश्तों से आती हैं। जो अपने साथ खड़े हो वही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। तो दोस्तों ये आमिर जी की फरमाइश को हम करते हैं पूरा, और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, इस गाने वाले ब्रेक के बाद। और हाँ, हमारे साथ जो हमारे साथ लिसनर जुड़े थे जिनकी आज सालगिरह थी, तो उनका भी इसके बाद आएगा वो सरप्राइज वाला गाना। तो आप कहीं ना जाएं, गाड़ी में हो तो गाड़ी को साइड में आराम से लगा लें, अगर गाड़ी से निकलने का समय आ रहा है तो। दोनों गाने सुन के जाने हैं साहब आपको। चलिए साहब,

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो अभी ये थी बधाई एफएम मुरादाबाद की तरफ से हमारे एक लिसनर को, जिनको 15 साल हो गए हैं साहब, 15 साल। तो 15 साल, इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी इंसान को, जिन्होंने अपनी मैसेज के थ्रू हमें बया करी कि साहब मेरे को हो गए हैं 15 साल। 3 बार उनकी सरकार का चयन हो गया है। तो हमारे पास और भी लिसनर्स के मैसेज आए हैं, और हमारे पास पूजा जी कहती हैं कि अखिल जी, मेरे को सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब मेरी छोटी बहन ने मुझे एक स्कूटी गिफ्ट में लाके दी। तो क्या पूजा जी, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि आपकी छोटी बहन ने आपको गिफ्ट में लाके स्कूटी दी। तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा उसके लिए कि जो उसे हमेशा के लिए, उसके लिए कहते हैं ना, एग्जाम्पल बन गया होगा या लाइफ में उनकी रिमेम्बर होगा, मेमोरेबल होगा कि मैं अपनी बड़ी बहन को कुछ ना कुछ इस तरीके से गिफ्ट करूं कि उन्हें भी वो खुशी ज़्यादा मिले और यादगार रहे। तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पास नदीम जी हैं, उन्होंने भी मैसेज दिया है कि जब मेरे पिता बीमारी से ठीक होकर घर वापस आए तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। हाँ नदीम जी, ये दिन होता ही ऐसा है जब आपका अपना कोई चाहने वाला, अपना घर वाला, अब किसी एक बीमारी से, लंबी बीमारी से उसे, उसको मात दे के एक तरीके से घर पे आता है वापस और बिल्कुल स्वस्थ होकर आता है। तो हम भी ये कहेंगे कि आपके पिताजी जो हैं हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें और आप हमेशा उनके साथ रहें। कहते हैं अभी कल ही अक्षय कुमार और दिशा पठानी जी और राजपाल यादव जी अपनी एक फिल्म का प्रमोशन करने मुरादाबाद में आए थे। उनकी जो अपनी आगामी फिल्म है, तो फिल्म है, उसमें उन्होंने, अक्षय कुमार जी ने वहाँ पे स्टेज से ही बोला कि सभी बच्चों को उन्होंने भी ये मैसेज दिया कि अगर ज़िंदगी में एक काम ज़रूर करिएगा, अगर आपको खुश रहना, कुछ तरक्की पानी है, कुछ ऊँचा करना है, तो अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करते रहना, इससे बड़ा फल और कुछ नहीं है। तो आइए, हमारे एक लिसनर हैं हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं, और अभी उनकी कॉल आई, हमने भी उन्हें कहा कि चलिए आपकी भी आज दिल की बात हम सुनते हैं। नमस्कार इशरत जी, कैसे हैं आप?
1: हेलो सर, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: धन्यवाद साहब, हमारा भी मोहब्बत भरा नमस्कार आपको।
1: नमस्कार सर, कैसे हो आप?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं, क्या कर रहे हैं आप?
1: सर बहुत अच्छे हैं, आपसे बात हो जाती है और भी अच्छे हो जाते हैं। सर आप प्रोग्राम बहुत अच्छा पेश करते हो, सभी को काफी पसंद आता। सर आप सराहनीय कॉल को लगा देते हैं।
0: अरे आप, हमें, हमसे भी नहीं रहा जाता, अगर आपकी कॉल दिख रही होती तो हम भी उठा ही लेते हैं।
1: सर आप लिसनर से काफी अच्छी बातचीत करते हो।
0: और बताइए साहब, क्या हो रहा है इस समय?
1: सर इस टाइम बैठे थे और गर्मी काफी हो रही है और साथ में आपका प्रोग्राम सुन रहे थे। सर गर्मी बहुत है।
0: तो आज आपको जैसे गर्मी, तो साहब अब गर्मी में अगर गर्मी नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगा? सर्दी में सर्दी ना रहे और गर्मी में गर्मी ना रहे तो कैसे आप जो है मौसम के मजे लेंगे?
1: सर इस टाइम तबीयत ज्यादा खराब होती है ना लोगों की है
0: ना साहब, ये तो है, तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ता है आपको। तो आप बताइए, आप कौन सी वाली बात है आपके साथ, या आपके साथ ऐसा कब आपको महसूस हुआ कि आपको उस दिन सबसे ज्यादा खुशी लगी और खुशी वाली बात आपके साथ हुई?
1: सर मुझे मतलब जब ये केंद्र खुला था मुरादाबाद में,
0: हाँ जी,
1: तो सर मुझे काफी खुशी हुई, उसके बाद में आप आए तो सर काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और मतलब आपको सर हम कभी नहीं भूलेंगे।
0: इसे आप कहते हैं मौके पे चौका मारना। सभी लिसनर्स भी हमारे सुनने, सारे श्रोता हमारे सुनने, तो इशरत अली साहब ने एकदम घुमा फिरा के भाई साहब आज हमारी वाली बात हम ही को कर दी, बोले भाई साहब आप सबसे
1: इतनी खुशी हुई थी। मैंने सभी 8 दोस्तों को मैंने बतलाया भी कि केंद्र को लाया, मैं नंबर भी दिया सर, काफी अच्छा लगा मुझे उस दिन।
0: नहीं, इस बात की तो हम आपकी तारीफ करेंगे, हम सुनते, हमें पता रहता है कि इशरत अली जी की हमारे, मैंने पहले ही बताया आपको, इंट्रोड्यूस ही मैंने इसलिए कहा कि हमारे बहुत ही कहते हैं खास श्रोताओं में से एक हैं इशरत अली साहब, जो हमारी
1: खुशी बढ़ती गई। उसके बाद में प्रगति जी आए, ऋषि जी आए, राज जी, आनंद जी और आरजे छाया, आप आए।
0: हमारे पास कह सकते हैं, हमारे पास फॉर्चुनेटली हमारे पास जो हमारी एक आरजे हैं खुशी, उनका नाम ही खुशी है, तो वो तीन से
1: औरों को खुश रखती हैं, वो काफी अच्छा,
0: बहुत ही मतलब उनका शो तो
1: करती हैं सर वो।
0: हाँ, उनका शो जो है, अगर मैं बाकी श्रोता अगर हम सुन रहे हैं तो उनका शो जरूर आप सुने 3 से 5 में, वो
1: काफी पसंद आता था
0: फरमाइश शो, बहुत ही, हाँ आपकी फरमाइश, आपकी दिल की फरमाइश भी वो आपके दिलों तक पहुँचाती है
1: सर। वो मतलब जो भी प्रोग्राम पेश करती है काफी अच्छा पेश करती है, सभी को पसंद आता है सर, वो सभी से काफी अच्छी बातचीत कर लेती है आरजे खुशी जी।
0: हाँ जी, तो आप बताइए आज आपकी कौन सी फरमाइश है, ऐसा कौन सा गाना है जो आप अपने खुशी से सुनना चाहते हैं, जिससे सुन के और खुशी हो जाए।
1: मेरी फरमाइश है और मेरी सिस्टर की फरमाइश है सर, मूवी का नाम है उस्ताद और गाने के बोले मुझे रब जो कहे तुझे छोड़ दूं सर, आज के समय वाला सॉन्ग प्ले कर देना।
0: चलिए सर, आपकी सिस्टर आपसे बड़ी है छोटी है?
1: सर बड़ी है।
0: तो डांट पिटती रहती होगी आपकी सर?
1: सर मैं काफी मोहब्बत करता हूँ, डांट भी सुन लेता हूँ, मार भी, मतलब सब कुछ।
0: सही है साहब, आप ये तो पूरे सिस्टर का बड़ी बहन का हक होता है कि छोटे भाई के कान पकड़ के रखे।
1: सर बहुत मोहब्बत करती है, मैं रात के 2 बजे ही बोलूंगा कि मुझे भी खाना चाहिए तो सर खाना बना कर देंगी।
0: ऐसा क्यों होता है कि रात के 2 या 3 बजे ही भूख लगती है? बहुत जेन्युइनली लग जाती है,
1: मतलब मैं जिस काम को भी बोलता हूँ तो इनकार नहीं करती है सर।
0: चलिए तो अच्छी बात है
1: सर, मैं भी बहुत ख्याल रखता हूँ, मैं भी मना नहीं करता हूँ किसी चीज को भी।
0: हमारी तरफ से एफएम की तरफ से भी उन्हें एक बार नमस्कार बोलिएगा।
1: सर वैसे हम 4 भाई हैं, और भाई नहीं समझते सर, मैं कुछ ज्यादा समझता हूँ, और तो सब ऐसे ही हैं सर।
0: अरे सर अब देखो ये आगे की बात है तो हमने नहीं पूछी है आपसे। जहाँ तक दिल से दिल तक जुड़े ना वहाँ तक बातें होनी चाहिए साहब। दिल से जहाँ दिल टूटे वहाँ की बातें नहीं करनी हमें, जहाँ से दिल से दिल जुड़ रहे हैं वहाँ की बातें करनी है।
1: ठीक है सर।
0: तो सही है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ईश्वर जी आपसे जुड़ के, और आपकी उम्मीद है कि आपकी भी ऐसी कॉल आती रहेगी और हम आपसे बात करते रहेंगे।
1: शुक्रिया, नमस्कार।
0: नमस्कार जी। तो ये थे ईश्वर साहब हमारे साथ जुड़े हुए, जो अपने दिल की बात हमारे दिल तक पहुंचा रहे थे, और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने हमें बताई कि कैसे उन्हें इतनी खुशी रहे और कैसे वो इतने खुश रहते हैं हमारे एफएम स्टेशन से। उन्हें इतनी खुशी हुई कि जब हमारा एफएम स्टेशन चालू हुआ तो सबसे ज़्यादा खुश होने वाले व्यक्ति ईश्वर साहब थे। तो ईश्वर साहब हम आपको भी पकड़ के रखेंगे, बिल्कुल पकड़ के रखेंगे, इस बात से आप भी पीछे नहीं हटेंगे। तो चलिए सुनते हैं ईश्वर साहब की कहानी, उनका पसंदीदा गाना है।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज पे मुरादाबाद एफएम, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ी खुशी किसी की उपलब्धि में नहीं बल्कि किसी अपने के साथ होने में छुपी होती है। अगर आज आपके पास परिवार है, दोस्त है, सपने हैं और उन्हें पूरा करने की उम्मीद है तो यकीन मानिए आप खुशकिस्मत हैं। हमारे साथ हमारे एक और लिसनर जुड़े हैं, चलिए देखते हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहते हैं अपने दिल की बात को। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं मुरादाबाद से बोल रही हूँ। मेरा नाम विभू कश्यप है।
0: विभू कश्यप जी, आप कौन सी क्लास में हैं?
1: मैं थर्ड क्लास में हूँ।
0: थर्ड क्लास में? तो हाँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट बताइए आज कौन सा है?
1: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है।
0: मैथ?
1: हाँ।
0: यार यही मेरा सबसे ना, मुझे तो मैथ से सुन के ही डर लग जाता था। मेरा तो जब भी पढ़ाई करने बैठता था मुझे तो लगता था कि बस मैथ के कोई क्वेश्चन ना आ जाए। बहुत डांट खाई है मैंने अपने मैथ के टीचर से। तो आप आज सुन रहे हो हमारा रेडियो स्टेशन पे जो भी हम आज बात कर रहे हैं, आपने सुनी? तो बताइए आज हम किस पे बात कर रहे थे, बताइए।
1: मुझे खुशी जब हुई थी जब मेरा पहली बार स्कूल में एडमिशन हुआ था।
0: क्या बात है, तो आप कौन से स्कूल में एडमिशन हुआ था आपको जो इतनी खुशी हुई?
1: मेथोडिस्ट गर्ल्स सेंटर कॉलेज।
0: और उससे ज्यादा खुशी तब हुई होगी जब आपकी दो तीन बेस्ट फ्रेंड बन गई होंगी।
1: हाँ।
0: तो अब क्या खुशी होती है? ये तो चलो आपकी स्कूल ज्वाइन करने की खुशी हो गई, उसके बाद कौन सी ऐसी कभी वो खुशी हुई है जब मम्मी ने बताया नहीं टिफिन में क्या रखा है और आपकी फेवरेट चीज आपको मिली हो लंच में?
1: हाँ हुआ था, मैं मम्मी कह रही थी, मम्मी ने एक बार बोला था कि मैंने चार पनीर रखा है, मम्मी ने मैक्रोनी दी थी।
0: तो आज हमें ये भी पता चल गया कि मैक्रोनी आपकी बहुत फेवरेट है।
1: हाँ।
0: बहुत बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज आप?
1: मैं सॉन्ग जुली जुली सुनना चाहूंगी।
0: ये सच सच बताना आप विभू जी कि ये जो गाना है मम्मी की खुशी का है पापा की खुशी का है?
1: ये मम्मी पापा की दोनों की खुशी का है।
0: और ये आपको भी अच्छा लगता है?
1: हाँ।
0: आपका भी फेवरेट सॉन्ग है ये?
1: हाँ।
0: चलिए आज यही प्ले करेंगे और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपने खुशी वाली बात बताई, दिल से बताई, बहुत ही अच्छा। आप जितनी छोटी हो ना उतनी ही तेज हो, बहुत बढ़िया, बहुत शार्प हो आप।
1: थैंक यू।
0: चलिए आपसे मिलते हैं, बाय बाय।
1: बाय।
0: तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ी थी विभू जी जो अभी सिर्फ थर्ड क्लास में है, मगर आप उनकी बात करने के तरीके से कह नहीं सकते कि ये थर्ड क्लास में, बहुत ही एक्टिव और मैथ इनका प्यारा सब्जेक्ट है। तो भैया इनके साथ तो गुड़ा भाग कर ही नहीं सकते, इनका तो पसंदीदा गाना हमें चलाना ही पड़ेगा। और इनके गाने के साथ साथ अब हम लेंगे विदाई, कल फिर मिलेंगे आपको 9 से 10। और आज आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और खुशी भरे पल हमारे साथ साझा किए, उम्मीद है कि उन यादों को याद करके आपके चेहरे पर मुस्कान तो ज़रूर आई होगी। और हाँ, याद रखिए, खुशियाँ तलाशने मत निकलिए, खुशियाँ तलाशने मत निकलिए, उन्हें महसूस करना सीखिए। जिंदगी हर दिन कोई ना कोई वजह देती है मुस्कुराने की, जिंदगी हर दिन कोई ना कोई वजह देती है मुस्कुराने की, बस उसे पहचानना सीखिए। और मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं उन पलों को और उन चीज़ों को कहीं ना कहीं तो पहचाना है जो हल्की सी मुस्कान चेहरे पर आ जाती है ना। इतना ना आजकल हम जब भी ड्राइव कर रहे होते हैं या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और हम एफएम सुन रहे होते हैं और चाहते हैं कि हमारा पसंद का गाना उस पर प्ले होता रहे, और कई सारी बातें जो आपके दिमाग में चल रही होती है जब आप गाना सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा आराम मिलता है कि हाँ कुछ तो यार मेरे मन का प्ले हो रहा है। तो यही है गाने की खासियत और गाने की ताकत जो आपको अपने दिल तक बिल्कुल जोड़े रखती है। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अखिल, आप सुन रहे थे दिल से दिल तक अखिल संग। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अखिल एरन के नाम से मेरी प्रोफाइल है। और हम मिलेंगे फिर कल रात 9 बजे FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। आप अपने मैसेजेस अपनी कॉल के द्वारा मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं 9837896896 पे। और हाँ, अगर आप गाड़ी से निकलने वाले हैं और चाहते हैं कि हमारे FM से आप कनेक्ट रहें, अपने इस मुरादाबाद के FM से कनेक्ट रहें, तो आप हमें ज़रूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पर जाके FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उस पर आप रेड कलर का आइकन आपको दिख जाएगा, उसे आप डाउनलोड करें और हमारे साथ कनेक्ट रहें। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने दिल की बात कहते रहिए।
2: मुझे इसका नशा।

0: हमको मैरी नहीं मानता, हमको लेली नहीं मानता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मानता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है जान।

0: सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ई चोली चोली, चोली का दिल तुम पे आया चोली।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
3: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
4: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कहीं और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओं, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की और ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा जिसमें महिला स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सेवा ही संकल्प है, भारत प्रथम प्रेरणा। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी, उनसे हम जानेंगे कि ये अभियान क्यों जरूरी है और इसका सीधा फायदा हमें कैसे मिलेगा। टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो सेहत से ही लाभ कई में। प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो भाभी ये अभियान क्यों आरंभ किया जा रहा है?
1: देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। ये अभियान बीमारियों की जांच और इलाज को मजबूत करेगा, साथ ही महिलाओं और बच्चों की देखभाल पर भी ध्यान दे। इसके अलावा ये अभियान मोटापे की रोकथाम, अच्छा पोषण, स्वैच्छिक रक्तदान पर भी जोर देगा और समुदाय को स्वस्थ आदत अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
0: भाभी, इस अभियान के दौरान देश भर में बहुत सारे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, ये बताइए कि इन शिविर में महिलाओं और बच्चों को कौन कौन सी सुविधा मिलेगी?
1: देखिए, इन शिविर में महिलाओं और बच्चों दोनों की सेहत पर खास ध्यान दिया जाएगा, जैसे महिलाओं का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच होगी। इसके अलावा खून की कमी यानी अनीमिया की जांच भी की जाएगी। शिविर में उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा और जरूरत पड़ने पर दवाइयां और आयरन की गोलियां दी जाएंगी। शिविर में टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों की भी जांच होगी और ये बीमारी धीरे धीरे असर दिखाती है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता लेकिन धीरे धीरे शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए समय समय पर जांच करवाना बहुत

0: यही है कि घर घर सेहत पहुंचे, हर महिला सुरक्षित रहे और बच्चा तंदुरुस्त हो। जब नारी और बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी परिवार खुशहाल होगा और समाज व देश और मजबूत बनेगा।
1: भाभी ये तो एक बड़ा अभियान है, पोषण माह का हिस्सा है। वैसे तो हम हर एक एपिसोड में अपने श्रोताओं को पोषण माह के बारे में भी बताते रहते हैं, तो क्यों ना इस एपिसोड में भी उन्हें एक बार याद दिला दिया जाए और इसका महत्व समझाया जाए।
0: पोषण माह पर खास जोर मोटापा कम करने पर है। आजकल बच्चे हों या बड़े मीठा और तली भुनी चीजें ज्यादा खाने लगे हैं। चीनी और तेल का ज्यादा इस्तेमाल शरीर को बीमार कर देता है, मोटापा बढ़ता है और कई दिक्कतें खड़ी कर देता है। इसलिए इस पोषण माह में लोगों को समझाया जाएगा कि मीठा और तेल कम खाएं, सब्जी दाल हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार चीजें और फल ज्यादा खाएं, तभी शरीर फिट रहेगा और बीमारी पास भी नहीं आएगी।
1: भाभी पोषण माह का एक और मकसद मैंने सुना है, बचपन की देखभाल और शिक्षा, यानी पोषण भी पढ़ाई भी, इसका मतलब क्या है?
0: देखिए छोटे बच्चे की उम्र सबसे नाजुक होती है। जन्म से लेकर 6-7 साल तक का समय उनकी सेहत के लिए सबसे अहम होता है। अगर उस समय बच्चों को अच्छा खाना और सही देखभाल मिले तो उसका शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी तेज चलेगा। पोषण का मतलब है कि बच्चों को समय पर दूध, फल, सब्जियां, दाल और अनाज जैसे पौष्टिक खाना मिले। सिर्फ पेट भरने वाला या जंक फूड नहीं, बल्कि ऐसा खाना जो शरीर को ताकत दे। साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चित्र दिखाना, कविताएं सुनाना, इन सब से उनका दिमाग सही दिशा में रहेगा, बोलने की क्षमता विकसित होगी और सोचने समझने की आदत बढ़ेगी। आंगनबाड़ी में बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है, जैसे खिचड़ी, दूध, अंडा, दाल, सब्जियां, ताकि उनके शरीर को सही पोषण मिले। साथ ही वहां बच्चों को खेल खेल में सीखने का मौका भी दिया जाता है। सरकार चाहती है कि आंगनबाड़ी और स्कूल के बच्चों के लिए ऐसी जगह बने जहां उन्हें सेहत और शिक्षा दोनों का सहारा मिले, ताकि वे न सिर्फ तंदुरुस्त रहें बल्कि होशियार और समझदार भी बने। यही बच्चों के अच्छे भविष्य की असली नींव है।
1: भाभी इस बार पोषण माह में यानी शिशु और छोटे बच्चों के आहार मेथड पर भी जोर दिया जा रहा है, ये क्यों जरूरी है?
0: छोटे बच्चों का खाना पीना ही उनकी सेहत की नींव रखता है। जन्म से लेकर 2 साल तक का समय बच्चों की जिंदगी का सबसे अहम समय होता है। अगर इस दौरान सही आहार मिलेगा तो बच्चा मजबूत बनेगा और बीमारियों से भी दूर रहेगा।
1: तो भाभी सही आहार मेथड की शुरुआत कैसे होती है?
0: सबसे पहले तो जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इस पीले गाढ़े दूध को कोलोस्टॉम कहते हैं, ये बच्चे की पहली वैक्सीन है।
1: फिर 6 महीने तक क्या करना चाहिए?
0: 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, ना पानी, ना शहद, ना दाल, ना दाल का पानी। माँ के दूध में पानी, पोषण और सुरक्षा सब कुछ होता है।
1: और 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए?
0: 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चों को ऊपर का खाना देना शुरू करना चाहिए, जैसे दाल चावल, मैश करके खिचड़ी, दलिया, सब्जी, फल या अंडा। साथ ही माँ का दूध भी जारी रहना चाहिए। हर महीने बच्चे का खाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है, ताकि उसका शरीर मजबूत बने और दिमाग भी तेज चले।
1: यानी भाभी IYCF का मतलब यही है कि बच्चों को सही समय पर सही आहार मिले।
0: बिल्कुल, यही तो पोषण माह का असली संदेश है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो बच्चा न सिर्फ तंदुरुस्त होगा बल्कि पढ़ाई लिखाई और जिंदगी में भी हमेशा आगे रहेगा।
1: भाभी इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में पुरुष की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है, आखिर क्यों?
0: देखिए बच्चों की परवरिश और पोषण सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पिता भी साथ दें तो माँ का बोझ आधा हो जाता है और बच्चों को 2 गुना सहारा मिलता है।
1: पुरुष इसमें कैसे मदद कर सकते हैं?
0: बहुत आसान है, बच्चों के टीकाकरण और आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों में पिता भी जाएं, घर पर पौष्टिक खाना लाने में ध्यान दें और बच्चों को समय दें। रोज बच्चों के साथ खेलें, उनसे बातें करें, इससे बच्चा भी खुश रहता है और माँ को भी सहारा मिलता है।
1: भाभी इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों पर भी जोर दिया जा रहा है।
0: हमारे आसपास बहुत सारे पौष्टिक खाने की चीजें मिलती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और बाजार के महंगे पैकेट वाले सामान पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। असली मकसद है कि लोगों को अपने गांव में मिलने वाले सस्ते और पौष्टिक अनाज, फल, दाल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं।
1: कौन कौन से खाद्य पदार्थ पर ध्यान देने की जरूरत है?
0: हमारे यहाँ मिलने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ताकत और पोषण से भरपूर है। इस तरह मौसमी फल जैसे अमरूद, पपीता, केला, नींबू और

0: पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, सरसों हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है और बहुत फायदेमंद भी है।
1: इससे परिवार को क्या फायदा होगा?
0: फायदा सीधा है, स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों से बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा, बुजुर्गों को ताकत मिलेगी, महिलाओं को खून की कमी जैसी बीमारियों से राहत मिलेगी, ऊपर से गाँव की खेती और किसान को भी बढ़ावा मिलेगा।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में एकत्र किया और डिजिटलकरण पर भी जोर है, इसका क्या मतलब है?
0: जब शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला समूह और पंचायत सब मिलकर काम करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। यही है एकीकृत क्रिया, मतलब सब विभाग मिलकर एक ही दिशा में बच्चों और महिलाओं की सेहत सुधारने के लिए काम करें।
1: और डिजिटलकरण क्या होता है?
0: आजकल सरकार सेहत के क्षेत्र में मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं और उन्हें क्या सुविधा देनी चाहिए। इससे काम तेज और पारदर्शी हो जाता है।
1: भाभी, इस बार पोषण माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी चर्चा की है, ये योजना क्या है?
0: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं को गर्भ अवस्था और स्तनपान के समय पोषण व आराम के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।
1: भाभी, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए?
0: इसके लिए सरकार ने विशेष पंजीकरण मुहिम चलाई है। महिलाएं अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकती हैं। वहीं पर पूरी जानकारी और मदद भी मिल जाएगी।
1: दोस्तों, आज के सेहत से लाभ कई कार्यक्रम में हमने जाना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के जरिए महिलाएं, किशोरियों और बच्चे समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पाएं। साथ ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में मोटापे की रोकथाम, सही पोषण, जीवन शैली सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद है कि हम के बीच स्वस्थ आदतें बढ़ें और पूरा समाज फिट रहे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं,
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे
1: और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है,
0: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो सेहत से ही लाभ कई प्रोग्राम में दोस्तों आज हम बात कर रहे थे एक विशेष खास मुद्दे पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं सेहत से ही लाभ कई के अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, और सुनते रहें FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार,
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: के।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।

0: अदाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।